हम आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026। सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

0: हम रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों के बाद जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से और कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले वंदनवार चिंतन, उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण के बाद श्री रामचरित मानस गान, संगीत सरिता 6:45 पर, 7 बजे भूले बिसरे गीत और 7:30 बजे हम मेरा ही प्यार की। सुनते हैं समाचार
1: साथ में आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की

के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदनवार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6:30 का समय हुआ है। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 210 आप सुनेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का भाग 5 प्रसारित होगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सात बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात पुनः 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर शाम को वक्त होता है कार्यक्रम संध्या रंजन का। 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गजलों से सजा गुलदस्ता। 8:00 आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी जरा सी आंख लग गई, लेखन और निर्देशन गिरिंद्र प्रसाद का है।

आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का है। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा में। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 210।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
2: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
2: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसी खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
2: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के
1: जी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
2: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना
1: जी।
2: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है।
2: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में,
2: हाँ हाँ,
1: तो बड़े सुनने को
2: बहुत
1: प्रिय होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
2: आपकी नजरों ने समझा।
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है लता जी के स्वर में, मदन मोहित साहब की संगीत रचना
2: जी।
1: आइए सुनते हैं।

0: दीपक ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है,
0: जी जी,
1: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा,

0: तो ये जो है ये रूपक के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का
1: जी
0: ताल है। तो दीपचंदी के भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा लें या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा लें,
1: ऐसा नहीं होता
0: ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है
1: जी।
0: और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है, इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है वो।
1: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना?
0: दीपचंदी में अजीर उठकर अब कहाँ
1: आरजू
0: जाइएगा।
1: फिल्म की बात आप कर रहे हैं।
0: जी जी
1: जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देस पर आधारित है, और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी,
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते चले।
1: बिल्कुल।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीप चंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित।

0: थे संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीपचंदी 14 मात्रा का।
1: हाँ।
0: फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मज़ा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
0: अच्छा।
1: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्ना धनना नना नना, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड, और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत

0: लेकर हाजिर होंगे।
1: भूले बिसरी गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

उदयपुर इस शुक्रवार यानी कि आज सुनिए आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर डिजिटल और फन फ्राइडे, जहां दिन की शुरुआत होगी एक खास चर्चा के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जानेंगे कैसे छोटे छोटे प्रयास हमारे शहर के पर्यावरण को और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम का और हिस्सा होगा स्मार्ट लिविंग में स्मार्ट सिटी की अवधारणा के बारे में जानेंगे। फिल्मी फ्राइडे है, फिल्मों के बारे में अपडेट्स दी जाएगी, लिसनर्स कनेक्ट भी होगा। तो हमारे श्रोता व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9462697568। बने रहिए हमारे साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश ने। भरत व्यास के बोल हैं, सतीश भाटिया का संगीत। फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूलिए बिसरे गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा से शमशाद बेगम का गाया गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, सी रामचंद्र का संगीत है।

अभी आपने शमशाद बेगम का गाया गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों के स्वरों में जीएस नेपाली का लिखा गीत। धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, और आइए अब सुनते हैं ये संदेश, और संदेश के बाद लेते हैं एक अंतराल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत में इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: वज्रदंती वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।
1: क्या जोड़ों में लगातार दर्द रहता है? क्या सुबह उठते ही हाथ पैरों में जकड़न महसूस होती है? गठिया या इससे संबंधित बीमारियों के बारे में आज बात होगी हमारे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, जिसे आप सुनेंगे अपने मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी पर सुबह 9:30 बजे से। हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ मेहमान, प्रसिद्ध रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गोयल।

से बातचीत होगी और आप साथ में जानकारी के साथ साथ श्रोताओं से के सवालों के जवाब भी देंगे। तो हेलो डॉक्टर सुनना ना भूलें रेडियो लेक सिटी पर सुबह 9:30 बजे से।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेला से ये गीत। शमशाद बेगम और मुकेश के युगल स्वर हैं। शकील बदायूनी का लिखा गीत, नौशाद अली का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शर्त से ये गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने। गायक कलाकार और संगीतकार हेमंत कुमार।

अब आपको सुनवा रहे हैं मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। रचना हसर जयपुरी की है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ में कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
8: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर

0: के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
1: आरबीआई कहता है
2: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: और आइए अब विविध भारती मुंबई से सुनते हैं हम है राही प्यार की।
4: आशा भोसले और अनवर की आवाजें, निदा फाजली के बोल, धुन बनाई है खयाम ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की, चुपके चुपके। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम है राही प्यार की इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत हमारा संसार फिल्म से।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।

0: कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: आई एम हियर।
3: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: रेडियो लेक सिटी पर आज सुबह 9:30 बजे सुनिए हेलो डॉक्टर। हमारे साथ होंगे जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गोयल। गठिया, यूरिक एसिड या जोड़ों की बीमारियों से जुड़े आपके सवालों के जवाब मिलेंगे सीधे विशेषज्ञ से। सुनिए हेलो डॉक्टर आज सुबह 9:30 बजे से रेडियो लेक सिटी पर, और हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9462697568।

जिगरी दोस्त इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: काम मस्ताने का, इश्क है दीवाने का, और तीर होता है निशाने का। मेरी तू
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारी लाल ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम नाइट इन लंदन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म का नाम, प्यार की जा।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में प्यार किए जाए इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी पर सुबह 8:30 बजे सुनना ना भूलिए प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, उन्हीं से जुड़ी हुई फिल्मों की बातचीत होगी। फिल्मी फ्राइडे में जानेंगे आज रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में, ओटीटी सीरीज के बारे में भी जानेंगे और होगा आपका मनपसंद लिसनर्स कनेक्ट, जिसमें आज के प्रोग्राम से जुड़ी आपके मैसेजेस हम पढ़ेंगे और जो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। थोड़ी ही देर में सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने

0: और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की
4: गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. रिजर्व बैंक

0: पेड़ों की छाया और नदियों का जल धरती का अनुपम श्रृंगार है। शांत नीला आकाश, शीतल पवन, पर्यावरण ही जीवन का आधार है। वन गाते हैं हरियाली के गीत, पर्वत देते साहस का ज्ञान, नदियाँ सिखाती है चलते रहना, प्रकृति में ही छिपा है जीवन विधान। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए आगाज करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। आज के डिजिटल फन फ्राइडे के इस बेहद रोचक अंक में आपके रेडियो सेट पर मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित श्रीमाली और मेरे साथ हैं
1: ज्योति।
0: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: तो अमित, आज के सेगमेंट में हम क्या क्या खास लाए हैं ये भी श्रोताओं के साथ साझा करते चलें।
0: बिल्कुल, सबसे पहले कार्यक्रम के जो सेगमेंट है उसके अंदर डे स्टार्ट में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस और उसी के साथ में कुछ स्थानीय खबरों पर भी होगी हमारी नज़र। इसके बाद में स्मार्ट जीवन, उसके अंदर स्मार्ट सिटी और नागरिकों की जिम्मेदारी पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे।
1: और आज है फिल्मी फ्राइडे, तो इस सप्ताह फिल्म जो रिलीज हो रही है सिनेमाघरों में या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज रिलीज हो रही है उनके बारे में जानकारी देंगे और बातें होंगी उन चुनिंदा फिल्मों की जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। साथ साथ आपके व्हाट्सएप संदेश भेजना ना भूलिएगा। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं आज के कार्यक्रम से संबंधित हम ऑन एयर करेंगे और ये प्रोग्राम होगा लिसनर्स कनेक्ट आज 9:10 से।
0: बिल्कुल, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 9462697568। तो हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा और सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।
1: करते हैं आगाज इस गीत के साथ।

0: तो ज्योति, कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का आगाज़ हम लोग कर चुके हैं और अब अगर हम बात करें मौसम की, तो आज सवेरे थोड़ा मौसम सुहाना था, थोड़ा खुशनुमा मौसम था। थोड़ी अर्ली मॉर्निंग जब हम ड्यूटी पर आ रहे थे तब थोड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और थोड़ा सा खुशनुमा मौसम बना। लेकिन तापमान की अगर हम बात करें तो कल का तापमान जो रहा है वो 27.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है और अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री रहा है। और अगर हम बात करें आने वाले समय की तो तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं, तो आप सभी लोग अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखते हुए ही बाहर निकले।
1: बिल्कुल, पेड़ों की छांव रहे, नदियों का बहाव रहे, नीला रहे आकाश सदा, धरती का श्रृंगार रहे। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ अमित अब हम बता रहे हैं शहरवासियों को लोकल अपडेट्स। तो शहर की बात हो रही है, आसपास की गतिविधियों की बात हो रही है, तो हमारे उदयपुर में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। सज्जनगढ़ आने वाले पर्यटकों को अब प्लास्टिक वाली बॉटल साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर ही कांच की बॉटल उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी जो रीयूजेबल होगी। 50 रुपये जमा कराना होगा प्रति यात्री और भ्रमण के बाद अगर वो बॉटल वापस करते हैं तो 40 रुपीज उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ताकि बॉटल्स इधर उधर उद्यान में ना मिले, प्लास्टिक का उपयोग बंद हो जाए, क्योंकि ये एरिया जैव विविधता और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। प्लास्टिक का कचरा चुनौती बन रहा है। अगली अपडेट की बात की जाए तो आज क्लीन उदयपुर ग्रीन उदयपुर अभियान के तहत नाइट वॉकेथन है विभिन्न संस्थाओं द्वारा। शाम 7:30 बजे मोती मगरी गेट से फतेह सागर ओवरफ्लो तक 1000 से अधिक महिलाएं में भाग लेकर स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश देती नजर आएंगी। सभी प्रतिभागी सेम ड्रेस कोड में होंगी, रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस पर सर्वश्रेष्ठ को उनके जो कोटेशन लिखे जाएंगे उस पर उनकी प्रतियोगिता भी है और डेफिनेटली विनर्स को प्राइज भी दिए जाएंगे। साथ साथ अमित, हम अपने श्रोताओं को भी ये पूछना चाहेंगे कि आपके मोहल्ले में, आपके नज़दीक, आपके आसपास भी पर्यावरण से जुड़ी कोई ना कोई गतिविधि ज़रूर हो रही होगी आज के दिन, क्या आप उससे जुड़ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको और क्या आपकी इसके बारे में फीलिंग्स हैं, हमें ज़रूर बताइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462697568।
0: बिल्कुल, और साथ ही आज जलापूर्ति थोड़ी सी बाधित रहेगी क्योंकि जयसमंद की जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज है और उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कुछ जगह जहां पर पानी आज शाम को पहुंचाया जाएगा वो है सेक्टर 14 वीआईपी कॉलोनी, विजय सिंह पथिक नगर, कच्ची बस्ती, आरएचबी कॉलोनी, लुणावतों का फला, जैन साहब की बाड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, अम्बाफला, इन स्थान पर जलापूर्ति बाधित रहेगी और शाम को यहाँ पर पानी छोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही कुछ जगह जहां पर पानी शनिवार को ही दे पाएंगे वो है ओल्ड आरटीओ रोड, न्यू मीरानगर, यूआईटी कॉलोनी और चंद्रा कॉलोनी, यहां पर आपको शनिवार को ही जलापूर्ति प्राप्त होगी।
1: और साथ साथ अमित, जल संरक्षण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत आज से जिले में जल स्वावलंबन पखवाड़ा भी शुरू हो रहा है, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना।

0: लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर, यह है आपका मनपसंद शो नमस्कार उदयपुर। और अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। अमित, तो जब भी हम स्मार्ट सिटी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है चौड़ी सड़कें हैं, साफ सुथरा पार्क है, डिजिटल सुविधाएं हैं, आधुनिक परिवहन की तस्वीर उभर आती है। पर क्या तकनीक सुविधाएं शहर को स्मार्ट बनाती हैं? क्या शहर की असली ताकत जो स्मार्ट सिटी है उसकी ताकत स्मार्ट नागरिक भी होते हैं?
1: सही मायने में अगर देखा जाए तो इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। ये सभी बातें किसी न किसी रूप में एक स्मार्ट सिटी के लिए सहायक ज़रूर हैं, लेकिन हमारा शहर स्मार्ट तभी होगा जब हमारे लोग, हमारे नागरिक, हमारे यहाँ के रहने वाले स्मार्ट होंगे।
0: पर कैसे करें, हम सब अपना कर्तव्य तो निभा ही रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर स्मार्ट नागरिकों की बात की जाए तो कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, जल और बिजली की बचत करनी है, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है और जहां तक हो सके अपने शहर को स्वच्छ रखना है।
0: और कचरा संग्रहण पात्रों में ही डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है और पर्यावरण संरक्षण में जैसे पेड़ लगा दिया तो बस वहीं पे जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है, उसका ध्यान भी रखना होता है। अगर इसके लिए आप कह सकते हैं कि हम इतने बड़े पेड़ का या फिर लगाने के बाद उसे भूल जाते हैं पानी देना, अपनी बालकनी में, अपने आंगन में, अपने आसपास जो गमले रखेंगे तो उसमें पानी देना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप बिजली की बचत करते हैं, जैसे कि आपने एसी लगा दिया 16 डिग्री टेम्परेचर पर और उसके बाद आप कंबल ओढ़ करके जाते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आप बिजली की बचत भी नहीं कर रहे, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान नहीं दे रहे। तो अपने एसी को भी 25-24 तक भी अगर डालते हैं जितना, तो उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और आप खुद को कंफर्टेबल ही फील कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं।
1: और एसी को कम करके और कंबल ओढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो जिम्मेदार नागरिक में अपना स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का पालन करें, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, या फिर थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह हम जा रहे हैं हॉस्पिटल या ऐसी जगह जहां बैक्टीरियाज इजीली अपने को कैप्चर कर सकते हैं तो वहां पे मास्क वगैरह का यूज़ करना है, या छींकते समय एक बहुत सिंपल सी बात है कि हाथ का हम या कोहनी का हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे वायरस किसी
0: स्वच्छता बेसिकली अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखें और दूसरों की सेहत से भी खिलवाड़ ना करें। ज़रूर से इसके बारे में जागरूक होना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम ऑनलाइन होते हैं तो भी हमें साइबर फ्रॉड से बचने की जिम्मेदारी, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारी अपडेट

0: साथी, जब हम फ्रॉड में फंस रहे हैं बाय चांस सडनली, तो उससे बचाव के बहुत सारे उपाय अब वो भी सबकी जानकारी में आ रहे हैं, उनसे लेकर अवेयर रहें। और क्योंकि अमित, सिर्फ इमारतें स्मार्ट हों, देखने में सब कुछ अच्छा सा, चमकीला सा, खूबसूरत सा लगे, उसी से नहीं होता, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से भी बनती है स्मार्ट सिटी।
1: बिल्कुल। और एक और खास बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि सड़क तो हमारी ही है, हम जैसे चल रहे हैं सही ही चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सामने वाले यात्रियों की, सामने वाले जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और ये एक स्मार्ट नागरिक की पहल होनी चाहिए।
0: तो अमित, हम श्रोताओं से पूछते हैं कि आप बताइए, आपके अनुसार स्मार्ट सिटी बनाने में नागरिकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? क्या पानी और बिजली की बचत के लिए आप कोई आदत अपनाते हैं, या अपने शहर की कौन सी एक सुविधा जोड़ना चाहेंगे जिससे कि हमारा शहर और स्मार्ट बने? तो अपने जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। आपके जवाब हम शामिल करेंगे प्रोग्राम लिसनर्स कनेक्ट में, जो आज ही के नमस्कार उदयपुर का सेकेंड पार्ट होगा।
1: बिल्कुल। और नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9462697568।

0: खूबसूरत से शहर रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर पर ये प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर अपने शहर का मनपसंद शो। तो अब सुनाएंगे हम श्रोताओं को फिल्मी फ्राइडे में आज रिलीज़ होने वाली फिल्मों के बारे में, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक का रिपोर्ट कार्ड भी जान लेते हैं। अमित, पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई फिल्मों का हाल कुछ मिला जुला सा रहा, कुछ फिल्में दर्शकों को पसंद आई और कुछ उम्मीद के मुताबिक बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकी। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो, दर्शकों ने इसे हल्के फुल्के मनोरंजन को इसके पसंद किया। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ रुपए का कारोबार किया। रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल अपने संगीत और प्रचार के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी। ट्रेड विश्लेषक कहते हैं कि इस समय दर्शक मजबूत कहानी और नए कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ बड़े नाम ही सफलता के गारंटी नहीं हैं। और अगर पूरे मनोरंजन जगत की बात करें तो रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 द रिवेंज अभी भी चर्चा में है। फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक रहा और अब इसके OTT प्रीमियर का इंतजार किया जा रहा है और वो शायद आज ही होने जा रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस सप्ताह रिलीज हो रही फिल्में दिल जीत पाती हैं या नहीं। अमित,
1: बिल्कुल, अगर इस सप्ताह रिलीज होने वाली मूवीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मूवी आ रही है बॉबी देओल की, जिसका निर्देशन किया है अनुराग कश्यप ने। मूवी का नाम है बंदर। ये जिंदगी, न्याय व्यवस्था और जो एक कलाकार है उसकी ज़िंदगी के बीच के संघर्ष को बड़े ही गंभीर और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करेगी। अगली मूवी जो है वो है जवानी तो इश्क होना है। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हमें नज़र आएंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी, पारिवारिक मनोरंजन, रोमांस, इन सब के साथ इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। साउथ सिनेमा काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और अभी पैदी नाम की एक मूवी आ रही है जो 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है, जिसमें युवा खिलाड़ी के संघर्ष और सपनों की सफलता के बारे में बताया है। इस फिल्म में शिवा राजकुमार और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। और हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो आज ही रिलीज़ हो रही है ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, जो लोग बचपन में ही मैन कार्टून देखते थे उनके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है और ये बहुत ही खूबसूरत थोड़ी सी फैंटेसी मूवी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए।
0: तो उदयपुर, इस वीकेंड आप क्या देखना पसंद करेंगे, सिनेमाघर में फिल्म या फिर OTP पर सीरीज़? हमें व्हाट्सएप कीजिए, बताइए आपका वीकेंड वॉच लिस्ट क्या है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर फिर से रिमाइंड करा दें, 9462697568।
1: बिल्कुल, नंबर एक बार फिर से लिख लीजिए, 9462697568। और आज रिलीज हुई मूवी का ही एक गाना हम आपको सुनवाते हैं जो है बंदर फिल्म से।
2: सुर में गाना सीखिए, पादानी।

तो अभी नमस्कार उदयपुर में और भी कई सारी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन समाचारों का वक्त हो रहा है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर अजमेर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 9:10 से नमस्कार उदयपुर फिर

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें

0: जिम्मेदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपुतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाई माधोपुर में।

0: रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अलसुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होल्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपुतली, बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। और जैसा कि हमने कहा था कि हम श्रोताओं से जो संदेश हमें प्राप्त होंगे वो हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, तो हमें एक मैसेज मिला है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाने जा रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, इससे ताज़ा हवा मिलेगी। और मिनी माइक्रो आर्टिस्ट ये कह रहे हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा जी ने हमें मैसेज किया है। साथ ही हम सुनते हैं आज झील हितेशी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद से हुई बातचीत का अंश।
2: उदयपुर की झीलों को स्वच्छ और जीवंत बनाए रखने के लिए पिछले 2 दशकों से निरंतर संघर्ष कर रहे पर्यावरण प्रेमी हाजी सरदार मोहम्मद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्ष 2005 में उन्होंने अपने साथियों के साथ झील हितेशी नागरिक मंच की स्थापना करी और तब से हर सप्ताह श्रमदान के माध्यम से झीलों से कचरा और जलकुंभी हटाने का कार्य कर रहे हैं। 79 वर्ष से अधिक आयु में भी उनका उत्साह युवाओं को प्रेरित करता है। उनका मानना है कि झीलों का संरक्षण केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। झील संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी रुचि कैसे विकसित हुई और इस दिशा में काम करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली सर?
3: मेरा मकान झील के किनारे पर है और मैंने देखा कई लंबे समय से पीछे झील मैंने खाली देखी है, मैदान देखा है मैदान। और 2005 और 6 में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, उस दौरान जलकुंभी ने भी अपने पैर पसारे। मैंने हमारे एक जमुना के दशरथ थे, हमने दोनों ने प्लान बनाया कि भाई इसको कैसे हटाया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई एक झील हितेशी नागरिक मंच का गठन किया जाए और तब से ये हमने मंच बनाया और 24 अगस्त 2005 से हमने इस काम को अंजाम दिया जो हम आज तक इसको करते आ रहे हैं और लगातार हमारे मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, दूर तक के नए आते हैं पुराने जाते रहते हैं और इस काम को हम बराबर से अंजाम दे रहे हैं।
2: तो आपके अनुसार झीलों के सामने अभी वर्तमान समय में ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से झील खराब हो रही है, इनके क्या कारण आपको नजर आते हैं सर?
3: सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है लोगों की जागरूकता की कमी, बहुत बड़ा कारण ये है। हम हर संडे रमजान के दौरान माइक से लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई इस पानी को हम पीते हैं, इससे पूजा करते हैं, इससे स्नान करते हैं, मेहरबानी करके इस पानी में गंदगी मत डालो, इसको साफ रखो।
2: जो अभी शहरीकरण बढ़ रहा है या प्रदूषण जो बढ़ रहा है, इससे जो झीलों का पारिस्थितिक तंत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
3: शहरीकरण के साथ साथ प्रशासन को विनाश का भी ध्यान देना होगा। विकास तो हो रहा है, अच्छी बात है
2: जी,
3: पर साथ में हमें विकास पर भी ध्यान देना होगा। जंगल काटे जा रहे हैं, पानी में लोग गंदे

0: डाल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हमारा ये कहना है कि लोग जागरूक हो और चीजों को साफ रखे, और प्रशासन में हमारा यही कहना है कि विकास करो आप, लेकिन विनाश का भी ध्यान रखना होगा, विनाश का भी ध्यान रखना होगा।
1: जिलों के संरक्षण में जो स्थानीय कम्युनिटी या जो आम नागरिक हैं, ये किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएंगे?
0: आम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये की है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक ये सब भी सही हो जाएगा। मेरा ये कहना है साहब इस बारे में कि जल, वायु और जंगल, इस पर किसी तरह का दखल नहीं होना चाहिए। इंसान अगर इन तीनों चीजों पर दखल छोड़ देगा तो ऑटोमेटिक जंगल बनेंगे, पानी साफ होगा, वायु भी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। इन तीनों पे अमल करना बहुत जरूरी होगा।
1: तो आप पिछले लगभग 20-21 सालों से जो ये अलख जगाए हुए हैं और जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो इन कामों के आपको कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं या हर जगह पे आपको नकारात्मकता ही नजर आती है?
0: नहीं, मिले हैं सब। कई बार हमने देखा मिले हैं। श्रमदान के दौरान हम जब नवाब में झील में श्रमदान करते वक्त लोग जो पुल से कचरा डालते, उस वक्त हमने सुना है लोग कहते हैं कि भाई मत डालो कचरा, बेचारे रात दिन ये काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, आप मेहरबानी करके झील में कचरा मत, झीलों में कचरा नहीं डालना चाहिए।
1: तो अभी जो हमारे आसपास रहने वाले नागरिक हैं, वो अपने जीवन में ऐसी क्या छोटे छोटे बदलाव करें या ऐसी क्या चीजें करें जिससे जल स्रोतों को संरक्षण किया जा सके या उनको और अच्छे से हम सुरक्षित रख पाए, इसके लिए क्या बदलाव की आवश्यकता है आपको लगती है?
0: इसमें तो बस मेरा ये कहना है कि लोग जागरूक हो इस बारे में और हर चीज में दखल अंदाजी छोड़ दें, बस यही मेरा इसमें कहना है।
1: और हमारे श्रोताओं को पर्यावरण और जल संरक्षण से जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: एक ही संदेश है मेरा कि सभी को जागरूक होना होगा, झीलें साफ होगी, जल साफ होगा, जंगल सही होंगे, यही संदेश है मेरा।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमसे बात करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे झील हितेशी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद से हुई बातचीत।
3: नमस्कार, उदयपुर आप सुन रहे हैं अमित, और इमेजिन कीजिए सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव है, पेड़ों की हरियाली है, धरती की सुंदरता है, और यही सब है हमारा पर्यावरण जो हर पल हमें जीवन देता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि यदि ये हरियाली ना हो, नदियाँ प्रदूषित हो जाएं या फिर स्वच्छ हवा दुर्लभ हो जाए तो जीवन कैसा होगा? इन्हीं प्रश्नों के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इसके इतिहास और महत्व के बारे में जाने तो 1972 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन्होंने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस तरह 1973 में पहली बार मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। तब से ये दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जन जागरूकता अभियान बन चुका है। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है, इसमें वायु, जल, भूमि, वन्य जीव और मानव जीवन से जुड़ी सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, सुरक्षित जल हमारी आवश्यकता है, हरियाली हमारी जिम्मेदारी है और पृथ्वी हमारा साझा घर है।
2: बिल्कुल सही बात कही ज्योति आपने। और जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं या तकनीकी विकास हो रहा है, वैसे वैसे हम पर्यावरण को प्रदूषित करने के नए नए तरीके इजाद करते जा रहे हैं। उसमें से एक तरीका है ध्वनि प्रदूषण। हम इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से पर्यावरण को क्या ही नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आप सोचिए कि कल कारखानों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, लाउड स्पीकर्स, शोर, ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास का इकोसिस्टम है या वहाँ रहने वाले छोटे जीव जंतु, चिड़िया, कीड़े मकोड़े जो हैं, उनके इकोसिस्टम पर कितना बुरा प्रभाव डालते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो पूरा सर्कल है, जो ज़मीन का सर्कल, मिट्टी का सर्कल या फिर हवा पानी, उन चीज़ों की जो बात होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक,
3: बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह इंटरप्ट करना चाहूँगी, क्योंकि 70% जो हमारी फसल होती है, मधुमक्खी या इसी टाइप के परागण होते हैं, पराग कीट जो होते हैं, उन्हीं की वजह से फसलें आती है जिनसे हम अपना भोजन पाते हैं।
2: जी बिल्कुल। और इसी तरीके से एक और प्रदूषण है, वो है प्रकाश का प्रदूषण। क्योंकि अभी लेटेस्ट एक रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा रोशनी वाले कुछ शहर हमारे भारत के ही हैं जो कि रात को जगमग चमकते रहते हैं। अब कुछ ऐसे कीट पतंगे हैं जो चांद को देखकर या तारों को देखकर अपनी दिशा निर्धारित करते थे, अब इन लाइट्स की वजह से, जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उसकी वजह से, वो अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँच पाते, और वो जो लैम्प पोस्ट हैं या फिर जो सड़क के किनारे की लाइट्स है या जो शॉपिंग मॉल के बाहर की लाइट्स है, वहीं पर मन

0: कतराते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं।
1: बिल्कुल, पर्यावरण को लेकर हमारी जवाबदेही कितनी गहरी होती है हमें समझना चाहिए। अब हम अलनीनो की भी अगर बात करें तो जैसे क्योंकि आजकल हम एक कितनी एक्सट्रीम गर्मी हम महसूस कर रहे हैं, हमारे उदयपुर की ही नहीं पूरी दुनिया में जो हाल देखा जा रहा है, अब तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह हम हैं ये क्यों नहीं समझते। सिर्फ एक अलनीनो की अगर बात करें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनमें एक अलनीनो की बात करें तो ये एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेशनल विलन है, क्योंकि जब प्रशांत महासागर का पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाता है, और ऊपर से साथ में अगर ग्लोबल वार्मिंग भी मिल जाती है, यानी कि कहें कि करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति आ जाती है, और ऐसी स्थिति में टेम्परेचर हो जाता है 42-45 डिग्री तक, और ये नॉर्मली मतलब पहले ये लगता था एक्सट्रीम कहीं पर है पर अब ये हर जगह होने लगा है। तो इस ज़रूरी है कि हम सब इस पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन को ही लेकर के ना माने बल्कि इसके लिए जागरूक रहें कि हम अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करते रहें। किस तरह से करेंगे इसके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं।
0: बिल्कुल, अलनीनो से मुझे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही अलनीनो इफेक्ट आता है तो भारत पर इसके ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी जो इकोनॉमी का एक मैक्सिमम पार्ट हम एग्रीकल्चर बिजनेस या एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर सूखा पड़ेगा या पानी की कमी होगी तो फसलें नहीं होगी, और खेती से जुड़े हुए जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी रोजगार का संकट मंडराने लगता है। तो पर्यावरण का जो इफेक्ट है वो पॉलिटिकल भी है, वो अपने इकोसिस्टम पर इकोनॉमिकल भी है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इन चीज़ों को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या जुगाड़ लगाते हैं आप गर्मी को बीट करने के लिए, या फिर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना छोटा सा दायित्व किस तरह निभा रहे हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9462697568। याद रखिए कि हम सबका प्रयास पृथ्वी को एक खूबसूरत ग्रह बनाता है।

0: लिसनर्स कनेक्ट हमारा सेगमेंट भी है। तो आज अमित, अब हम पढ़ते हैं श्रोताओं के संदेश। उनमें से ये लिख रहे हैं हमें विक्रम, पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत ही संरक्षक के रूप में काम करने का दिन है कि हमें ध्यान रखना होगा। और ये हैं अब देवर्ष खत्री, 9 साल के हैं, जयश्री कॉलोनी के हमारे श्रोता, और लिखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ में एक टॉपिक जो कहीं ना कहीं अछूता रह गया है उस पर बात करते हैं। और वो टॉपिक है कि फिल्मों से हमें जानकारी तो मिलती ही है, लेकिन फिल्में कहीं ना कहीं हमें जागरूक भी करती हैं। आज पर्यावरण दिवस है तो हम ऐसी फिल्मों के ऊपर बात करेंगे जो पर्यावरण या पर्यावरण के आसपास के विषयों पर जो मूवीज़ बनी थी और जिन्होंने हमें ये बताया कि ये रेड लाइट जोन है, बस यहाँ रुक जाना चाहिए हमें, इससे ज़्यादा हमें बर्बादी नहीं फैलानी चाहिए। कुछ एनिमेशन मूवीज़ की बात करें तो काफ़ी सुंदर मूवीज़ एनिमेशन फील्ड में तो है ही, जो बच्चों को टाइम टाइम पर ये दिखाती है कि किस तरीके से आपको पर्यावरण को बचाना है। लेकिन अगर थोड़ी सी अच्छी फिल्म और बड़ी फिल्म की बात करें तो शेरनी एक मूवी आई थी, 2021 में रिलीज़ हुई थी। विद्या बालन इस फिल्म में मुख्य किरदार में थी और इसकी पटकथा लिखी थी आस्था टीकू ने, अमित मसूरकर ने इसको निर्देशित किया था। बहुत ही खूबसूरत और वन्य जीवों के संरक्षण के ऊपर ये मूवी थी। उसके बाद में मूवी 2017 में आई थी कड़वी हवा, जो कि जलवायु परिवर्तन और सूखे की मार झेल रहे किसानों की कहानी, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, इसकी कहानी लिखी थी नितिन दीक्षित ने और माधव पांडा ने इसे निर्देशित किया था। इरादा एक और फिल्म अनुष्का राजन ने लिखी, अपर्णा सिंह ने इसे निर्देशित किया और जल प्रदूषण के ऊपर ये मूवी थी। अब मूवीज़ के मैं नाम ले लेता हूँ, एक मूवी है जल जो पानी के ऊपर है और कौन कितने पानी में, ये मूवी जल प्रबंधन की योजनाओं के ऊपर इस मूवी को बताया था। और एक महत्वपूर्ण फिल्म है केदारनाथ, जो कि पहाड़ों में हो रही मानव दखलंदाजी और जो हम तोड़फोड़ कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेज और उसकी बुरी बातों पर, उसके इफ़ेक्ट्स पर ये मूवी बनाई गई थी।
0: जी, आपने फिल्मों की बात की है तो मैं श्रोताओं से भी एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर आपको पर्यावरण संरक्षण पर एक फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप उसका नाम क्या रखेंगे। चलिए कुछ और रेट्रो एरा की फिल्मों की बात करें तो दो बीघा जमीन जो 1953 में आई थी उसे कौन भूल सकता है, जिसमें एक किसान अपनी भूमि को बचाने के लिए, जिसे उद्योगपति खरीदना चाहता है, कारखाना बनाना चाहता है, उससे बचाने के लिए जो संघर्ष करता है वो दिखाया गया है। 62 की फिल्म हरियाली और रास्ता, जिसमें प्रकृति का जो खूबसूरती है, सौंदर्य है उसमें और शहर की अराजकता के बीच का जो संघर्ष वो दर्शाया गया है। मदर इंडिया फिल्म बताती है कि मौसम का पैटर्न मानवता पर, हम कितने उस पर निर्भर हैं, क्योंकि अगर एक प्राकृतिक आपदा आती है तो ग्रामीण, जैसे कहें कि कृषक समुदाय है, वो परिवार है, उनकी आजीविका कितनी बदल जाती है कोई प्राकृतिक आपदा आने पर। तो इस तरह बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो हमें प्राकृतिक समस्याओं के बारे में अवेयर करती हैं। पर कुछ श्रोता ये भी कहते हैं कि अगर इन्हीं समस्याओं को दर्शाते हुए साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत किए जाएं, फिल्मों में ही अगर इस तरह से समाधान दिए जाएं, क्योंकि फिल्में एक बहुत बड़ा जरिया होती हैं, तो ये श्रोताओं को और भी रोचक लगेगा और वो भी इसके लिए प्रेरित होंगे।
1: बिल्कुल, हमें एक और संदेश प्राप्त हुआ है और इनका कहना है कि हम कपड़े, बाइक, केक और ऐसी तमाम चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा अगर हम नर्सरी पर जाकर पेड़ पौधों पर भी खर्च करें और अपने घर के आसपास या अपने छत पर टेरिस गार्डन में इसे लगा दें तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को थोड़ा बहुत पर्यावरण सुरक्षित दे पाएंगे। ये कहना है सुशील यादव और रेणु यादव का, सेक्टर 4 हिरणमंगरी से।
0: किरण कुमावत है हमारी रेगुलर लिसनर, लिखती हैं कि प्रोग्राम उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये उनकी डेली रूटीन में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी यही चाहते हैं कि आपका हमारा प्यार ऐसा ही बना रहे। और ये लिखती हैं कि हमारे इसमें आप जो सिटी अपडेट देते हैं वो भी उन्हें अच्छी लगती है और जो पर्यावरण दिवस पर आज जानकारी दी गई वो भी उन्हें अच्छी लगी कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए आदि। इन्हें बहुत अच्छा लगा।

0: शुक्रिया। तो और भी हमारे श्रोता हैं जिन्हें कमल सुहालका का भी संदेश आया है और जिन्हें ये सारा प्रोग्राम अच्छा लगा है, नाम शामिल कर लेते हैं। नरोत्तम जी गौड़, कमल कुमार सुहालका और विष्णु कुमार सुहालका हैं, आप सभी का हम शुक्रिया करते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने संदेश भेजने के लिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने संदेश भेजा है, शुक्रिया करते हैं।
1: और इसी के साथ घड़ी की तरफ देखें तो आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। दीजिए इजाज़त मुझे यानी कि अमित को और
0: ज्योति को।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.
1: गुड मॉर्निंग उदयपुर, ये है आपका मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लिख सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। आज है शुक्रवार और आज हम बात करते हैं सेहत की, आपकी समस्याओं की, और विशेषज्ञ डॉक्टर से लेते हैं सही सलाह। तो शुरू करेंगे वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीबीएस जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल बेड़वास उदयपुर।
3: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच जीबीएच,
4: क्योंकि जीबीएच अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरो सर्जन डॉक्टर एस आर चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
5: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित गोयल है जो रूमेटोलॉजिस्ट है और ये लाइव प्रोग्राम है। रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में बता दूं कि आप जोड़ों के जो रोग होते हैं इनके आप विशेषज्ञ हैं। आजकल बड़ी सुपर स्पेशलिटीज़ निकल गई हैं, जो कि जो छोटे छोटे हिस्से होते थे बड़े, कई बार हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं या कुछ और विभागों पर, लेकिन ये एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें सिर्फ जोड़ों के जो रोग हैं इनकी स्टडी की जाती है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और सुबह के समय अगर आपको अकड़न होती है, उठते टाइम कई बार शरीर अकड़ता है, तो एक बार सलाह ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही दिक्कत हो, अगर कहीं सूजन है और वो साथ में लालिमा लिए हुए है तो भी आप इसमें थोड़ा ध्यान दें। आप हमें डॉक्टर गोयल से बात कर सकते हैं। चलने फिरने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप करें। थकान अगर महसूस होती है बिना किसी कारण के तो भी डॉक्टर मोहित आपकी सहायता कर सकते हैं। और जोड़ों के जो एक्टिविटीज़ हैं, जॉइंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको महसूस होता है कि पहले से कम है तो भी डॉक्टर मोहित को आप संदेश भेजें, अपनी समस्या बताएं और गाइडेंस लें। इसके जो प्रमुख कारण हो सकते हैं वो भी मोटे तौर पे, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो भी कई बार ये जॉइंट्स पेन होता है, मोटापा अगर ज़्यादा है, या कई लोगों का पारिवारिक इतिहास होता है। ये सब कारण इसलिए बता रहा हूँ कि आप हमें संदेश कर सकें कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं, और डॉक्टर मोहित इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। और अगर आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं तो भी आपको हमें सवाल करना चाहिए, और उसकी वजह से आपको परेशानियाँ हो रही हैं, चोट कई बार लग जाती तो उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है, तो इसके लिए भी हमें आप

बात कर सकते हैं डॉक्टर मोहित से। कई लोगों को धूम्रपान, आपको लगता है कि धूम्रपान सिर्फ आपके फेफड़ों या जो श्वसन तंत्र है उसी को प्रभावित करता, नहीं, ये पूरी शरीर को प्रभावित करता। आपकी छोटी छोटी जो नर्व हैं उनमें क्लॉट्स हो जाते हैं, उनमें जो खून है वो मोटा हो जाता है और वो कई जगह जमता है और इसकी वजह से आपके ज्वाइंट्स में भी दिक्कत आती है। ऑटो इम्यून डिजीज आजकल बहुत हो रही हैं और कल परसों ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है जिसमें बताया गया है कि कई चीज़ें अच्छी हुई हैं इस देश में। सबसे बड़ा जो कार अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि अब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR जिसको बोलते हैं वो 2.1 आ गई है। 2.1 का मतलब जनसंख्या स्थिर हो गई है। भारत में जो अब तक हम सुनते आए हैं कि जनसंख्या विस्फोट से गुजर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अंततः जो सरकारी प्रयास हैं या जो हमारे प्रयास हैं या जागरूकता है, अब जनसंख्या की संभावना ये है कि ये स्थिर हो रही है। लेकिन राज्यवार अलग अलग है, इंटरेस्टिंग ट्रेंड हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और कई जो उत्तर भारत क्षेत्र के जो राज्य हैं उत्तर भारत के, उनमें अभी भी जो TFR है वो ऊपर बनी हुई है, 2.62। पश्चिम बंगाल भी आ गया उसमें। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अलार्मिंगली कम है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें लगभग 1.5 यानी कि जनसंख्या का जो बढ़ोतरी है वो अब नेगेटिव ट्रेंड में जाएगी। खैर, ये आने वाले समय की चुनौतियां हैं जो होंगी। इसी में एक चेतावनी दी गई है कि ऑटो इम्यून जो डिजीज हैं और खासतौर से डायबिटीज या जो दूसरी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज हैं ये धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि समाचार पत्रों में आती हैं ये चीज़ें, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम जो चटपटी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन पर अगर ध्यान देंगे तो आपके आसपास स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसके बारे में आप एक अच्छी राय बना पाएंगे और गलत फहमियों में नहीं रहेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, 90% जो प्रसव है संस्थागत प्रसव हो रहे हैं 90% तक, और जो ठिगनापन बच्चों में देखा जा रहा था वो 17%, मतलब स्टंटिंग एक पैरामीटर होता है ग्रोथ का, और वो अब कम हुआ है 17% का उसमें एक तरह से, और ये लगभग पिछले 3 या 4 साल के अंदर ये परिवर्तन आए हैं। ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन इसके बीच में एक चेतावनी है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही है। खैर, ये मैंने एक जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसकी जानकारी देने की कोशिश की। लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन डॉक्टर मोहित को बुलाया है तो आज हम फोकस करेंगे कि जो रूमेटोलॉजी से संबंधित

0: हेल्थ सर्वे था उसकी जानकारी देने की कोशिश की। लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन डॉक्टर मोहित को बुलाया है तो आज हम फोकस करेंगे कि जो रूमेटोलॉजी से संबंधित बातें हैं वो करें। और ये लाइव प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हमें आप व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9462697568 9462697568। और परंपरागत जो रेडियो सेट्स हैं उन पर तो आप एफएम पर सुन ही पाएंगे इस प्रोग्राम को। इसके अलावा मोबाइल्स पर एक एप्लीकेशन है हमारी, उसका नाम लिख लीजिए, न्यूज ऑन एआईआर ऐप है, वो आप डाउनलोड करके ये प्रोग्राम लाइव सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और धरती के किसी भी कोने में आपके किसी भी जानकार को ये ऐप डाउनलोड करवा के आप उसे ये प्रोग्राम डॉक्टर मोहित का सुनवा सकते हैं। डॉक्टर मोहित, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: धन्यवाद विनोद जी और आकाशवाणी उदयपुर इस महत्वपूर्ण विषय पे ये वार्ता रखने के लिए।
0: डॉक्टर मोहित,
1: श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: डॉक्टर मोहित, आज पर्यावरण दिवस है। मैंने काफी बातें की वैसे दूसरी, लेकिन ये चीज एक जरूरी है जिसपे मैं आपकी भी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। हालांकि आप विशेषज्ञ नहीं है इसके, लेकिन पर्यावरण और जो हमारा जो शरीर है ये डायरेक्ट रिलेटेड है। ये जो आपके आसपास जो चेंजेज आते हैं आपकी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं, एनवायरमेंटल थ्रेट्स, नॉट ओनली ह्यूमन बल्कि एक पूरा जो संसार है उसमें।
1: विनोद जी, ये पर्यावरण, जैसे आपने कहा कि मैं हालांकि उसका प्राइमरी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये आप जान के आपको भी ताज्जुब होगा कि सभी स्पेशलिटी से इसका ताल्लुक है। आजकल ये जाना गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारे ऑटो इम्यून डिजीज में और गठिया के अंदर।
0: अच्छा,
1: एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण भी कुछ गठिया रोग या अन्य दूसरी स्पेशलिटी में भी रोग होते हैं जो बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण।
0: कैंसर में तो बताते हैं बहुत बड़ा कारण,
1: कैंसर में भी बहुत बड़ा कारण है। इवन कई सारे ऑटो इम्यून रोग में एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो चेंजेस हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जहां लोग रहते हैं वहां पर कुछ रोग अधिक पाए जाते हैं।
0: एज ए ले मैन आपका रिएक्शन चाहूंगा, आप अपनी प्रैक्टिस पे जहां भी जाते हैं, बड़े आप बाहर जाते हैं कई बार गाड़ियों में और भी आसपास देखते ही हैं, वाटर बॉडीज के नाम पे हमारे दिमाग में दो ही चीज आती हैं, फतेह सागर और पिछोला। लेकिन इस आसपास के क्षेत्र में करीब 30-35 तालाब हैं जिनके सहारे से आप गुजरते होंगे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है डॉक्टर साहब। और वहाँ बैठने की जगह छोड़ी, गंदे नाले में परिवर्तित हो रहे हैं, गांवों की या शहरों की गंदगी उनमें जा करके विसर्जित हो रही है।
1: बिल्कुल, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि वो जो वाटर बॉडीज हैं, वो जो छोटे तालाब हैं जहाँ पहले हमें काफ़ी चल के जाना पड़ता था और उसके बीच में छोटे बड़े पेड़ हुआ करते थे, वो अब सीधे जमीन या रोड से सटे हुए आ गए हैं,
0: रोड पे आ गए लगभग। और वहाँ पर तमाम तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज में होने लग गई हैं, उन वाटर बॉडीज में जो जल जीवन था या आसपास रहने वाले जो और जैसे हिरण है या बघेरे हैं या जो दूसरे और भी जानवर हैं, जीव हैं, वो भी लगभग उन स्थानों को छोड़ करके और अंदर चले गए हैं। और एक चीज़ तो आप देख ही सकते हैं कि जहाँ भी जिस भी रोड पर निकल जाएं चारों तरफ पहाड़ियाँ जो हैं वो शहर के आसपास कटी हुई हैं और उन पर निर्माण हो रहे हैं। अभी निर्माण क्यों हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि पहाड़ शायद निर्जीव चीज़ है, लेकिन शायद पहाड़ बहुत बड़े जीवन को समेटे हुए अपने आप में। खैर, एक और बात डॉक्टर साहब, हालांकि स्पेशलिस्ट नहीं है लेकिन ध्यान आ गया, कॉलोनीज में हम रहते हैं, हमारे आसपास आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी शानदार बंगले कॉलोनीज बनी हुई हैं, लेकिन बाहर जो एक आध पेड़ का स्कोप होता है वो सिर्फ इसलिए हम नहीं लगाते क्योंकि हमारी कार पार्क नहीं हो पाएगी वहाँ पर। ये जो एटीट्यूड है, आप मार्केट देख लीजिए, मेन मार्केट, बापू बाजार या जो भी बड़े बाजार हैं, आप उन दुकानदारों को एक पेड़ लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी कोने में लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की स्थितियाँ बन गई हैं कि हमारे गली मोहल्लों से जो हरियाली है वो लगभग गायब हो गई है। मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, हालांकि अब भी राजस्थान का सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट उदयपुर में है लकीली। और खैर, डॉक्टर मोहित, तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं, गठिया रोग के बारे में सामान्य जो जानकारी है उसके हिसाब से सब हम हड्डियों के डॉक्टर के पास चले जाते थे अभी तक। अब ये आप वाली स्पेशलिटी कहती कि नहीं हम ज़्यादा जानकार हैं, ये थोड़ा आम आदमी को समझाएं कि किस तरह से आपके पास आना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है।
1: बिल्कुल विनोद जी।

0: और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पेशलिटी वाले बोलेंगे कि हम ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन ये स्पेशलिटी अन्य से भिन्न है। तो कई सारी जानकारी इस स्पेशलिटी के बारे में आम जन में नहीं है और कई सारी भ्रांतियां भी हैं, जैसे कि जोड़ों का रोग ही सिर्फ रूमेटोलॉजी मान लिया जाता है, लेकिन ये जोड़ों नहीं शरीर के, जैसे हमने पहले भी कई बार बात करी है कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक किसी भी अंग को ये गठिया रोग जो होते हैं, रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस जो होते हैं, प्रभावित कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: दूसरा, बहुत समय से माना गया है कि बढ़ती उम्र में गठिया का प्रकोप ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ जो एक कॉमन गठिया है जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें कि जोड़ों में घिसावट आती है, वो उम्रदराज लोगों में ज़्यादा होती है। अन्य ज़्यादातर गठिया कम उम्र में ज़्यादा होती है, बनिस्पत जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इन बीमारियों की तीव्रता और कम होती जाती है।
1: क्या एक्टिविटीज ऐसी होती हैं गठिया में, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? और गठिया भी एक तरह का नहीं बताते, तीन चार तरह, गाउट है, आरे है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये अलग अलग नाम है लेकिन लक्षण एक जैसे ही हैं सबके। ये क्या अलग अलग प्रकार के भी हैं और है क्या गठिया?
0: बिल्कुल विनोद जी, जो आपने कहा वो उसका कुछ भाग सही है और कुछ भाग पे मैं और प्रकाश डालना चाहूँगा।
1: जी
0: गठिया रोग जो रूमेटोलॉजिकल डिजीज हैं, 100 से ज़्यादा तरीके के माने जाते हैं, 100 से ज़्यादा तरीके के अलग अलग रूमेटोलॉजिकल
1: समूह
0: डिजीज हैं।
1: है
0: बिल्कुल,
1: इतना बड़ा।
0: इतना बड़ा समूह है, और उनमें से जो एक कॉमन चीज़ है, जो कॉमन थीम है, वो ये है कि इनमें से ज़्यादातर में जोड़ों में कुछ ना कुछ प्रभाव होता है,
1: अच्छा
0: और जोड़ों में दर्द होता है, अकड़न होती है, सूजन होती है, आपने कहा जैसे कि ऊपर की त्वचा पे लालिमा हो सकती है। इसके अलावा इन सभी गठिया रोग में और अन्य अंगों पे प्रभाव आ सकता है, जैसे लूपस नाम का गठिया रोग है तो वो त्वचा को,
1: अच्छा
0: हार्ट को, किडनी को और लिवर को और इवन ब्लड को, इवन प्रेगनेंसी में बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल सकता है।
1: ल्यूपस,
0: बिल्कुल, इसी तरह
1: अच्छा
0: से अन्य एक रोग है जो कि फेफड़ों पर अधिक प्रभाव डालता है।
1: कितना कॉमन है ल्यूपस? ज्यादा
0: ल्यूपस बहुत कॉमन नहीं है,
1: ठीक है
0: लेकिन
1: जी।
0: हम जब उससे संबंधित रोगों की बात करें तो सारे मिला के करीब करीब 0.5 to 1%, 0.5 से 1% लोगों में होते हैं, जो कि अगर हम देखें तो एक बड़ा नंबर बन जाता है।
1: अच्छा
0: ये मात्र ल्यूपस से और ANA संबंधित रोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी गठिया रोग की बात करें तो ये नंबर काफ़ी ऊपर 5% से ऊपर चला जाता है।
1: ल्यूपस दूसरे रोगों की वजह से होता है, ल्यूपस की वजह से दूसरे रोग होते हैं, या दोनों ही चीजें संभव हैं?
0: दोनों ही चीज़ें संभव है, लेकिन यूजुअली लूपस का कोई कारण नहीं होता है और लूपस से दूसरे रोग और अन्य अंगों पर प्रभाव पड़ता है।
1: ऑटो इम्यून है।
0: बिल्कुल, और कुछ दवाइयाँ और कुछ रोग ऐसे पाए गए हैं जिसमें कि लूपस जैसी बीमारी होती है, लेकिन वो जनरली दूसरे लूपस, जो प्राइमरी लूपस होता है, उसकी तरह लंबे चलने वाली नहीं होती है, और उसका जब हम कारण को रिजॉल्व कर देते हैं तो लूपस ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर ठीक हो जाता है।
1: तो क्या घटनाक्रम होता है ऐसा, या अनडिफाइंड है ये अभी तक, कोई कारण इसके एस्टेब्लिश होते हैं?
0: बिल्कुल, इसमें पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अब साइंसेस में प्रोग्रेस करके इसको समझ चुका है कि पहली बात तो जैसे आपने कहा, ये इनमें से काफ़ी रोग रूमेटोलॉजी में सारे ही रोग ऑटो इम्यून हैं ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी
1: अच्छा
0: रोग इसमें से ऑटो इम्यून हैं। अब उसमें ये माना जाता है कि तीन फैक्टर्स
1: ऑटो
0: होते
1: इम्यून भी
0: हैं।
1: थोड़ा समझा दो लोगों को,
0: बिल्कुल
1: ये जो शब्दावली समझ में नहीं
0: बिल्कुल,
1: आती।
0: ऑटो इम्यून का मतलब है जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम जो है, उसका काम है कि बाहर से आने वाले जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनसे लड़ना और शरीर को बचाना। ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर एक तरह से कहते हैं कि शरीर में प्रोग्रामिंग एरर हो गई है,
1: अच्छा
0: कुछ
1: मिसबिहेव हो गया।
0: मिसबिहेव कर रहा है बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम, और वो बाहर वाले कीटाणु से लड़ने की जगह खुद ही शरीर के ऊतकों को, जॉइंट्स को या अन्य अंगों को, जैसे मैंने बात करी, उनके ऊपर अटैक करता है। तो
1: मतलब
0: इसमें
1: आपका जो सैनिक था, जो आपकी रक्षा करेगा, वो आप पे एक तरह से वापिस आ रहा है, अटैक कर रहा है।
0: बिल्कुल, तो जैसे अपन ने पहले भी बात करी कि मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगा कि अगर जहां पर सपोज बॉर्डर पर सैनिक हैं दोनों तरफ, एक सैनिक ऐसा है कि जिसमें एनर्जी तो बहुत है लेकिन वो दिशा खो चुका है और वो सब तरफ घूम घूम के गोली चला रहा है, तो वो सामने वालों के साथ साथ अपनी इधर भी हानि पहुंचा रहा है। तो ऐसे में आपको उसको समझाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, इतना भी शांत नहीं कर देना पड़ेगा कि वो सामने भी गोली चलाना बंद कर दे, लेकिन
1: अच्छा
0: इतना शांत करना पड़ेगा कि वो खुद की तरफ अटैक करना बंद करे।
1: वो पुराने जमाने में हाथी जो थे वो कई बार अपनी सेना को भाग डर के मारे भाग
0: बिल्कुल
1: जाते।

0: थे वापिस एक तरह का उसी तरह। चलिए ये ऑटो इम्यून के बारे में आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, ये ऑटो इम्यून किस तरह से ट्रिगर करता है चीज़ों को फिर आगे?
1: बिल्कुल, तीन फैक्टर्स इसमें माने गए हैं कि ऑटो इम्यून रोग क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बात करूं कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स के सुनकर श्रोता इसको वंशानुगत ना माने। अच्छा। ज्यादातर गठिया वंशानुगत नहीं होती है,
0: नहीं है,
1: लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। फिर जैसे हमने बात किया, सेकेंड कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स माने जाते हैं जो कि एग्जैक्ट।
0: तो टोटल का कितना अपन जेनेटिक माने? 10 से 5%।
1: मैं जेनेटिक जो कह रहा हूँ, जेनेटिक में फिर मैं से मैं कहना चाहूंगा वंशानुगत नहीं। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसे हम कहते हैं कि रिस्क होती है, कि अगर ये जीन्स हैं जो आप शेयर करते हैं अपने माता से, पिता से,
0: तो
1: भाई
0: बहनों से, चांसेस
1: से, तो कुछ रिस्क बढ़ जाती है।
0: सर्टेनिटी नहीं,
1: सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वो रोमैटिक रोग होगा।
0: दूसरा आप एनवायरमेंटल बता।
1: बिल्कुल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, इनमें सभी रोमैटिक रोगों में एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण वाले कौन से फैक्टर्स हैं, ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन काफ़ी जगह पाया गया है कि कई जगह पर अगर बार बार पेट में इन्फेक्शन हो रहा है तो एक प्रकार की गठिया जिसको कि स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस बोलते हैं वो बढ़ जाती है।
0: पेट में इन्फेक्शन?
1: बिल्कुल,
0: हम तो जॉइंट्स पेन पे आपके पास जाने की सोच रहे थे।
1: इवन ये माना गया है कि जब कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंस में एक तरह का मसूड़ों का इन्फेक्शन गठिया होने के चांसेस को बहुत अधिक बढ़ा देता है।
0: तो ये तो आई थिंक मेडिकल फर्टिलिटी भी नहीं जान पाती होगी। आप तो कह रहे हैं, लेकिन हम कई बार मसूड़े दिखाने जाते हैं या पेट, वो लोग कभी इस एंगल से नहीं देखते चीजों।
1: तो इसको विनोद जी इस तरह समझेंगे कि ये गठिया हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक रिस्क किसको है ये पता नहीं है। तो इन सब का इवैल्यूएशन तभी होना चाहिए जब किसी को जोर दर्द हो गया, नहीं तो हम सभी लोगों के सब टेस्ट कराते रह जाएंगे जो कि बिल्कुल किसी भी तरह से सही नहीं है।
0: तो जो एनवायरमेंटल पॉइंट आप ले रहे हैं, ये क्या ट्रिगरिंग एजेंट हैं आपके आसपास? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे बच तो नहीं पाएंगे लेकिन जो आपको प्रभाव डालती हैं, कुछ ऐसी चीजें?
1: बिल्कुल, तो जैसे हमने कहा कि है ना, बार बार इन्फेक्शन होना, कुछ जगह पर पॉल्यूशन भी इसमें पाया जा रहा है कुछ तरह के गठिया रोगों में। इसके अलावा टबैको स्मोक एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है। अच्छा। अगर आप स्मोक नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उस टबैको स्मोक वाले एनवायरमेंट में हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर
0: जो एक
1: है।
0: चूल्हा गाँव में जलाते हैं लोग,
1: चूल्हा का मैं नहीं कहूंगा, उसमें टबैको नहीं है, उससे अन्य रोग हो सकते हैं।
0: अच्छा ठीक है, जो
1: मैं गठिया की बात कर रहा हूँ उसमें टबैको स्मोक इस,
0: धूम्रपान नहीं हो आप?
1: बिल्कुल
0: ठीक है। उम्र का कितना रोल है?
1: जैसे मैंने कहा, ऑटो इम्यून रोग जनरली, ज्यादातर ऑटो इम्यून रोग कम उम्र में इन रोगों की शुरुआत होती है। तो कुछ गठिया की शुरुआत 15 से 40 की उम्र में, कुछ की 20 से 50 की उम्र में होती है। ज़्यादातर ऑटो इम्यून रोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपवाद तो मेडिकल क्षेत्र में सबसे पहले आ जाते हैं, तो ज़्यादा उम्र में भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर रोग कम एज में होते हैं और उम्र बढ़ते बढ़ते उनकी तीव्रता कम हो जाती है।
0: ऑटो इम्यून का कोई अभी तक मैनेज करने का कोई मेडिकल सॉल्यूशन नहीं आया है?
1: ऑटो इम्यून रोगों को मैनेज करने का बिल्कुल मेडिकल सॉल्यूशन है।
0: मैनेज नहीं मतलब इसको टर्मिनेट करना, मतलब टोटल संभावना ही खत्म कर देना, ऐसा कुछ नहीं है?
1: ऐसा नहीं है और अभी तक तो नहीं है।
0: जैसे हम सिर्फ गठिया तक ही सीमित है, लेकिन डायबिटीज है, थायराइड है और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हम अक्सर उनको मैनेज ही कर पाते हैं, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है?
1: बिल्कुल, इनमें से कुछ परसेंटेज ऑटो इम्यून होते हैं, सभी डायबिटीज और थायराइड ऑटो इम्यून नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा प्रपोर्शन रहता है। इसमें विनोद जी समझना हमें ऐसे पड़ेगा कि अभी तो हमें साइंस से जो पता चला है उसमें इन डिजीज को प्रिवेंट करने का या फिर क्योर करने का एक तरह से कोई तरीका नहीं है, लेकिन इस पे हमें ये देखना होगा कि अगर हम कुछ इन्फेक्शंस को और कुछ बीमारियों को छोड़ दें तो ऑटो इम्यून ही नहीं, कोई भी रोग जिसको हम क्योर कहते हैं, जड़ से मिटाना कहते हैं, वो नहीं होता है। शायद शरीर की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है, हो सकता है आगे साइंस पता लगाए कि इनको जड़ से कैसे मिटाएंगे, लेकिन ज्यादातर रोगों में ऐसा नहीं हो पाता।
0: एक मेरा लेमैन वाला सवाल है, आप तो कह रहे हैं कि साहब मैनेज ही कर सकते हैं, लेकिन मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूँ कि जोड़ों के दर्द को बिल्कुल समूल नष्ट कर देंगे, आप ये दवा लगाइए, आप ये दवा लगाइए। मैं किसी का प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, और बड़े स्तर पर है वो, डॉक्टर मोहित गोयल की आवाज़ बहुत कम दूर तक जा रही है, उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, कुछ उसमें सब्सटेंस है या आपने कभी ध्यान दिया इस चीज़ पे?

0: होता क्या है विनोद जी कि दर्द तो पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। अब ऐसे में कुछ गठिया रोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ठीक हो जाते हैं। अब उसमें जो दवाओं का रोल है उसके अंदर, वो तो वही है कि आपके दर्द को कम करना है, सूजन को कम करना है और जोड़ को खराब नहीं होने देना है, अन्य अंगों पे प्रभाव नहीं
1: नहीं
0: आने
1: पढ़ने
0: देना है।
1: देना।
0: लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो स्वतः ही कुछ हफ्तों से कुछ महीनों में ठीक हो जाने वाले हैं, तो ऐसे में अगर रोगी को ये समझा दिया जाएगा कि ये दवा देने से या ये करने से आपका रोग जड़ से खत्म हो गया है, तो वो एक बार को मान लेगा कि ये इस वजह से मेरा रोग जड़ से खत्म हुआ, लेकिन ऐसा
1: बात इससे आगे है डॉक्टर मोहित, बात यहां तक चली गई है कि जो वर्षों से पीड़ित लोग हैं उनको समझाया जा रहा है, जिनके ज्वाइंट्स पेन है, या लगभग ये आप वाला ही डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा जिसका मार्केट चल रहा है पैरेलल जो मेडिसिन से इनका, और वो दावे के साथ कहते हैं कि साहब, और एक बताते हैं वो तो बाकायदा वीडियो में कि ये प्रूवन तो नहीं है। तो ये आपको कभी इनसे कॉम्प्लिकेशंस लेकर के लोग आप तक पहुंचते हैं?
0: बिल्कुल विनोद जी, कॉम्प्लिकेशंस लेके पहुँचते हैं और यह एक तरह से माने कि इंसान इसी तरह सोचता है, क्योंकि जब भी किसी को एक ऐसी रोग है, ऐसा रोग है जो कि लंबा चलने वाला है, तो बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है और ये नेचुरल है, इसमें कोई
1: देसी दवाई
0: खराब
1: से
0: नहीं
1: ठीक
0: है।
1: हो जाएगा या फलां डॉक्टर से ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल, हम लोगों को भी ऐसा लगेगा कि आज हमें अगर किसी चीज़ के लिए बोला गया है कि आपको लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक दवा लेनी है, तो हम भी हो सकता है बीच में जाके बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे कि क्या
1: पैरेलल।
0: पता इससे ठीक हो जाए।
1: हाँ
0: मुझे बेनिफिट ये है कि मैंने साइंस को पढ़ा है और मुझे पता है कि ये रोग किस तरह हो रहे हैं, इनको किस तरह मैनेज करना है, और इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी लोग इस चीज़ के लेकर आते हैं।
1: कई बार इस तरह के, जो थोड़ा सा मैं इस पे ध्यान चाहूंगा आपका बिना किसी का नाम लिए, इनमें कई बार हार्मफुल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपके शरीर को दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टीरॉइड्स का जो अनुपात है या दूसरी जो केमिकल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन डेडली होता है, कई बार कोई नई बीमारियां दे बैठता है आपको, ऐसा है?
0: बिल्कुल विनोद जी, और इसमें यहाँ पर एक और आपने अच्छा नाम
1: किडनी,
0: लिया
1: खासतौर से
0: स्टेरॉयड
1: किडनी
0: का,
1: इन्वॉल्व होती है।
0: इसमें मैं एक भ्रांति के बारे में और यहाँ बात करना चाहूँगा कि कई सारे गठिया रोगों में स्टेरॉयड का यूज़ होता है मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के द्वारा भी, लेकिन ज़्यादातर गठिया रोगों में लंबे समय आज की डेट में स्टेरॉयड का रोल नहीं है।
1: अच्छा
0: बहुत कम समय के लिए शुरुआत में बहुत कम रोग ऐसे हैं जहाँ पर कि स्टेरॉयड लाइफ सेविंग होता है और लंबे समय तक दिया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी की गठिया जो कि बिना स्टीरॉयड के जिसका उपचार हो सकता है वो स्टीरॉयड से ही लंबे समय उपचार किया जा रहा है या बहुत अधिक डोज में स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर नुकसान होने की बहुत संभावना रहती है। ये स्टीरॉयड से तो शरीर के किन्हीं भी अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो पेन किलर्स जो होते हैं स्पेशली जो लोग बिना किसी से पूछे
1: सीधा
0: लेके खाते हैं, उनसे है ना किडनी पर दुष्प्रभाव होते हैं और हम ऐसे रोगी बड़े आमतौर पर देखते भी हैं।
1: डॉक्टर मोहित, एक स्टीरोइड्स को लेकर, क्या स्टीरोइड्स सारा का सारा ही नुकसानदायक है या गाइडेड रूप से मेडिसिनली एक्सेप्टेड है?
0: बिल्कुल विनोद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। स्टेरॉयड काफ़ी सिनेरियो में जान बचाते हैं, लाइफ सेविंग है, और हम कहते हैं कई सारे सिनेरियो में जॉइंट सेविंग है, जहाँ आपका जोड़ बचा लेते हैं,
1: अच्छा
0: जोड़ नहीं तो परमानेंटली ख़राब हो जाएगा। तो जैसे हम गठिया रोगों में दवाइयाँ देते हैं तो आमतौर पर यह दवाइयों का असर आने में 4, 8 या 12 हफ्ते का समय लगता है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए स्टीरॉयड या और कुछ तरह की दवाई दी जाती है जो कि एक बार आपका जोड़ परमानेंट खराब होने से बचा ले, और ज्यादातर गठिया में जैसे मैंने कहा कि उतना ही रोल है।
1: तो बाद में विड्रॉ कर लेते हैं आप?
0: बिल्कुल बिल्कुल, विड्रॉ कर लेते हैं उसको, तो हम उसका फायदा भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं, अधिकतम फायदा ले लेते हैं और नुकसान के चांसेस को मिनिमम कर देते हैं।
1: एक चोट वाला आपने पॉइंट डिस्कस नहीं किया जिसका, इस तरह के जो आपके गठिया में चोट का भी कोई रोल है, इंजरीज?
0: ज़्यादातर गठिया में चोट का रोल नहीं है, लेकिन कुछ केस में जहाँ पर चोट जोड़ के पास आई हो तो वो जोड़ दूसरे शरीर के अन्य जोड़ों के मुकाबले में फास्ट घिसता है, तो हम ये कहते हैं एजिंग फास्ट हो गई है उसकी, उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, लेकिन बाकी अन्य गठिया में
1: जैसे
0: चोट
1: कई
0: का
1: बार
0: कोई
1: कई
0: बहुत
1: लोग
0: रोल
1: बोलते
0: नहीं।
1: हैं कि साहब मेरे पुरानी चोट है और अभी वापिस उभर आई 10-12 साल बाद में, खास तौर से घुटनों को लेकर के या एंकल्स को लेकर के जो लोड बीरिंग पार्ट्स हैं, ये फिनोमिना ठीक है क्या 10-12 साल बाद वापिस पेन आ गया?
0: ज्यादातर केसेस में ये उससे संबंधित नहीं होता है, क्योंकि सभी की उम्र बढ़ रही है तो जोड़ घिसता है, लेकिन कहीं कहीं पर

0: पहले एक्सीडेंट हुआ था और अब मेरे वापस ये दिक्कत शुरू हो गई।
1: बिल्कुल, तो जैसे कहीं कहीं पर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जैसे हम लिगामेंट, टेंडन, मांसपेशी वगैरह होती है, उनमें कई बार पूरी हीलिंग नहीं होती है, या फिर वो कहीं पर हल्की फुल्की चीरा ही उसमें रह जाता है परमानेंट, या वो सिकुड़ जाती है पूरी तरह, वापस जुड़ नहीं पाती है, तो ऐसी जगहों पर दर्द हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर केसेस में वो उससे संबंधित नहीं होता है।
0: डॉक्टर मोहित हमारे साथ हैं और ये लाइव प्रोग्राम है और आप जोड़ों के रोग के विशेषज्ञ हैं, रिमेटोलॉजिस्ट हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9462697568, 9462697568, 9462697568। डॉक्टर मोहित, एक सवाल है, कृष्णा कुमावत हैं उदयपुर से ही, ये कह रही हैं कि नमस्ते सर, मेरी उम्र 43 साल है, 43 ईयर्स हैं, हाइट 5 फुट 3 इंच है और वज़न 75 किलो है। मेरे एक पैर में घुटने फोल्ड करने में, चलने में असहनीय दर्द लगभग 4 महीने से हो रहा है। 3-4 डॉक्टर को दिखाया पर राहत नहीं मिली है, कृपया कुछ सजेस्ट करें।
1: इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि
0: कृष्णा जी,
1: सिर्फ कृष्णा जी, आपको जैसे सिर्फ घुटनों के अंदर, एक ही घुटने में प्रॉब्लम है या सिर्फ घुटनों में प्रॉब्लम है, तो यह आमतौर पर जोड़ में घिसावट के कारण होती है। कई बार घिसावट जो होती है उसमें समस्या इतनी तीव्र हो जाती है कि सूजन भी आ जाती है उनको फोल्ड करने में, जैसे उन्होंने कहा कि घुटने को प्रॉब्लम आ रही है।
0: 43 ईयर्स ज़्यादा नहीं है एज,
1: बिल्कुल,
0: मेरे ख्याल से मेनोपॉज भी नहीं हुआ अगर आप,
1: लेकिन काफ़ी चीज़ों पे ये निर्भर करता है, जैसे कि वो कार्य किस तरह का करते हैं। महिलाओं में यह ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि बहुत देर तक एक ही जगह पर महिलाएं खड़ी रहती हैं, स्पेशली किचन के अंदर।
0: मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है?
1: मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ये मानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के समय पर काफ़ी तरह के दर्द बढ़ सकते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण, लेकिन वह दूरगामी या लंबे समय का प्रभाव उसका नहीं होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके, उससे कई सारी प्रॉब्लम्स जोड़ों की है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन की बढ़ती है।
0: और ये तो 3-4 महीने से ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है।
1: तो अगर ये ज़्यादा लंबे समय से नहीं है तो कुछ जीवन शैली में बदलाव करके, एक्सरसाइज, इसमें अगर ये सिर्फ जोड़ों में घिसाव का मामला है और गठिया नहीं है तो बहुत लंबा इसके अंदर इलाज की जरूरत भी नहीं होती इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, लेकिन एक्सरसाइज, जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो आराम इसमें आना चाहिए और वो ही लंबे समय का ट्रीटमेंट इसके अंदर रहता है जब तक जोड़ पूर्णतया खराब ना हो जाए।
0: इसी बात को थोड़ा और खींचता हूँ आगे, अगर मान लो ये काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि मालिश करना शुरू कर देते हैं, कोई तेल वगैरह लेकर के मालिश करना या सेक करना, ये एडवाइजेबल है या मेडिकल सुपरविजन में ही करना चाहिए, बिना सलाह के नहीं करना चाहिए?
1: नहीं, इसमें ये गलत नहीं है, इसमें सिर्फ तकलीफ वहां पर आती है।
0: कई बार डॉक्टर्स मना करते हैं कि मत करना मालिश,
1: वो स्पेसिफिक बढ़ जाएगा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर मालिश हल्के हाथ से की जा रही है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया जा रहा है,
0: हल्का लेना,
1: और कोई जो ऑयल या जो क्रीम यूज करे वो इरिटेंट या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाली नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आम जो घर में अपने ऑयल होता है या क्रीम होती है मॉइस्चराइजिंग, उससे आप मालिश कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक भी गर्म या ठंडा, इतना गर्म नहीं कि स्किन जल जाए,
0: अच्छा
1: हल्का गर्म या ठंडा कर सकते हैं, जिससे भी आपको पेन में रिलीफ मिलता है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इससे अंदरूनी प्रॉब्लम ठीक
0: नहीं होगी, ये सिम्टोमेटिक है,
1: बिल्कुल दर्द में आराम मिलेगा, इसलिए कर सकते हैं।
0: ठीक है, एक सवाल और है सर इसमें, ये मैं न्यू भोपालपुरा से बोल रहा हूँ और मेरे घुटने की गादी में टूटी हुई है और गादी का इलाज भी मैंने करवाया था 2017 में से, मेरे प्रॉब्लम है और मैं अंग्रेजी दवाई और आयुर्वेदिक दवाई भी ले लेता हूँ तो भी कुछ खास आराम नहीं पड़ रहा है। फिलहाल मैं घुटने के एक बेल्ट बांधता हूँ जिससे मेरा पैर में लचक नहीं खाया, तो कुछ उपचार बताएं। एक तो ये शायद इन्होंने सब तरह की दवाइयाँ ट्राई की क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है एक्चुअली समझ में, तो अब ये बेल्ट बांधते हैं वहाँ पे एक छोटी सी, उससे इनको लचक नहीं आती और करें काफ़ी दवाइयाँ ट्राई की मुझे, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है लेकिन बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है।
1: जैसे कि विनोद जी पहले
0: और इनकी दुकान है, ये कह रहे हैं कि दिन भर दुकान है इसलिए खड़ा रहना पड़ा।

0: बिल्कुल विनोद जी, तो जैसे हमने कृष्णा जी के सवाल पे बात की थी, वहाँ यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ गद्दी में चोट है, गद्दी में अगर इंजरी है, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म लंबे समय दवाइयों का कोई रोल नहीं है, अगर और कोई गठिया नहीं है तो। इसमें कसरत, जीवन शैली में बदलाव ये हैं, और अगर नहीं होता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो सर्जरी करते हैं उसका रोल है। दवाइयाँ इसमें इसका लंबे समय का इलाज नहीं करेंगी। प्लस जैसे उन्होंने बताया कि वो दुकान में कार्य करते हैं और
1: खड़े
0: खड़े
1: रहते
0: रहते
1: हैं।
0: हैं, तो ये प्रॉब्लम उससे बढ़ने की संभावना रहती है। और इन चीज़ों में कई बार जब अगर सर्जरी नहीं करवाते हैं या सर्जरी का अभी इंडिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने भी नहीं कहा है, तो ऐसे में लंबे समय तक एक्सरसाइज, जीवन शैली में बदलाव और बार बार डॉक्टर से मिलके उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इसमें बीच में इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता कि ठीक नहीं हुआ तो हमने कुछ भी नहीं किया। अगर ये एक सीमा से ज़्यादा बढ़ गया है तो जैसे मैंने कहा कि जो सर्जन्स होते हैं उनको इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। दवाइयों का इसमें बहुत लंबे समय कोई रोल नहीं है।
1: ये बेल्ट जो बांधते हैं उससे थोड़ा बहुत करेंगे सपोर्ट है।
0: बेल्ट बांधने से ये होगा, दो चीज़ होंगी, एक तो कुछ सपोर्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा जो इन चीज़ों से हेल्प मिलती है वो ये होती है कि हमें ध्यान रहता है कि हमें वहाँ प्रॉब्लम है,
1: प्रॉब्लम
0: तो हम अनजाने में कहीं पे दो सीढ़ी एक साथ उतर गए या हम एकदम से ऐसे
1: वार्निंग
0: टर्न
1: मिलती
0: हुए,
1: है, चेतावनी
0: तो इसकी
1: मिलती
0: जो वार्निंग मिलती है हमें।
1: है, सपोर्ट भी मिलता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता है वहाँ का, उस हिस्से का, या ये मेंटल रिलीफ है हमको?
0: नहीं बिल्कुल, कुछ सपोर्ट मिलता है लेकिन ब्लड सर्कुलेशन वाली
1: जैसे वो कहते हैं कि
0: बात,
1: साहब ये तो गर्म पट्टी है, इससे खून का दौरा बढ़ जाएगा।
0: अगर गर्म पट्टी बांध देंगे तो टेम्परेरी कुछ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, लेकिन वो एक थोड़ा सा बढ़ने के बाद में और बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं
1: अच्छा,
0: होगा।
1: वो थोड़ा सा होगा रिलीफ,
0: बिल्कुल
1: एक बार मिल सकता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन आपको फाइनली डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। एक सवाल और है, ये सवाल है सुनीता सिंह है, ये कह रही कि नमस्कार सर, मेरी उम्र 46 साल है और वजन 83 किलो है, 83 kg वेट है, ज़्यादा ही है, और 5.4 इनकी हाइट है। मुझे काफ़ी दिन से बैठने उठने में दर्द होता था, करीब 2 साल से, और अब ज़्यादा चलने पर राइट साइड घुटने में भी दर्द होता है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे हो गया सुबह सुबह रीढ़ में जकड़न बहुत है, परेशान हूँ। डॉक्टर सर प्लीज़ कोई इलाज बताएं, मैं थेरेपी भी ले रही हूँ फिर भी कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा। 83 kg वेट है, 46 ईयर इनकी एज है, और 5.4 इनकी हाइट है सर।
0: बिल्कुल, तो इसमें दो तीन बिंदु पे मैं बात करना चाहूँगा विनोद जी, इस सवाल को लेके,
1: जी
0: कि एक तो पहले, सबसे पहले पता करना कि इन्हें किस प्रकार का रोग है, कोई गठिया भी है तो वो किस प्रकार की है, क्या सिर्फ जोड़ घिसने वाली जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं वो प्रॉब्लम है या अन्य किसी प्रकार की गठिया है। दूसरा, अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है तो इन्हें जैसे मैंने कहा कम समय के लिए, कुछ समय के लिए दवा, उसके अलावा एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और जीवन शैली में बदलाव के एक ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। मल्टीपल जगह पर प्रॉब्लम होती है तो प्रथम दृष्टया ऑपरेशन तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। प्लस इसके साथ में जैसे जो हमने इनकी एज, हाइट और वेट की बात करी, तो वजन कम करने से भी इसमें मदद मिलेगा, लेकिन ये एक साइकिल है। हम कहना बहुत आसान है कि वजन कम
1: नहीं
0: करना
1: होता
0: पड़ेगा।
1: सर।
0: दूसरी चीज़, ऐसा व्यक्ति जिसको कि अभी दर्द हो रहा है मल्टीपल जगह पर, आप उसको कहेंगे कि
1: वो
0: एक्सरसाइज करके
1: डाइटिंग पे
0: वजन कम
1: जाता है
0: करिए,
1: डॉक्टर साहब, जनरली डाइट कम करते हैं वो अपनी,
0: और
1: फिर
0: वो डाइट कम करने से भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कई बार उस डाइट को कम करने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट और फैट तो कम होते ही हैं लेकिन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की भी कमी हो
1: कमी आ
0: जाती है
1: जाती है।
0: जब हमें उस डाइट के बारे में पूरे तरह ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि इसमें मल्टीपल तरीके से, हर दिशा से इसको प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मे भी अगर दवाइयों की आवश्यकता हो तो
1: अगेन
0: कसरत,
1: कुछ गायनिक
0: फिजियोथेरेपी,
1: रीजन भी हो सकते हैं, 46 ईयर एज,
0: बिल्कुल इसमें हो सकते हैं, लेकिन वही
1: मेनोपॉज
0: है।
1: का, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं इसमें।
0: लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं ये दर्द को बढ़ा सकते हैं, यह प्रॉब्लम
1: अच्छा,
0: होने का कारण
1: नहीं
0: यूजुअली
1: है
0: ज़्यादातर
1: ट्रिगर,
0: नहीं
1: नहीं
0: होता।
1: है ये, लेकिन
0: बिल्कुल,
1: ये है कि अगर हो गया
0: तो
1: है
0: उसको बढ़ा सकते
1: तो
0: हैं।
1: बढ़ा सकता है, ये
0: बिल्कुल,
1: नई चीज आ गई उसके अंदर एक तरह से। श्रोताओं, ये लाइव प्रोग्राम है, और डॉक्टर मोहित से अगर आपको सवाल पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462697568, 9462697568। डॉक्टर मोहित, सवाल ही बहुत ज़्यादा श्रोताओं के आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इन्हीं को ले लें। अनिल मेहरा हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी एज 70 साल है और वज़न है इनका 69।

0: केजी 69 किलो है। मेरा एक पैर के घुटने में कभी कभी कट कट की आवाज आती है, 1 मिनट आती है के लिए रुक जाता हूं तो नॉर्मल हो जाता हूं, 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं तो नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, और सीढ़ियां चढ़ते समय थकान हो जाती है, कारण और इलाज बताएं इसका। कारण बताओ पहले तो, फिर बताओ इलाज। डॉक्टर साहब अनिल मेहरा जी हैं।
1: अनिल जी, जो आपने पहले तो अनिल जी जैसा कि बताया कि एज है, और जो मैं सुन पा रहा हूँ कि उन्हें प्रॉब्लम है, लेकिन 70 साल की एज पे जो जितनी उन्होंने प्रॉब्लम बताई है,
0: एक
1: देख के
0: साल
1: मैं
0: कम है
1: कहना
0: सर,
1: चाहूँगा
0: 69 है। ठीक है।
1: तो काफ़ी फिट हैं अनिल जी। ज़्यादातर किसी जोड़ में सिर्फ कटकट की आवाज़ आना किसी बीमारी का लक्षण नहीं होता है, जब तक कि उसके साथ में कोई दर्द, सूजन, चलने में परेशानी, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये जो कटकट की आवाज़ आ रही है, इसके साथ में क्या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं और जोड़ में सही में तकलीफ़ है, ये एक बार कोई भी डॉक्टर इनको देख के बता सकते हैं। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि इनको चलने में या सीढ़ी चढ़ने में थकान हो जाती है, तो वो भी ये देखना पड़ता है कि वो थकान क्या
0: एज रिलेटेड
1: मांसपेशियाँ
0: भी हो
1: कमज़ोर
0: सकती
1: होने के कारण है,
0: है।
1: या फिर उनको कार्डियक कैपेसिटी, हृदय की कैपेसिटी कम हो गई है जिसकी वजह से है।
0: ये भी
1: तो
0: है,
1: ये कारण पहले पता लगा के उसके
0: और
1: हिसाब से
0: इनको
1: इसका
0: सिर्फ ये करें कि
1: सॉल्यूशन
0: सीढ़ियां
1: निकाला,
0: चढ़ने पे ही होती है दिक्कत, शायद नॉर्मल चल पाते हैं अच्छे से।
1: क्योंकि हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है
0: जी
1: किसी भी सीढ़ी चढ़ने उतरने में, या
0: हाँ,
1: ढलान या उतार पे चढ़ने में।
0: एक सवाल और आया है, ये कह रहे हैं कि स्टेरॉयड के लाभ और हानियां बताइए आप हमें। दीपक गर्ग हैं।
1: दीपक जी, जैसे हमने पहले भी बात की कि स्टीरॉयड का अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग स्पेशलिटीज़ में कुछ रोल रहता है। गठिया में रोग की, मैं रूमेटोलॉजी की बात करूं, तो कई सारी गठिया रोग के अंदर
0: आई सपोज
1: स्टीरॉयड,
0: ये मेडिकल डॉक्टर हैं जो पूछ रहे हैं सवाल,
1: अच्छा,
0: तो आप थोड़ा ध्यान से जवाब देना।
1: तो कई सारे गठिया रोग के अंदर, कई सारे
0: जी
1: गठिया रोग के अंदर ये शुरू शुरू में, जैसे मैंने कहा कि जोड़ों को बचाने के लिए स्टीरॉयड का रोल होता है, दूसरी दवाओं का असर आने में समय लगेगा। अगर हम तब तक गठिया की जो आग है उसको नहीं बुझाएंगे, कम नहीं करेंगे, तो जोड़ परमानेंट रूप से तब तक खराब होने की संभावना रहती है।
0: अच्छा
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: ऐसे में बाद में भी अगर किसी ने गठिया की दवाई किसी को चल रही है और उसने दवा बीच में छोड़ दी है, या गठिया स्वतः ही बढ़ गई है, तो उस समय पे भी जब हम दूसरी दवा बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे और उसका असर आएगा, तब तक हमें स्टीरॉयड से उसको, प्रॉब्लम को कंट्रोल करना पड़ेगा।
0: अच्छा कई हम सिर्फ स्टेरॉइड्स को एक कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, कई बार स्टेरॉइड्स और चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है। कई दवा कई कोविड में काफ़ी इसका चर्चा थी, तो अदर कंडीशंस में क्या उसका भी कोई गठिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट आ सकता है?
1: इसमें कई
0: ओवरडोज ऑफ
1: सारे,
0: स्टेरॉइड्स इन एनी सीन,
1: बिल्कुल
0: स्पोर्ट्स भी आ गए इसमें।
1: कई कुछ लिंक्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि स्टीरॉयड ओवरडोज की बात ना भी करें हम, अगर सामान्य डोज में भी जहाँ रिक्वायरमेंट है,
0: जी।
1: किसी को श्वसन तंत्र की
0: आजकल
1: बहुत
0: बॉडी बिल्डिंग
1: प्रॉब्लम,
0: के लिए भी डॉक्टर साहब कई तरह के इस तरह के ये कई लोग
1: वो तो
0: यूज
1: एक्चुअली मिसयूज़ है,
0: मसल,
1: वो तो दुरुपयोग है।
0: डॉक्टर
1: बिल्कुल
0: साहब उस पर राय तो आपकी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: वह तो गलत उपयोग है। और हमारे पास में इस तरह के हर महीने में दो से
0: अच्छा
1: चार लोग आते हैं जो कि स्टीरॉयड लेने के कारण उनकी कोई शरीर की हड्डी गल गई है,
0: अच्छा
1: और यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको एवेस्क्युलर नेक्रोसिस बोला जाता है, जो कॉमनली कूल्हे की हड्डी को प्रभावित करता है, और ये कई बार स्टीरॉयड की बहुत कम डोज के अंदर भी हो जाता है, ये डोज डिपेंडेंट नहीं होता है।
0: ये मसल्स मेकिंग वाले जो
1: बिल्कुल
0: बनाते हैं बॉडी बिल्डर
1: बिल्कुल
0: जो बनते हैं, इनमें
1: बिल्कुल,
0: से कुछ एक लोग, सभी
1: इसका
0: नहीं।
1: इसका चलन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और बिना सही एडवाइस के कई सारे उनको ट्रेनिंग देने वाले लोग भी इसकी एडवाइस दे रहे हैं, जो कि बहुत ही एक गलत
0: कई बार पता
1: व्याप
0: भी नहीं होता
1: प्रॉब्लम
0: आपको जो
1: हो रही
0: दिया
1: है।
0: जा रहा है उसमें स्टीरॉइड्स हैं।
1: बिल्कुल नहीं होता। तो जैसे आज हम बात करते हैं इतना कि हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो हम उसका लेबल पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, और हम इस तरह की चीज़ जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए दी जा रही है, उसका लेबल या तो बिना पढ़े या बिना लेबल की चीज़ हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो वो तो जो हम खाना दूसरा खा रहे हैं उससे भी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है।
0: लोग सब बॉडी तो बन जाती है उससे, दिखते तो अच्छा है।
1: बॉडी बिल्कुल बनेगी, क्योंकि स्टीरॉयड एक बार आपकी हर चीज़ को, जो सारे टिश्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके बना देगा,
0: अच्छा
1: लेकिन बॉडी क्या इसके लिए हम तैयार है कि बॉडी बनने के बदले में हम कोई ऐसी हड्डी हमारी शरीर की गल जाए जिससे कि हम चलने लायक

0: कूल्हे की जो हड्डी है, जो ज्वाइंट्स हैं, उनमें दिक्कत आती है।
1: बिल्कुल। और ये
0: सिर्फ वहीं आती है डॉक्टर?
1: कॉमनली वहां पर आती है, आग अन्य जोड़ों में भी आ सकती है, लेकिन सबसे कॉमन वो होता है जो कूल्हे की हड्डी का सिर होता है, जो हमारी जांग की हड्डी जिसको हम फीमर बोलते हैं, उसके हेड पे वो गल जाता है।
0: एक कोविड के दौरान 2-3 केस मेरी नॉलेज में है, उन्होंने कह रहे हैं कि साहब हम पहले ठीक थे, हमने दवाइयाँ ली, हमारे सीवियर कोविड था, और अब ये प्रॉब्लम हो गई है जो आप बता रहे हैं कूल्हे की हड्डी वाली, इसका कोई कनेक्शन?
1: बिल्कुल। कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों को स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ी, और उसी से, मैं कहता हूँ और किसी भी दवा से नहीं, उसी से मैक्सिमम जाने भी बची
0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बात भी सच है।
1: और उस समय पर कई लोगों को जिनको सीवियर बीमारी हुई, उनको काफ़ी लंबे समय या ज़्यादा डोज में स्टीरॉयड भी देना पड़ा। तो ऐसे में जब इतने लोगों को दिया तो उनमें से कुछ लोगों को ये दुष्प्रभाव हुआ, लेकिन फिर भी वो परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में जहाँ लंबे समय पर और ज़्यादा डोज में दिया जाता है, और वो लोग ले रहे हैं जिनको वैसे कोई भी बीमारी नहीं है, तो वहाँ पर ये दुष्प्रभाव बहुत अधिक परसेंटेज लोगों के अंदर होता है।
0: डॉक्टर साहब एक सवाल और है, ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 50 प्लस है, सिलाई का काम करता हूँ, जब कटिंग वगैरह करते हैं तो अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली टेढ़ी हो जाती है, एकदम खड़ी हो जाती है सीधी, उसका क्या कारण है जी आप बताएं? यह है दिलीप पाहुजा हैं।
1: यह पूर्णतः तो इसको कोई डॉक्टर देख के बता पाएंगे, लेकिन ये कई बार एक स्पाज़म होता है। अच्छा। जो कि कैल्शियम की कमी से या अन्य कई मिनरल्स की कमी से भी आ सकता है। इसमें सबसे कॉमन जो होता है कैल्शियम की कमी से, लेकिन इसमें आप एक बार किसी भी डॉक्टर से, फिजिशियन से, रूमेटोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो इसको देख के, पहचान के और इसको ट्रीट कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गंभीर समस्या आनी चाहिए,
0: ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक सवाल है सेक्टर 7 से हैं, हाइट है इनकी 5.4 और वेट 43 केजी है। मैं 21 ईयर की हूँ, लेडी हैं। कुछ महीनों से लेफ्ट कलाई में दर्द होता है, और स्पेशली खाना या कुछ भी खाने के बाद होता है, और इतने की टाइपिंग करना या लिखना भी मुश्किल हो जाता है इन्हें। 10-15 मिनट रहता है ये दर्द, और सब टेस्ट लिए हैं, सब नॉर्मल हैं। पहले विटामिन डी 6 था, अब 36 हो गया है विटामिन डी, और डॉक्टर कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं, बट टेस्ट्स में मेरा कैल्शियम भी 10.2 है, बट दर्द आज भी है, और सेम चीज़ पैरों में भी होती है, पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, हफ्ते में 3-4 दिन तो पैरों में दर्द रहता है। क्या मुझे न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? उम्र 21 साल ही है डॉक्टर साहब, छोटी है बच्ची, और वजन वगैरह भी प्रॉपर है, हेट भी आया, सब कुछ ठीक है। सेक्टर 7 से हैं, और नाम इन्होंने नहीं बताया, भूमि है शायद, भूमि चांगे।
1: बिल्कुल। तो विनोद जी, जैसे भूमि जी ने कहा कि इनको कलाई में दर्द है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, गठिया से परे भी, जैसे कई बार सिर्फ लिगामेंट या टेंडन में खिंचाव, कई बार अंदर नस दब रही होती है जो कि आम जांचों के अंदर पता नहीं चलता है।
0: अच्छा।
1: दूसरा, आपने जो कैल्शियम की जांच की बात करी, कैल्शियम की जांच से, ब्लड में कैल्शियम की जांच से बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, प्लस उस जांच को एक स्पेसिफिक तरीके से ब्लड का सैंपल लेना भी ज़रूरी होता है, जो काफ़ी लोगों को इसका बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो यह पता लगाना पड़ेगा, एक तो उसका कारण क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्टर जो देखे, एक बार मैं इनको सलाह दूंगा कि एक बार रूमेटोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि वो जॉइंट के स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो प्रॉब्लम नर्व रिलेटेड भी है तो वो लोग इसको पता लगा पाते हैं। तो एक बार कारण को पता लगेगा, एक बार डॉक्टर देखेंगे, हो सकता है कि कुछ जांच वो भी कराएं, और इसमें कारण पता लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें
0: पैरों में भी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैरों में, और नींद नहीं आती है, इस छोटी बच्ची है तो।
1: बिल्कुल, ये कई बार क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के साथ में जगह जगह नर्व्स में इरिटेशन भी होने लगता है, और उसको एक, कई बार इन समस्या जगह जगह पर हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन एक या दो दवाइयों से हो जाता है, एक बार उसको पहचान लिया जाए तो। दूसरा, इसमें यहीं पे मैं ये बिंदु जोड़ना चाहूँगा कि लोग कई बार जो कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए कैल्शियम खाते रहते हैं। इन्होंने तो अपना विटामिन डी का लेवल बताया, लेकिन अगर
0: कैल्शियम भी अच्छा बता रही है,
1: शरीर में विटामिन डी की अगर कमी है तो हम कैल्शियम कितना भी खाएंगे वो पेट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर
0: नहीं
1: पहुंचेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम का ब्लड में लेवल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इंडिकेटिव नहीं होता,
0: किस में कहाँ देखें फिर, किस चीज़,
1: ये बोन

0: है कैन नॉट टॉलरेट फिजिकल एक्टिविटीज। बड़ा लंबा मैसेज है डॉक्टर साहब, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है और मुझे ये बताएं कि इसके लिए मैं क्या करूं, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद, पेन मैनेजमेंट, एवरीथिंग ट्राइड। 24 साल उम्र है श्रेया की और पूछ रही है, काफी लंबा सवाल है।
1: श्रेया जी, आपने ये सवाल पूछा, ये समस्या मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को ये समस्या है, काफ़ी कॉमन समस्या है। इसमें समझना आपको ये पड़ेगा कि इसमें दवाइयाँ कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ महीनों के लिए या साल 2 साल के लिए लेनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, जीवन शैली में जो परिवर्तन है वो हमें करना पड़ेगा, जो लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा। और बहुत कम लोगों को अगर वो ये दवाई, जीवन शैली परिवर्तन, कसरत, फिजियोथेरेपी रेगुलर करते हैं तो उसके बाद में बहुत कम लोगों को सर्जरी वगैरह पे जाना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को सर्जरी पे जाना नहीं पड़ता है इस तरह के केसेस में, जैसा श्रेया जी ने बताया।
0: आर्मी
1: तो
0: में
1: ये
0: जाना है
1: करेंगे,
0: डॉक्टर साहब।
1: सुधार आएगा। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई इनको ये कहेगा कि ये प्रॉब्लम की वजह से आप आर्मी में नहीं जा सकते। बिल्कुल आप इसमें एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, दवा एक गाइडेंस के अंदर प्रॉपर लें तो रिकवरी होगी। और हल्की सी डिस्क निकलना, ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आप जैसे ही इस दर्द से और इस प्रॉब्लम से उभर के आते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल भी रिज्यूम कर सकते हैं। और हो सकता है कि आगे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से ये समस्या आने के चांसेस और कम हो जाए, तो ये
0: परमानेंट
1: आपके लिए
0: ही
1: और
0: खत्म हो जाए।
1: बेनिफिशियल हो जाए।
0: और आपके सबसे बड़ी बात यह कि उम्र कम है
1: बिल्कुल
0: तो आपके फेवर में जाता है, अभी आप ग्रोइंग हैं
1: बिल्कुल
0: तो आपको इससे फायदा मिलेगा। एक ये जो पहले सवाल आया था जिसकी कलाई में दर्द था, ये कह रहे कि सर बचपन में पैरों में तो बचपन से ही दर्द है मेरे, लेकिन ये हाथों में अब शुरू हुआ है, तो कुछ कनेक्शन है क्या दोनों का?
1: ये भी विनोद जी जैसे डॉक्टर देख के बताएंगे, लेकिन
0: हाँ
1: सेम समस्या भी कई बार सब जगह पर एक साथ आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि एक बार डॉक्टरी परामर्श लें और वो देख के डेफिनेटली इनको बता पाएंगे कि ये समस्या क्या है, उसका समाधान कर पाएंगे।
0: अच्छा, एक शहीद भगत सिंह नगर से सवाल है सोनिया, ये कह रही हैं कि मेरे दादाजी 77 साल की एज है इनकी, पूरे दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, काम भी करते हैं, बट रात को राइट लेग में खिंचाव और दर्द होता है, इसके लिए कोई इलाज बताएं? सोनिया जी पूछ रही हैं आपसे।
1: इसमें सोनिया जी कई सारे इसके कारण हो सकते हैं। नस दबना, नस में चिड़चिड़ापन या इरिटेशन होना, इसके अलावा मांसपेशी का उतना मजबूत ना होना, ये इसके हो सकते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम काम बहुत कर रहे हैं तो उससे हमारी एक्सरसाइज तो हो ही जा रही है, तो फिर हमें और एक्सरसाइज की क्या आवश्यकता है। और एक्सरसाइज भी जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ वॉकिंग करके ही मानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज हो गई।
0: सर 77 साल उम्र है,
1: बिल्कुल। तो इसमें
0: अब तो
1: विनोद जी,
0: वॉकिंग बहुत है, अब ज्यादा इसे क्या करेंगे?
1: इसमें नहीं विनोद जी,
0: नहीं
1: जब तक हम इस धरती पर
0: स्ट्रेचिंग
1: हैं तब तक
0: नहीं,
1: हमें,
0: जैसे थोड़ा कैपेसिटी विड्रॉल फॉर्म में तो होगी ना, तो बैठ करके कुछ स्ट्रेचिंग करें।
1: नहीं मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि किस उम्र के अनुसार हम क्या एक्सरसाइज करें। लेकिन एक्सरसाइज हमेशा करते रहना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो काम बहुत कर रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम कसरत करने करके और उसके साथ वो काम करेंगे तो हम उस काम को भी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और थकान भी कम होगी, क्योंकि मांसपेशियां एक्सरसाइज में, कसरत में मजबूत होती है, काम में मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है वो मजबूत उतनी नहीं होती हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और आया है, ये मोहम्मद सलीम शाह मुस्तफा सलुम्बर से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट की वजह से हाथ में कोहनी से ऊपर RAD रेड दिल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थेरेपी कराई, मेरी मुट्ठी पूरी तरह बंद नहीं होती है, कुछ कोहनी की दिक्कत होगी तो उसके पूरी बंद नहीं होती, कुछ एडवाइज करें इनको।
1: इसमें विनोद जी कई बार ये समस्या हो जाती है कि कोई नर्व में इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, उस कारण से आगे नर्व मांसपेशी तक सिग्नल नहीं लेके जा रही है। कई बार हड्डी या मांसपेशी में चोट के कारण ही होता है। तो एक बार मैं इनको सलाह दूंगा कि डॉक्टरी परामर्श लें, कारण क्या है ये पता चलेगा तो और बेहतर इस पर जानकारी दी जा सकेगी।
0: एक सवाल है, ये संजीव कुमार हैं, ये एज 36 ईयर ही है इनकी, उदयपुर ट्रांसफ़र 3 महीने ही हुए हैं इनको, घुटनों में दर्द होता है उदयपुर आने के बाद, अब ये उदयपुर पे खरा खरा आरोप है डॉक्टर साहब यहाँ आने के बाद दर्द शुरू हुआ है इनको, लेकिन आए कहाँ से ये नहीं बताया इन्होंने, क्या पानी चेंज करने से? ये रोहित बड़ा अच्छा सवाल है कि साहब मेरा पानी बदला इसलिए मैं मेरे तो ये चेंज आ गया, मैं घुटनों में दर्द शुरू हो गया या पैरों में, ये कितना बड़ा मिथ है या सच है? क्लाइमेटिक कंडीशंस।
1: बिल्कुल विनोद जी, इसमें फिर वापस वही बात आ जाती है जो आपने पर्यावरण

0: की बात करी
1: जी
0: तो इसके अंदर 3 महीने में यहाँ सिर्फ पानी या हवा चेंज होने से घुटनों में प्रॉब्लम आ जाए इसकी चांसेस काफ़ी कम है। कुछ चीज़ें जैसे कि अगर कई रोगी ऐसे होते हैं जिन्होंने अब घर शिफ्ट किया है और ऐसे एरिया में जहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा है या पहाड़ी एरिया है उसमें रहते हैं, एक समस्या होती है जो हमारे उधर उतनी नहीं है, फ्लोरोसिस की समस्या। पानी में फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उसमें जोड़ों की समस्या होती है, लेकिन वो एक तो उदयपुर में उसकी प्रॉब्लम उतनी नहीं है, प्लस उसमें समय लगता है, वो 1-2-3 महीने में फ्लोराइड लेवल इतना बिल्ड नहीं हो
1: इधर
0: जाता कि जोड़ों में
1: सिलिकोसिस तो है
0: प्रॉब्लम होता है। सिलिकोसिस जॉइंट्स में समस्या उतनी नहीं करता है, वो
1: वो
0: अन्य
1: फेफड़ों
0: लंग्स
1: में
0: वगैरह की प्रॉब्लम
1: फेफड़ों
0: करता है, तो इससे संबंध होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं।
1: राजकुमार जी कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम सुनते हैं और 50% टी फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी फायदा मिलता है। चलिए ये अच्छी बात है। एक दो सवाल और हैं ले लूं मैं, क्योंकि श्रोताओं का इशू है, हालांकि टाइम हो गया। सर एक सवाल है कि सर अभी चल भी नहीं पाती हूँ, थोड़े चलने पर लेफ्ट लेग में रेडिएटिंग पेन शुरू हो जाता है, क्या मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगेन?
0: बिल्कुल, ये जो समस्या बता रहे हैं ज़्यादा चांसेस है कि
1: श्रेया है।
0: कमर के अंदर नस दबने के कारण ये प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल उन्हें एक फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट के से मिलना चाहिए और वो ये देखेंगे कि इसका कारण क्या है। कुछ गठिया रोग में भी इस तरह की नस पे दबाव के कारण पाँव में पेन आ सकता है, लेकिन आप किसी भी फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो पता लगा पाएंगे कि क्या ये गठिया रोग से संबंधित
1: डॉक्टर
0: है।
1: मोहित, आप इतना अच्छा बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री सवाल आ रहे हैं और लास्ट सवाल मैं लूंगा, इसके बाद सम अप करेंगे प्रोग्राम को। ये दादाजी के लिए जो 77 साल की उम्र के हैं उनके लिए सवाल पूछा था, और आपने कहा कि एक्सरसाइज करें, तो क्या आप सजेस्ट करें एक्सरसाइज तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए?
0: बिल्कुल, फिजियोथेरेपिस्ट के पास मिले और इसमें ध्यान ये रखें कि एक्सरसाइज इस एज पे धीरे धीरे बढ़ाई जाए और वही करी जाए जिनमें जोड़ों पे बहुत अत्यधिक लोड या दबाव ना आए, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी मिलेगा
1: चलिए
0: इनको।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरह से श्रोताओं ने आज पार्टिसिपेट किया उससे एक चीज़ तो लगती है कि घुटनों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसी पे आपका ध्यान चाहूँगा और इसी के साथ समअप करना चाहूँगा कि ऑर्थो वाले को बुलाओ, आयुर्वेद वाले को बुलाओ, और इवन आज आपको बुला लिया रूमेटोलॉजिस्ट को, अगर घुटनों का नाम ले दिया तो सवाल दर सवाल आते हैं, और ये इंडिकेटिव है, बहुत कम श्रोता हैं जो हम तक सवाल पहुंचाते हैं। इसकी वजह क्या है, घुटनों में इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों आ रही है?
0: घुटनों में समस्या विनोद जी कई कारण से आती है, एक तो ये कि घुटनों पर पूरे शरीर का भार आता है, जैसे ही वेट बढ़ती है बढ़ता है या हाइट भी बढ़ती है तो घुटनों के ऊपर लोड बढ़ता है। इसके अलावा जब हम काम करते हैं तो काफ़ी हम लोग ये नहीं समझते हैं कि चलने में घुटनों को नुकसान नहीं होता है या कम होता है, लेकिन एक जगह पर खड़े रहने पर, उतार चढ़ाव वाले ढलान पर और उतार पर चलने से, सीढ़ियाँ अत्यधिक चढ़ने उतरने से, एक एज के बाद में अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे हैं और मांसपेशियों में मजबूती उतनी नहीं है तो सारा लोड घुटने के जोड़ पे आता है, वो वहाँ पर लोड आने के कारण जो गद्दी होती है कार्टिलेज है वो घिसती है और हड्डी एक दूसरे से पास आ जाती है, जांघ की और पाँव की हड्डी। इसलिए समस्या बहुत कॉमन होती है और हम वो चीज़ें जिनसे बढ़ रही है अनजाने में वो करते चले जाते हैं, तो वो समस्या एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहाँ पर वो क्रॉनिक या फिर लंबी चलने वाली समस्या बन जाती है, दीर्घकालीन समस्या बन जाती है।
1: चलिए, हालांकि और भी बहुत से सवाल हैं कि उठने बैठने में, पोछा लगाने में, इंडियन कमोड या वेस्टर्न कमोड, डॉक्टर साहब इन पे फिर कभी बात करेंगे
0: बिल्कुल
1: आपसे, क्योंकि पोस्चरल इशू बहुत सारे हैं। अब प्रोग्राम को समअप करते हैं, कोई जाते जाते सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे जैसे घुटनों की जोड़ों की समस्या हो, अन्य जोड़ों की समस्या हो, एक बार डॉक्टरी परामर्श समय से लें ताकि ये सिर्फ घिसने की प्रॉब्लम है या अन्य गठिया रोग है पता लगाया जा सके। सही समय पर अगर निदान होगा, सही समय पर उपचार होगा तो प्रॉब्लम पूरी तरह कंट्रोल बिना डैमेज के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोई भी लक्षण हो, चाहे वो गठिया रोग के हो या अन्य कोई भी शारीरिक समस्या को, इग्नोर ना करें।
1: डॉक्टर मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनोद जी।
2: उदयपुर दर्द को नज़रअंदाज ना करें, समय पर जांच करवाएं और लाइफस्टाइल सही रखें तो खुद को कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया हमेशा याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ये था हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गोयल जी के साथ, और आपसे बातचीत कर रहे थे विनोद शर्मा, प्रस्तुति रेडियो लेक्सिटी की।
3: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH
4: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की

0: सेवाएं एट भट्ट जी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
1: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
0: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भट्ट जी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GBH जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल भेड़वास उदयपुर।
1: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
0: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भट्ट जी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा गुड्डू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना,
1: रिलैक्स।
0: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट
4: एक्सप्रेस के यात्री तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
1: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: लिसनर्स चॉइस। अब ये प्रोग्राम सुनिए हर शुक्रवार को सुबह ठीक 11 बजे। इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं हमें व्हाट्सएप करके। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा गाना आपको सुनना है। तो शुक्रवार की सुबह ठीक 11 बजे सुनिए प्रोग्राम लिसनर्स चॉइस ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर।
1: यह है आपका मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 FM बैंड पर हिट परेड। ये हवा, ये पानी, मिट्टी की खुशबू, ये धरती नहीं किसी की सांसों का जादू। पेड़ जो झुक जाए तो समझो दुआ है। हरियाली ना हो तो फिर मैं जिंदगी में क्या वफा है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, तापमान असंतुलित हो रहा है, सवाल ये नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं, सवाल ये भी तो है कि हम क्या बचा सकते हैं। ये धरती हमारी माँ है, हमारी पहचान है, इससे जुड़े हमारे ख्वाब हैं।

रेडियो लेक सिटी पर आज हिट परेड में एनवायरमेंटल डे स्पेशल हम सुन रहे हैं ऐसे गाने जो प्रकृति के नाम हैं, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ संगीत का नहीं बल्कि धरती को बचाने की एक संगीतमय कोशिश का भी है।

आप सुन रहे हैं एनवायरमेंटल डे स्पेशल हिट परेड। आज का प्रोग्राम सिर्फ गाने नहीं बल्कि धरती, हवा, पानी, हरियाली को समर्पित एक एहसास है।

0: चलिए वादा करते हैं कि धरती मुस्कराएगी और हम भी जिएंगे साथ साथ, जब तक पेड़ हैं, जब तक संगीत है, तब तक प्रकृति है और तब तक जिंदगी है। हिट परेड प्रोग्राम इसी गाने के साथ पूरा होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो लिक सिटी।
1: दादा कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
9: RBI कहता है
10: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आकाशवाणी @

0: 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: यह रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर लिसनर्स चॉइस साप्ताहिक वो प्रोग्राम जिसमें हम सुनते हैं हमारे श्रोताओं की पसंद के गाने। इस अगले एक पूरे घंटे हमारे श्रोताओं की पसंद से ये सुरीला सफ़र आगे चलता रहेगा। पहला गाना शुरू कर रहे हैं बिंदिया चमकेगी बोल है मीनाक्षी शर्मा, चिंतामणि की घाटी हमारी श्रोता जिनकी पसंद पर ये गाना दो रास्ते फिल्म से।

रास्फिक के इस गीत को आपने सुना लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम की पहली पेशकश के रूप में, और इसी गाने के साथ हम नाम शामिल कर रहे हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोताओं के नाम, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा के भी। अगला गाना आपको सुनवाएंगे और नाम पढ़ेंगे इस गाने के बाद।

चौहान, उषा चौहान, पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत, नक्ष रावत, और वारियों की घाटी से ही हैं हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत, भोपालवाड़ी से रवि भाई, दिलीप खत्री, सत्तू भाई और गुनगुन हैं वारियों की घाटी से। आप ही के साथ और नाम शामिल कर रहे हैं हम सत्यनारायण वारी, शांति वारी के भी, सीमा वारी, नाहर सिंह वारी, जगदीश चौक के श्रोता हैं हमारे साथ।

सन्यासी फिल्म के इस गाने में नाम शामिल हो रहे हैं ग्राम पंजोलिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंचोलिया के भी। अगला गाना आपको सुनवाएंगे जिस्म फिल्म का ये गाना है। पसंद करने वाले श्रोता हैं सरोज उदयपुर से।

सुरों में छुपी होती है मुस्कान की रोशनी, इन गीतों से महकती है दिल की हर बस्ती। लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम में इसी गाने के साथ कुछ और नाम हम शामिल कर देते हैं। ये है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसीस, और ये पंजाब के हमारे श्रोता हैं। और इसी के साथ कुछ और नाम हम शामिल करेंगे। ये हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और मस्कीन परिवार दिल्ली से हमारे श्रोता। और नाम शामिल हो रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविधा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की भी। और अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म से, ये गाना हमने लिया है और इसकी फरमाइश जिन श्रोताओं ने भेजी है उनके नाम इस गाने के दौरान।

बीकानेर से नेहा लिख रही हैं कि सदाबहार गीतों को सुनने से दिन भर की थकान गायब हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आपका नाम भी हमने इस गाने में शामिल कर लिया है। जिस गाने की फरमाइश हमें भेजी थी चेतक सर्कल से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर ने, प्रेमपुरी गोस्वामी हैं सहेदियों की बाड़ी से, अजय जीनगर, प्रिंस जीनगर, कुलदीप सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के श्रोता हैं, और इसी के साथ नाम शामिल हो रहे हैं मध्य प्रदेश के श्रोताओं के भी, बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, बेबी आयशा खत्री, गुंगट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से, मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री के भी, और इसी के साथ कुछ और नाम भी हम शामिल करेंगे। लेकिन गाना सुनवा रहे हैं आपको राजा और रंग, फिल्म का नाम है, फरमाइश करता हूँ कि नाम गाने के दौरान

संगीत दिलों को जोड़ता भी है। इस गाने की फरमाइश हमें मिली थी विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास के साथ में, के नामों के साथ में। इनके साथ हैं विनीत व्यास, पूनम व्यास, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड जयपुर के श्रोताओं की पसंद है ये। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी के नाम भी हम इस गाने में शामिल कर रहे हैं। और अगले गाने का रुख करते हैं।

जयपुर से महेश जी का संदेश है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, किसी रोमांटिक गाने में हमारा नाम शामिल कीजिए। तो खिलाड़ी फिल्म के इस गाने में आपका नाम शामिल हुआ है, जिसकी फरमाइश हमें भेजी विजय सिंह, दुल्हे सिंह, सागर सिंह, कला ममता, नेहा राठौर ने। मेहता जी की खिड़की मालदा स्ट्रीट उदयपुर के श्रोता और इसी गाने के साथ नाम शामिल कर रहे हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के श्रोताओं के। आप हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। प्यासा सावन है फिल्म का नाम और श्रोताओं के नाम गाने के दौरान।

हिरण मगरी से सीमा लिखती हैं कि पुराने गीतों में शब्द भी होते थे और आत्मा भी, तो इसी गाने के साथ आपका नाम शामिल हुआ और ये श्रोता जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की उनके नाम है हाफिज़ा मिठाई नफीसा, फकरू यूनुस असगर, सकीना पटवा, जकिया गोरिया, बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर के श्रोता। साथ ही नाम शामिल हो रहे हैं इसी गाने के साथ गुलाब रेगर, शांति रेगर के भी। चलिए अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है सावन को आने दो। श्रोताओं के नाम गाने के दौरान।

सावन को आने दो फिल्म का ये गाना अंजलि ने डूंगरपुर से जो है हमारी श्रोता पूरे परिवार के लिए पसंद किया है, बहुत शुक्रिया। और इसी गाने के साथ नाम शामिल हो रहे हैं भरत रेगर, डिंपल रेगर, प्रिंस गोकू रेगर कॉलोनी के श्रोताओं के भी। और इसी गाने की पसंद हमें भेजी देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर ने। आप छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं और किकिर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से हैं संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा।

श्रोताओं का ये सुरीला सफर है, उन्हीं की पसंद के गाने आप सुन रहे हैं अपने मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी पर। अगला गाना सौदागर फिल्म से बजने वाला है और इसके लिए हमें फरमाइश मिली है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा की। जयपुर से है राजेंद्र अरुणा वेद, मुंबई से विनोद रंजना जी राजावत, हरिगढ़ से मनोज मनीषा जैन, संभाजीनगर से संजय सपना जैन और उदयपुर से राजकुमार रेणु जैन।

श्रोता और साथ ही नाम हम शामिल करेंगे कुछ और श्रोताओं के भी, ये हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। साथ ही कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम आपको बता दें, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं, मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।

बांसवाड़ा से रमेश जी लिखते हैं कि पुराने गीतों की खुशबू मन को तरोताज़ा कर देती है। बिल्कुल सही नाम शामिल हुआ आपका भी। और चलिए अगले गाने की ओर, जिसे चंबल की कसम फिल्म से हम बजा रहे हैं। इसकी फरमाइश करता है हाकिम भाई, मोहनलाल जी, दीपक टेलर, नीलेश गहलोत और दादा मालदा श्री उदयपुर के।

कुछ गाने इतने खूबसूरत होते हैं ना कि उनसे कई सारी यादें जुड़ी होती हैं। लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम में अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। ये है एक नज़र फिल्म का गाना और फरमाइश हमें भेजी है करुणा झमक पूर्बिया, सोहन देवी पूर्बिया, पूरव पूर्बिया, लक्ष्मी लक्ष्यराज पूर्बिया, हाथीपुर उदयपुर के श्रोताओं ने। और उसके साथ नाम शामिल कर रहे हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, छत्तीसगढ़ के श्रोताओं के भी।

सदाबहार गाने जो सभी को लुभाते हैं, और इसी गाने के साथ नाम शामिल करते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू के भी ये मलोट के श्रोता हैं और अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। आखिरी खत है फिल्म का नाम और इसके लिए फरमाइश करता है हजारेश्वर कॉलोनी से अमृत सेन और लिक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, और नाम शामिल कर रहे हैं इसी गाने में।

सुरों की ये बगिया जहाँ हर गीत एक कहानी है, हर फरमाइश एक एहसास है। कुछ खूबसूरत गाने और आपको सुनवाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर गाना सुनना चाहते हैं एक बार फिल्म से मिस्टर एंड मिसेस बचपन बजाज नगर उदयपुर से, राजकुमारी और विपिन गोस्वामी चंदनवाड़ी प्रेमनगर से हैं, मनीष टेलर बाबूलाल धाबाई हैं सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर से, अशोक आनंद मीनू नैनानी प्रभात नगर हिरण मगरी सेक्टर 5 से, दुष्यंत और जिज्ञासा बजाज नगर उदयपुर के श्रोता।

सुरीले गाने के साथ नाम शामिल करते हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा के भी और नाम शामिल हो रहे हैं। उदयपुर रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, ललित जी, किरण, अजय जी, भावना, विनायक जी, हेमलता, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा और इसी गाने के साथ हम नाम शामिल करेंगे। और श्रोताओं के ये हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, क्रिस्टी पटवा, छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं। और श्रोता हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गौरिया जालंधर के श्रोता हैं। और श्रोताओं के नाम हम बता दें, ये हैं रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पंवार, पिंकी, मनस्वी, चेतन्या, कार्तिकेय, प्रभात नगर, हिरण मगरी, सेक्टर 5, उदयपुर के श्रोताओं के भी नाम शामिल कर लिए। और चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ेंगे हम, और ये गाना है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। फरमाइश करता है उदयलाल, कौशल्या, रिया, खुशी, तेजस, कुलदीप, सुनीता ऊंटवाल, धानमंडी उदयपुर के श्रोता और साथ हैं रेडियो श्रोता संघ उदयपुर के सभी साथी।

श्रोताओं के नामों की बारी। ये हैं तुलसीराम जी चौहान सूरजपोल से, गजेंद्र सिंह सारंग दियोत, भविराज सिंह सारंग दियोत हैं, मुरकिया खुर्द बोहेड़ा से भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान बोहेड़ा चौहानों की हवेली से, गोपाल चौहान ठोकर चौराहा उदयपुर से, मनोज बागड़ी एडवोकेट महेश बागड़ी आदर्श नगर पहाड़ा से, विकास सिंह जयपुर से, कुशाल बागड़ी मन बागड़ी सेक्टर 14 से, ललित सिंह चौहान कांकरवा आयर से, उमेश दाहिमा हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयर कलाल वाती से, इंद्र सिंह राजावत सज्जनगढ़ रोड से हैं, दीपेश चौहान हाथीपोल से हैं, मुकेश जी चौहान देबारी से हैं, लाला भाई निमावत प्रताप नगर से, गोपाल भाई निमावत सुखेर से, राजू भाई खींची मारड़ी से, अंची निमावत देबारी से हैं और इनके साथ हैं तनिष चौहान सूरजपोल कालिका माता चौक उदयपुर के श्रोता। और इसके साथ साथ अब ये हमें संदेश आया है अजमेर से भारती का, लिखती हैं कि यहाँ फरमाइश के साथ साथ अपनापन भी मिलता है, हर शुक्रवार को हमें इस प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है। अगले गाने की ओर बढ़ते हैं शुक्रिया कहते हुए आपको, और ये गाना है स्वीकार किया मैंने फिल्म से, फरमाइश करता है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी भारती।

कुछ गीतों के साथ कितनी सारी यादें जुड़ी होती है ना। चलिए प्रोग्राम के हम आखिरी पड़ाव की ओर हैं और श्रोताओं के नाम शामिल करना भी जरूरी है, तो सभी श्रोताओं के नाम हम मिले जुले गीतों के साथ शामिल करते हैं। ये है श्रीनाथ मार्ग खैरादीवाड़ा से सत्यनारायण कुरील, पुष्पलता कुरील, मिताली बिनाली और रोहन कुरील हैं, और श्रोता हैं जगदीश लाल, पुष्पा टेलर, श्री रामचंद्र, लीला देवी पवार, दिलीप कुमार, जमुना चौहान, प्रकाश चंद्र, विद्या कनेरिया, बड़ी सादड़ी के श्रोता हैं। फरासी जिला हिसार से हैं, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और श्रोता हैं हिमांशु सागवड़िया, ये हैं उदयपुर सेक्टर 14 के श्रोता। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हैं, और श्रोता हैं ईशा, सजदा, मोहम्मद सलीम, ये गाने के बोल बोल रहे हैं और हम मिले जुले नाम शामिल कर रहे हैं, मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, इनाया टेलर, अक्सा इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी सलूम्बर के श्रोता, विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशिष्ठा, वशिता भंवर, वशिता गौतम, वशिता और राहुल अगरबत्ती हैं धोली बावड़ी उदयपुर के श्रोता, और श्रोताओं के नाम शामिल कर देते हैं। नागा नगरी से हैं अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई, सैफन भाई, शशांक कुमावत, कार्तिक कुमावत हैं और इनके साथ किंजू कुमावत, शौर्य दादाजी सेक्टर 5 उदयपुर के उदय पार्क के श्रोता हैं, पल्लू यूवी कुमावत ये भी सेक्टर 5 से, शिवलाल जी कुमावत, छगन देवी कुमावत, राजकुमार मोहित चारभुजा मंदिर खैरादीवाड़ा के श्रोता, साथ में हैं पूरा कुमावत परिवार, हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा, मारवाड़ी स्ट्रीट रविंद्र सरनी कोलकाता पश्चिम बंगाल के श्रोताओं के नाम शामिल हुए कार्यक्रम में, और नाम है बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान नेत्रहीन है, डांगरी से बाबूराम जयपाल दिव्यांग हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा रेडियो दीवाना, आप सभी के नाम शामिल किए गए हैं और उसके साथ आपको शुक्रिया करते हैं प्रोग्राम सुनने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुमन निमावत, अंशिता रुद्विक और निमावत फैमिली मीरा नगर भुवाना उदयपुर से हैं, और सिद्धार्थ नगर ढेकरी जिला धराशिव महाराष्ट्र से सुमंत बुद्धभूषण वल्लभ, शिल्पकार विमल, आरोही लाल सिंह और पूरा मस्के परिवार, जिन्हें सारे गाने अच्छे लग रहे हैं और हम भी आपका शुक्रिया करते हैं कि आप सभी की पसंद बेहतरीन है। जिस और ये श्रोताओं के नाम और शामिल करते हैं, भारत जायसवाल, सोनी गरासिया गाँव मंडवा डूंगरपुर राजस्थान से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के हमारे श्रोता हैं। चलिए अगला गाना सुनवा रहे हैं।

संगीत की ये यात्रा तो कभी खत्म ना हो, ऐसा ही दिल करता है। चलिए श्रोताओं के नाम शामिल करना भी जरूरी है। नाम बता दें, एमबी कॉलेज कुम्हारों का भट्टा से मांगीलाल पूर्बिया, पुष्परानी पूर्बिया, मोती चौटा करजाली हाउस से माधवलाल सल्लीकर, और श्रोता हैं कुम्हारों का भट्टा से प्रजापति जॉनी भाई कोलर वाले, कमल सुहालका, धारावती सुहालका, शांतिलाल जी सुहालका, विष्णु कुमार जी सुहालका, उदयपुर के श्रोता जिनके नाम भी शामिल हुए, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, और श्रोता हैं जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, और ये हैं सेक्टर 9 से हरीश जिनगर, मंजू जिनगर, जय जिनगर, माधवी जिनगर, छुटकी और किट्टू, और सभी ये कहते हैं कि इन्हें बारिश का गाना सुनना है। बिल्कुल सुनवा रहे हैं, बस सुनते रहिए रेडियो लेक सिटी। सलमा अतारी हैं, खुजमा अतारी, सुग्रा अतारी, संजीदा तबस्सुम, अलीशा कलकत्ता वाला, और ये है खरौल कॉलोनी उदयपुर के श्रोता, और कृष्णा कुमावत, मिट्ठू जाला और पूरी परिवार इनका उदयपुर राजस्थान के श्रोता हैं, और ये हैं सुरेंद्र सोलंकी, भावना, प्रदीप, हर्ष, रानू, पार्थ और पूरा सोलंकी परिवार सेक्टर 11 उदयपुर के श्रोता हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव हैं, और मंजू सैन हैं, अशोक जी सैन मालदा स्ट्रीट के श्रोता हैं, और श्रोता हैं बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और पूरा वर्मा परिवार है छत्तीसगढ़ से, तुलसीराम, गीता, डॉक्टर मनीषा, भुवनेश, पूरा खत्री परिवार, कलड़वास, शांति ग्रुप, और दूसरे श्रोता हैं लोसिंग से बंटी भाई, नारायण, उर्मिला, हिना और सुमन, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं, और इन्हीं के साथ इनका पूरा परिवार है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा हैं। रामपुरा से सुधा रानी वैष्णव का नाम भी शामिल किया। प्रताप नगर से हैं अशोक, उदयपुर के श्रोता हमारे, रामचंद्र पवार, तुलसीराम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, के कनेरिया, कैलाश माहेश्वरी और इनके साथ इनके मित्रगण उदयपुर के श्रोता हैं, और श्रोता हैं मालियान सरगना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन भी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह, राजेंद्र जी शाह, नेपा नगर मध्य प्रदेश से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, अनीता सालवी, पीयूष सालवी, शालू सालवी, लक्षिता सालवी, सुथारवाड़ा उदयपुर के श्रोता हैं, और अगले श्रोताओं के नाम हम शामिल कर रहे हैं। ये हैं गौतम प्रकाश गांधी, मंजू गांधी, रिद्धांश गांधी, केशवनगर उदयपुर से, सुरेश जी मेघवाल विश्वविद्यालय मार्ग से हैं, श्रीनाथ कॉलेज ड्राइविंग कॉलेज है, कालका माता रोड से हैं धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार चित्तौड़ा, मनीष कुमार चित्तौड़ा, डॉक्टर इकबाल सक्का और शैलेंद्र पालीवाल, कालू जी मिस्त्री, हितेश जी मेघवाल, और कहते हैं कि इधर सब आसपास वाले इकट्ठे हो जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। हम भी आपको बहुत शुक्रिया करते हैं कि इतनी अच्छी फरमाइश आप हमारे लिए भेजते हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। और ये श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, मिसेस पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर, बेगम अफजल इफजल हार, और रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं निप्पी सहानी और मिसेस सुनीता सहानी, रोशन लाल सालवी, राजकुमारी सालवी।

ललित सालवी, जमुना सालवी, मधु सालवी, ज्योति सालवी, पूनम, सचिन, विवांश, हेतविक सालवी और पूरा सालवी परिवार मेरा कॉलेज उदयपुर से है। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, सोनम वर्मा आप हैं श्रोता हमारे। और उसके अलावा मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, राजकुमार नारायण इंगले और आशीष मोहरकर हैं। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस न्यावकर, निर्मला न्यावकर, विशाल न्यावकर, सोपान ताइडे। अगले श्रोताओं के नाम शामिल हो रहे हैं अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा के।

आपके चुने हुए गानों से बनता है ये प्रोग्राम खास। चलिए कुछ और खास श्रोताओं के नाम भी शामिल कर लें। हमारे लिए हमारे सभी श्रोता खास हैं जो प्रोग्राम सुनते हैं और उसमें शामिल भी होते हैं, शुक्रिया करते हैं और नाम शामिल करते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, अंगिता सिंह, रितु सिंह के, और साथ में अगले श्रोता हैं जॉन रिकेस्ट्रो, इनके साथ इनका पूरा परिवार। और सहारनपुर से हैं जॉन रिकेस्ट्रो, रोजी रिकेस्ट्रो, पर्ल विलीस रिकेस्ट्रो भी, ब्रिजमोहन शर्मा, शारदा शर्मा, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य ये हैं। सेक्टर 14 उदयपुर के श्रोता कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और इनका पूरा परिवार है। इसी के साथ हम नाम शामिल कर रहे हैं अद्वेश शर्मा, अशोक शर्मा, रोहित शर्मा, सनम, ब्रजेश, हीरा लाल, मुकेश, दिलमणि और श्री कृष्ण शर्मा के। अब बक्सर बिहार के श्रोता हैं हमारे। और दूसरे श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहे मलिक और इनका पूरा परिवार है। और मनोहर पवार सिकलीगर ने वॉइस मैसेज भेजा है, आपसे दरख्वास्त है आप कार्यक्रम में टेक्स्ट मैसेज किया कीजिए। शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतुरिया, काम्या खतुरिया, विकास खतुरिया, भानु खतुरिया, हिताक्ष खतुरिया, कुड़ी जोधपुर से हैं रवीना खतुरिया, स्वरा चांदवानी, भरत चांदवानी, क्यू चांदवानी, सिंध कॉलोनी डूंगरपुर से निकिता खतुरिया, कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा, क्यू, जय सालवी, संतोष खतुरिया, यज्ञ सालवी, दूतलाई उदयपुर के श्रोता हैं। और नाम शामिल हो रहे हैं, मस्किन परिवार के नाम शामिल हो चुके हैं। भीलू राणा कॉलोनी उदयपुर से सोनू और पिंकी के नाम शामिल हुए हैं। भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येन चौहान, तरुणा चौहान, एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता चौहान, नव्याश्री, नित्याश्री, सभी के नाम शामिल हुए हैं। सुशील यादव, रेणु यादव हैं सेक्टर 4 के श्रोता। राजस्थान जाखोद गांव से हैं शंभूलाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और उनका पूरा परिवार है। धान मंडी से परमानंद कुमावत, मंजू कुमावत, विकास मोनिका, लक्ष कुमावत, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य हैं। बेंगलोर से निखिलेश, दीपिका, रिधान कुमावत, बेंगलोर से ही वर्षा, सुरेंद्र और लावण्या कुमावत हैं। ये हैं हमारे श्रोता। उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और श्रोता हैं अफजल ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार, मोहब्बत, अफजल मलिक। कार्यक्रम का हम समापन करेंगे आपके साथ और आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं उदयपुर। ऐसे ही जुड़े रहिएगा रेडियो लेक सिटी के साथ। वक्त हो चला है समाचारों का, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, सुनेंगे समाचार।

0: Bin Nigam. भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आइए सुने विविध भारती मुंबई से प्रसारित यादों की महफिल।
5: देश की सुरीली धड़कन, आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज़ से।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती हैं ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाएं। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाज़ा लगाना। तो यही तो बात है, पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों सी दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी, नदियों से नहीं उनके सफर से। और आकाशकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है, फिर वही

तो भाई ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया, जहाँ चलो हम दोनों चले वहाँ, जहाँ दिन भर महुआ पर झूले, रात को चू पड़ते हैं फूल, जहाँ दिन भर महुआ पर झूल, रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहाँ सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया, जहाँ चलो हम दोनों चले वहाँ, विहग मृग का हो जहाँ निवास, जहाँ अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफ़ी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियाँ आ रही, तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफ़र में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना नदी चंचलता नीले।

नंबर अंबर चांद जब आए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं। और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए, और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं। तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक

गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों, हवा, बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक, मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। ज़रा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी। ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज़, मीठी आवाज़। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थीं और फिजाएं थीं, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, ज़रा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ ख़ास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2 x 4 बताइए, किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ़ सफाई का ख्याल भी रखें। फ़िलहाल सुने ये गाना।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है, भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, ज़रा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

0: सामने बैठ कर ये अदाएं हर दिल कहे।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण।

आओ सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: खाजे।
1: अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिन

0: रविंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
1: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
0: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
2: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
0: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारीसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
3: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
1: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है, ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
0: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्ते भीड़ पर हमला कर दिया।
1: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुल्लर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले, यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।
0: पुलिस के निर्दय लाठी चार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्रंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठी चार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
2: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
4: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठी चार्ज बंद किया और आसमान में बस 2 ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।
5: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्ष गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी

0: करदाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: A detailed assessment.
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा

0: कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी

अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।

0: दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी की

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर हिसार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर से ही अपना बुटीक है मेरा, मैं सिलाई करती हूँ।
0: यानी आप

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, ITI कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में गाना सुनेंगे, उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कम निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो सिर ढाकते जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, जैसे 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउस वाइफ
0: हूँ। अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है? कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
2: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्तर संगीत सविता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में हाँ, अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन हाँ, बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह।
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी हाँ, बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो जबलपुर का है
0: जी,

0: और आपने इतनी अच्छी हाँ। बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समाई हमारी जीवन देते हैं। मुझे
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागू साइड खान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
8: हेलो सहेली
7: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
8: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
7: जी।
8: पूर्णिमा सरगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
7: अच्छा अच्छा,
8: गाने सुनती रहती हूँ।
7: आप बताइए क्या करती हैं आप?
8: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
7: कितना छोटा है आपको बच्चा?
8: अभी 2 साल की हुई है।
7: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
8: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
7: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
8: हाँ, समझदार है।

0: ज्यादा परेशान नहीं करती,
1: यानी अच्छी बच्ची है।
0: हाँ।
1: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
0: मुझे डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
1: तो आप ना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
0: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
0: जी मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
1: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
0: हाँ।
1: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
0: बीमारी सही कर दे डांस, बिल्कुल म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
1: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
0: हाँ फिट भी रहते हैं बहुत।
1: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: अच्छा आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको हाँ। सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउस वाइफ है। क्योंकि हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है।
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल।

0: और काम करती रहती हैं और सब पूरे फैमिली पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
1: जी।
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है। मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं। और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया। बहुत अच्छी बात है ये।
1: और चहचहाट
0: वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
1: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं।
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना।
1: जी।
0: तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकवर सिंह का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ऐसी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: तो बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: 2000 साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें

0: सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का, और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

0: सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
2: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम गूगल पे फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
1: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर पार्सल ऑफिस गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
2: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठी गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को

आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

सुविधाओं भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम को आप हमारे मीडियम वेव चैनल पर भी सुन सकते हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर भी।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं निधि जैन और मेरे साथ हैं
2: मानस व्यास
1: और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां बात होती है आपके सपनों की, आपके जुनून की और आपके भविष्य की।
2: दोस्तों, आज का शो काफी खास होने वाला है, जहां हम बात करने वाले हैं यूथ और इंडस्ट्री की और कई ऐसी शख्सियतों की जो अपने फील्ड्स में काफी पॉपुलर हैं। तो चलिए हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों, आज के समय में फैशन युवाओं के जीवन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और यह फैशन केवल कपड़ों जूतों तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूसरी एसेसरीज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। आज हम उसी में से एक वॉच के बारे में बात करने वाले हैं।
1: दोस्तों, वॉच जो है वो फैशन पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। यह व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसकी सोच को बताती है। युवाओं की स्टाइल के साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाने का काम करती है और लोगों के डेली वेयर का पार्ट बन चुकी है।
0: दोस्तों, आज के जो आधुनिक दौर है इसमें काफ़ी सारी एडवांस वॉचेस आ चुकी है, लेकिन अगर हम पुराने समय में देखें तो फिर काफ़ी समय देखने का जो तरीका था वो काफ़ी अलग था और घड़ियाँ भी काफ़ी अलग थी। जैसे कि सनडायल यानी कि सूर्य घड़ी, समय मापने का सबसे प्राचीन तरीका जो कि सूर्य की रोशनी से बनने वाली छाया पर आधारित है।
1: बिल्कुल मानस। और इसके साथ में जल घड़ी, वाटर क्लॉक, जो कि एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी के फ्लो पर बेस्ड समय मापने का तरीका है और जिसका उपयोग लगभग 3500 वर्ष पहले किया जाता था। और साथ ही साथ रेत घड़ी, आवर ग्लास जिसे हम कहते हैं, दो कांच के पात्र के बीच से रेत के गिरने से जो समय का हम अनुमान लगाते थे तो वो हमारी रेत घड़ी थी।
0: इसके बाद में मॉडर्नाइजेशन चालू हुआ और मैकेनिकल क्लॉक्स आई जो कि यूरोप की ऊंची बिल्डिंगों में देखने को मिलती है। साथ में भारत में भी हमें कई सारी ऐसी जगह घड़ियां देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो राजाबाई टावर की बात हो गई, सीएसटी स्टेशन की बात हो गई और अगर हम हमारे उदयपुर की बात करें तो घंटाघर देख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फैशन में जगह बनाते हुए धीरे धीरे मार्केट में आई पॉकेट वॉच, जो कि उस दौर के अमीर लोगों की पसंद थी।
0: दोस्तों, वॉच इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी और पॉपुलर इंडस्ट्री में से एक मानी जाती है, जो कि फैशन, टेक्नोलॉजी और टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह इंडस्ट्री हर दशक में कुछ नया लाकर आती है और लगातार प्रोग्रेस भी कर रही है।
1: साथ ही साथ शुरू में घड़ियां हाथ से बनाई जाती थी, इसलिए काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से बड़े पैमाने पर घड़ियों का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो 20वीं शताब्दी में क्वार्ट्ज की घड़ियां मार्केट में आई, जो अपने साथ साथ मतलब एकदम सटीक होती थी।
0: दोस्तों, जो वॉच इंडस्ट्री है उसमें कई सारे पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, जैसे कि रिसर्च एंड डिज़ाइन, जिसमें नई घड़ियाँ डिज़ाइन की जाती है और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जाती है, और डिज़ाइन के बाद में आती है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ घड़ियों के जो पुर्जे हैं और पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों। और मतलब साथ ही साथ में जो हमारी वॉच इंडस्ट्री है तो उसके कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रिसर्च एंड डिज़ाइन, और उसके साथ साथ घड़ी बन जाने के बाद में उसकी ब्रांडिंग करना, एडवर्टाइजमेंट देना और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लगातार सेलिंग पर ध्यान देना।
0: वॉच इंडस्ट्री में दोस्तों युवाओं की भी काफ़ी बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि यह वर्ग सबसे बड़ा उपभोक्ताओं में से एक माना जाता है। यह फैशन और टेक्नोलॉजी के प्रति अपना जो रुझान है उसको काफ़ी निखारता है।
1: हाँ दोस्तों, और न केवल कंज्यूमर के रूप में बल्कि युवा इसे डिज़ाइनिंग के रूप में भी काम में लेते हैं और नए नए डिज़ाइंस उसमें बनते जा रहे हैं। इंजीनियर्स और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में भी अपना योगदान दे रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह यह भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यह एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। प्रोडक्शन की से लेकर मार्केटिंग से लेकर सेलिंग तक, यह हर वर्ग में कई लोगों को जो है वो रोज़गार दे रहा है। घड़ी ख़राब होने पर भी अगर हम देखें तो छोटे दुकानदारों को भी यह एक मौका देता है।
1: और मेक इन इंडिया के तहत ट्रेडिशनली डिज़ाइन के साथ साथ घड़ी को तैयार करके उसे मार्केट में एक्सपोर्ट भी करते हैं और लगातार नए डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ग्रोथ भी कर रहे हैं।
0: फैशन से हटकर अगर हम फिटनेस में भी देखें तो घड़ी काफ़ी ज़्यादा कॉमन और हेल्पफुल बन चुकी है। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या फिर और कुछ भी, तो आप अगर देखेंगे तो आज का जो एडवांस्ड वॉचेस है ये आपको पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेती है।
1: और GPS जैसी टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस, स्पीड की सटीक जानकारी भी मिल जाती है, और सेंसर्स जैसे हमारी BP, हार्ट रेट, ये सब भी चेक कर सकते हैं।
0: डेली ट्रैकिंग का फ़ायदा दोस्तों ये मिलता है हमें कि इससे आप कंटिन्यूसली अपने वर्कआउट को है जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं और प्रोग्रेस को आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं और अपनी

0: कमी को भी आप पहचान सकते हैं।
1: अब जैसे ओलंपिक, स्विमिंग, एथलेटिक, ये सारे जैसे जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, इनमें छोटे से छोटे सेकंड का भी काफ़ी महत्व होता है, और ऐसे में ट्रेनिंग के लिए हर वक्त सटीक जानकारी के लिए ये घड़ियाँ काफ़ी यूज़फुल होती हैं।
0: और दोस्तों, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए ऐसी वॉच प्रीफर करते हैं, तो फिर आपको बता दें कि ये काफ़ी हद तक महंगी भी आती है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वालिटी भी हमें मिलती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों आज के शौर्य गाथा सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी साहसी बेटी की जिसने मानवता और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह कहानी है निडरता, त्याग और अदम्य साहस की मिसाल निर्जा भनोत की।
3: इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने साहस से अमर हो जाते हैं। निर्जा भनोट का एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने संकट के समय की घड़ी में सैकड़ों लोगों की जान बचाकर जो है वीरता की एक नई मिसाल कायम की है।
2: निर्जा भारतीय फ्लाइट अटेंडेंट थी और उन्होंने पैन एम फ्लाइट 73 में सवार कई लोगों की जान बचाई। बात है 5 सितंबर 1986 की, जब पैन एम फ्लाइट 73 बॉम्बे से कराची होते हुए न्यूयॉर्क जा रही थी।
3: तभी कराची में अबू निदाल संगठन के 4 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने फ्लाइट हाईजैक कर ली। इस फ्लाइट में लगभग 380 पैसेंजर्स थे और 13 क्रू मेम्बर्स मौजूद थे।
2: हाईजैकर्स का इरादा साइप्रस जाकर फिलिस्तानी कैदियों की रिहाई की मांग करना था। जैसे ही हाईजैकर्स फ्लाइट में सवार हुए, निर्जा ने कॉकपिट क्रियो को पहले से ही वार्न कर दिया था।
3: पायलट इंजीनियर ने ओवरहेड हैच से जो है विमान छोड़ दिया और जिससे कि पायलट न होने के कारण प्लेन ग्राउंडेड हो गया और टेक ऑफ भी नहीं कर पाया। इसके बाद सबसे सीनियर क्रू मेंबर होने के नाते निर्जा ने ही केबिन की जो जिम्मेदारी थी वो संभाली।
2: हाईजैकर्स ने मेनली अमेरिकन और अमेरिकन प्रॉपर्टी को निशाना बनाया। हाईजैक के तुरंत बाद भारतीय अमेरिकी यात्री की पहचान कर उसे एग्जिट डोर पर लाकर उनकी हत्या कर दी। बचे हुए अमेरिकन की पहचान करने के लिए हाईजैकर्स ने निर्जा को पासपोर्ट इकट्ठे करने को कहा।
3: निर्जा और उनके निर्देशानुसार केबिन क्रू ने लगभग 43 अमेरिकन पैसेंजर्स के पासपोर्ट सीटों के नीचे और कचरे के डिब्बे में फेंकने वाले रास्ते में छिपा दिए। 17 घंटे तक गतिरोध करने के बाद में हाईजैकर्स ने एक्सप्लोजिव उड़ा दिए।
2: निर्जा और उनके निर्देशानुसार जो और कैबिन में गोलीबारी शुरू कर दी थी और फिर भनोत ने इमरजेंसी एग्जिट खोला और खुद भागने के बजाय वहीं फ्लाइट पर पैसेंजर्स को निकालने में रुकी रही।
3: ये देखा हाईजैकर्स के जो नेता थे उन्होंने काफ़ी करीब से गोली मार दी और इस बलिदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले, जैसे कि 1987 में अशोक चक्र, 1987 में तमगा है इंसानियत पाकिस्तान सरकार द्वारा और 1987 में ही फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की तरफ से हीरोइज्म अवार्ड। और दोस्तों साथ ही बात करें तो निर्जा पर ये फिल्म भी आई थी जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इसी पर एक गीत।

0: दोस्तों, अब एंटरटेनमेंट की बात करते हुए बात करते हैं हमारी कुछ न्यू रिलीजेस फिल्मों की, जिसमें सबसे पहली फिल्म की बात कर रहे हैं हम, हे जवानी तो इश्क होना है, जो कि थिएटर्स पर रिलीज़ हो चुकी है। अगर इसके कास्ट की बात करें तो पूजा हेज, वरुण धवन, जिमी शेरगिल हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये एक कॉमेडी जेनरी की फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं डेविड धवन।
1: इसी के साथ हम अगर बात करें एक और फिल्म की जो कि सिनेमाज में रिलीज़ हो चुकी है, तो वो है बंदर। और इसकी कास्ट में नज़र आएंगे बॉबी देओल, सबा आज़ाद। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप।
0: साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है, जैसे कि माबेन, ये कि एक माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमनी और रवि किशन इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसमें डायरेक्टर किया है सुरेश त्रिवेणी ने।
1: और इसी के साथ OTT पे रिलीज़ हो चुकी है मेड इन इंडिया, अ टाइटन स्टोरी, धुरंधर द रिवेंज और गुल्लक सीजन 5, माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट।
0: अब दोस्तों आगे बात करते हैं और चलते हैं हमारे इंडियन सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस की ओर जिन्होंने अपनी खूबसूरती, शानदार एक्टिंग और जीवंत स्क्रीन प्रेजेंटेशन को लेकर लाखों लोगों के दिल जीत लिए हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, साउथ इंडियन मूवीज से लेकर बॉलीवुड तक खुद की प्रतिभाशाली पहचान बनाने वाली कलाकार को दुनिया रंभा के नाम से जानती है। आज इनके बर्थडे पर हम बात कर रहे हैं ये दी विजय लक्ष्मी की,
0: जो कि 1990 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआत के वर्षों तक इंडियन सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस में से एक रहीं। लगभग दो दशक तक इन्होंने अपने एक्टिंग के करियर में रंभा ने 8 भाषाओं में से 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है,
1: जिनमें मेनली तमिल, तेलुगु के साथ साथ हिंदी, मलयालम, कन्नड़ के अलावा कुछ भोजपुरी, बंगाली फिल्में भी शामिल हैं। मलयालम फिल्म सरगम से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की।
0: 7 क्लास में इनके जो एनुअल डे था, इस कार्यक्रम पर इन्होंने अम्मा वरु की भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर हरिहरन भी मौजूद थे।
1: वे विजय लक्ष्मी के संपर्क में रहे और बाद में इन्होंने मलयालम फिल्म सरगम में मेन एक्ट्रेस के रूप में पेश किया।
0: दोस्तों, इनका जो पहला ऑन स्क्रीन नाम अमृता था, जिसे इन्होंने बाद में अपनी डेब्यू तेलुगु फिल्म आ ओकट्टी अड्डुकू में किरदार के नाम पर रंभा रख लिया।
1: अपने एक्टिंग के करियर के बाद अब वे टीवी होस्ट और जज के रूप में कई शोज में नजर आती हैं।

0: दोस्तों, जब भी भारतीय टेनिस का इतिहास लिखा जाएगा, एक नाम सुनहरे अक्षरों में चमकेगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बिना किसी शोर के अपने आर्टिस्टिक शॉट से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। हम बात कर रहे हैं भारत के महान टेनिस स्टार, जो कि एक कोच भी हैं और पेशेवर टेनिस खिलाड़ी भी रह चुके हैं, रमेश कृष्णन की।
1: 5 जून 1961 को मद्रास में जन्मे रमेश के खून में ही टेनिस था। उनके पिता रामनाथन कृष्णन खुद भारत के बहुत बड़े टेनिस दिग्गज रह चुके थे, लेकिन रमेश ने अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1979 में उन्होंने जूनियर विंबलडन और फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर दुनिया को बता दिया कि भारत का यह लड़का रुकने वाला नहीं है।
0: वह दौर के बड़े बड़े ताकतवर खिलाड़ियों का था और जो अपनी तेज सर्विस से डराते रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने शांत दिमाग, गजब के कोर्ट विजन और आर्टिस्टिक शॉट्स के लिए वे जाने जाते थे।
1: उनके करियर का सबसे बड़ा धमाका हुआ साल 1999 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जब उन्होंने दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैट्स विलेंडर को हराकर पूरे खेल दुनिया में तहलका मचा दिया था। इतना नहीं दोस्तों, बल्कि वे 3 बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुंचे और ईयर 1987 में भारत को डेविस कप के फाइनल तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़े हीरो भी बने।
0: उनकी इसी महानता के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। आज भी वे चेन्नई में अपनी एकेडमी के जरिए भारत के कल को सवार रहे हैं।
1: दोस्तों, वो टेनिस प्लेयर के बाद में बात करते हैं एक ऐसी खिलाड़ी की जिन्होंने मैदान पर सिर्फ दौड़ना नहीं सीखा बल्कि मुश्किलों को पछाड़कर वापस उठना भी सीखा है। यह है भारत की मशहूर एथलीट मचित्र राजू पुवम्मा।
0: वे एक भारतीय स्प्रिंटर हैं जो कि 400 मीटर दौड़ में विशेषता रखती हैं। कर्नाटक की रहने वाली पुवम्मा ने देश के लिए 400 मीटर की रेस में सालों तक अपना पसीना बहाया है, चाहे वो साल 2014 और 2018 के एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाना हो या फिर देश का सर्वोच्च अर्जुन पुरस्कार जीतना। उन्होंने ट्रैक पर हमेशा तिरंगे का मान बढ़ाया।
1: लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी में ट्विस्ट आया जब 2022 में उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। 32-34 की उम्र में तब लोगों ने यह मान लिया था कि उनका करियर जो है वो खत्म हो चुका है, तब भी पुवम्मा ने हार नहीं मानी।
0: उन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत की और मैदान पर अपनी वापसी की। साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारत की रिले टीम का हिस्सा बनकर दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है।
1: उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम खुद पर भरोसा है तो लाइफ की हर रेस हम जीती जा सकती है।

0: दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कलाकार की जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी मेहनत, प्रतिभा, मल्टीपल कैरेक्टर्स के दम पर लाखों लोगों के दिल जीतने वाले एक्टर प्रोड्यूसर हैं ये मार्क वाहलबर्ग।
1: एज एन एक्टर उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन जैसी कैटेगरीज में काम किया और कई अवार्ड जीते। इनका जन्म आज ही के दिन बॉस्टन में हुआ था।
0: अपने कवर में उन्होंने 1990 के दशक में हिप हॉप ग्रुप मार्की मार्क एंड द फंकी बंच के मेंबर के रूप में उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, जिसके साथ ही उन्होंने म्यूज़िक फॉर द पीपल और यू गॉट अ बिलीव रिलीज़ किए।
1: अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1994 में आई फिल्म रहने सा मैन से की उन्होंने, और इसके बाद फियर में मेन रोल निभाया। 2000 के दशक के शुरुआत में कई बड़ी बजट फिल्मों में काम भी किया,
0: जैसे कि द परफेक्ट स्टॉर्म, प्लेनेट ऑफ द एप्स, द इटालियन जॉब। और क्राइम कैटेगरी की हम बात करें तो फिर द डिपार्टेड में उन्होंने बेस्ट हेल्पिंग एक्टर के रूप में अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
1: द फाइटर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी उन्हें नामांकित किया गया। 2017 में वे दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर रहे।
0: और फिल्मों के अलावा उन्होंने 5 HBO सीरीज के साथ ही कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया है।
1: तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे जीनियस की जिन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह जॉन मैनर्ड कीनीज।
0: इंग्लैंड में जन्मे कीनीज सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे बल्कि एक विजनरी भी थे। ईयर 1929 की महान मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के समय पे आपको याद दिलाती होगी कि जब पूरी दुनिया में नौकरियां ख़त्म हो रही थी तब और फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, उस दौर के पुराने एक्सपर्ट्स को मानना था कि मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलने वाला है।
1: उन्होंने दुनिया को एक रिवॉल्यूशनरी विचार दिया। उन्होंने कहा कि जब मंदी आए तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए और लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना चाहिए ताकि लोगों की जेब में

0: पैसा आए और बाजार फिर से दौड़ने लगे।
1: उनका यह विचार आगे चलकर केनिसियन इकोनॉमिक्स कहलाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
0: उनका बहुत फेमस और मज़ेदार कोट है, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, जिसका मतलब था कि भविष्य की चिंता में आज की प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, जरा सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो भोजन खाते हैं, जिन नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, यह सब हमें हमारे पर्यावरण से ही मिलता है। यानी कि एक तरह से यूं कहें कि हमारे जीवन का आधार ही पर्यावरण है।
5: और इसी पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को अपने प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास कराने के लिए हम हर साल आज ही के दिन यानी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
4: दोस्तों, यह दिन हमारे क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस, बढ़ते पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी के नुकसान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यह बताता है कि पर्यावरण के प्रति संरक्षण हमारे क्यों जरूरी है।
5: लोगों को वृक्षारोपण और जल संरक्षण के महत्व को बताता है, साथ ही स्वच्छता को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। सरकारों, संस्थाओं, नागरिकों, स्कूल्स को मिलकर पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से ही प्रोत्साहित करता है।
4: साल 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
5: और ईयर 1973 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। और 2026 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो मेन सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंजेस पर हो रहे ठोस कदम उठाने का। तो इसके बारे में जो थीम रखी गई है वो भी क्लाइमेट एक्शन रखी गई है,
4: जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना नहीं है बल्कि वास्तविक कार्यवाही करना है। इस बार मेजबान देश की बात करें तो अजरबैजान मेजबानी कर रहा है और मुख्य कार्यक्रम भी उसकी राजधानी बाकू में आयोजित हुई है।
5: दोस्तों, पर्यावरण को हमारे कई प्रकार की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना पड़ता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और भी कहीं ज़्यादा फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये सब जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन, अगर कोई टूरिस्ट वगैरह होते हैं तो वो भी अगर किसी वाटर बॉडी के पास में जा रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन करते हैं, पानी में गंदगी फैलाते हैं। इससे इन सभी चीज़ों से जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन भी हमें देखने को मिलता है। फ्लोट कटिंग के नाम पर आसपास के जंगल हमें अचानक से एकदम से ऐसे कटे हुए देखने को मिलते हैं कि कुछ हो ही ना वहाँ पे। साथ ही साथ प्लास्टिक कंजप्शन में जो हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है।
4: तो मानस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि अब वृक्षारोपण हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, साथ ही साथ पानी और बिजली की भी हमें बचत जितनी हो सके उतनी हमें करनी चाहिए। और इसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे तुमने प्लास्टिक कंजम्पशन की बात की, तो प्लास्टिक का भी हमें उपयोग कम से कम करना चाहिए। और स्वच्छता अभियान जो सरकार हमारी चला रही है तो उसमें भी हमें सहयोग करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करें अगर कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज की भी हमें रक्षा करनी चाहिए।
5: तो दोस्तों, साथ ही साथ हमें जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी लगातार शुरू से जागरूक रखना होगा और उन्हें भी इन सभी चीज़ों के बारे में बताना होगा ताकि वे भी आगे जाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे हम बात करते हैं आज के इतिहास की। और जैसा कि अभी हमने बात करी थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो दोस्तों आज ही के दिन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ था। इसी की याद में बाद में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। और अगर 1973 की बात करें तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आज ही के दिन मनाया गया था।
1: 1967 की अगर हम बात करें मानस, तो सिक्स डे वॉर की शुरुआत हुई थी जो कि इसराइल और अरब देशों के बीच लड़ा गया था। और 1947 की बात करें तो जॉर्ज मार्शल ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए प्रसिद्ध मार्शल योजना की घोषणा की थी।
0: इसके बाद 1981 में अमेरिका में पहली बार एड्स रोग के मामले को आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें आगे चलकर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती का रूप लिया था।

0: तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। तो फुटबॉल फैंस का लंबा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से होने जा रहा है।
1: और दोस्तों, आईपीएल 2026 के जो T20 क्रिकेट रहा था, इसके बाद में अब टेस्ट की बारी आ चुकी है। 6 जून को न्यू चंडीगढ़ के मेज़बान में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एकमात्र टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दोनों देशों के बीच में 8 साल के लंबे अंतराल के बीच में टेस्ट मैच होने वाला है।
0: तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपके साथ मैं थी निधि जैन और मेरे साथ हैं
1: मानस व्यास।
0: अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, वहां से सुनते हैं हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

वाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,000

0: 800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्रीय FM रेडियो लेक सिटी शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रूबरू। रूबरू कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन विषय पर पर्यावरणविद प्रोफेसर पी आर व्यास से बातचीत कर रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौड़।

0: श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं प्रोफेसर पीआर व्यास। और अगर हम इनका संक्षिप्त परिचय दें, आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं प्रकृति रिसर्च सोसाइटी उदयपुर के अंतर्गत। आप पूर्व में विभागाध्यक्ष रहे हैं ज्योग्राफी विभाग से मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और तो सबसे पहले सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: थैंक यू सर।
0: तो प्रोफेसर व्यास, अगर हम बात करें, क्योंकि हम आज मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और जब भी पर्यावरण की बात आती है या जब भी पर्यावरण से जुड़े किसी भी विषय पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या सामने दिखाई देती है। और उस ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हमें सतत विकास, क्योंकि हम देश की या पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है, और उन्हीं संसाधनों का उपभोग करके हमें आगे भी बढ़ना है, हमें विकास भी करना है और समाज की भी तरक्की अगर हमें करनी है। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसी के साथ, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां हम अभी वर्तमान में देख पा रहे हैं?
1: जैसा कि आपने पहले प्रारंभिक जो है प्रस्तुति में ही बता दिया है, जलवायु परिवर्तन किस रूप में हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो स्वरूप है वो क्या स्वरूप और कैसे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, और सतत विकास की चुनौतियाँ क्या है। भाइयों और बहनों, सतत विकास का अर्थ है यानी हमारी आज की जरूरतों को पूरा करने और उनमें आने वाली संतानों के लिए, आने वाली जेनरेशन के लिए हम उनको क्या देने जा रहे हैं, ये विचार ही सतत विकास है। क्योंकि हम जितना उपभोग कर रहे हैं संसाधनों का, उसके साथ ही हमें उनको बचाए भी रखना है और आगे की जेनरेशन को भी कुछ देना होगा, तो तभी जाकर के हम प्रकृति के इस स्वरूप को बचा पाएंगे। आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग का जो विषय है वह है, जैसा कि हम देख रहे हैं, टेम्परेचर कितनी जगह 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है और यहाँ तक कि 48 भी टच कर चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई, क्यों ऐसा स्वरूप आया, जो रिफ्लेक्शन की जो पोजीशन है वो क्या इस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी भीषण गर्मियां हैं, क्यों इतने रिकॉर्ड टूट रहे हैं बिना मौसम, कहीं बरसात बहुत ज़बरदस्त हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सालों तक जहां सूखा पड़ रहा है वहां बाढ़ देखने को मिल रही है, मरुस्थलों में तेज़ बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का जल बढ़ रहा है, ये सारे जो जिस तरह के डायमेंशंस हैं, जिस तरह का स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग की इस धारणा को एक आम व्यक्ति तक, एक सामान्य जन तक यह समझना बहुत जरूरी कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंस।
0: प्रोफेसर व्यास, अगर हम बात करें कि आपने अभी जिक्र किया कि वर्तमान में हमारे जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, भीषण गर्मी, टेम्परेचर जो है 45 से 48 डिग्री जा रहा है, और हाल ही में हमने समाचार पत्रों में और कई लेखों में देखा कि पूरे विश्व के 100 सबसे गर्म शहरों में लगभग 90 से 95 भारत में ही पाए गए। और अगर हम भारत के संदर्भ में हम ये बात करें, क्योंकि भारत देश जो है हिमालय के दक्षिण में बसा हुआ है, और जब भी हम देख रहे हैं इन हिमालय की बात होती है तो वहाँ के ग्लेशियर का पिघलना और सीधा उन ग्लेशियर का हमारे नदियों के साथ जुड़ाव, और ये सारी चीज़ें जो एक साथ दिखाई दे रही है, कई बार जल स्तर का सडनली बढ़ जाना, मॉनसून आने से पहले जल स्तर की ये स्थिति हो जाती है कि बाढ़ आ रही है और वहाँ पर विध्वंसकारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, इसका किस तरह से आप विश्लेषण करना चाहेंगे?
1: हम लोग जो कुछ भी आज देख रहे हैं, कई ऑब्जर्वेशंस किए जा चुके हैं, ये सीधा इफेक्ट कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि धरती पर सूर्य की जो किरणें आती है वो आवर्तित क्या है, ट्रांसमिटेड एनर्जी पृथ्वी तल तक पहुंचती है और पृथ्वी तल वापस उसको कुछ तो एब्जॉर्व करता है और कुछ वापस रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी वापस पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जितने ऑटोमोबाइल्स है, फैक्ट्रीज है, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, इन सारे फैक्टर से कार्बन डाइऑक्साइड का एक परत पूरी बन गई, वनस्पति का प्रभाव था वो कम हो गई, वनस्पति जो उसको सौंपती थी, तो हमारे ऊपर एक कवर था और वो कवर ये था कि वहाँ से जितनी रिफ्लेक्टेड एनर्जी जाती थी वो आसानी से पहुँच जाती थी। लेकिन ये सारा सब जो है पोल्यूटेड वातावरण हुआ, कार्बन डाई की परत हुई, उसकी वजह से पूरी पृथ्वी गर्म होने लग गई है, उसके चारों तरफ एक जो एक वातावरण था जिस पर मानव जीवन आराम से था, बहुत सी जगह पंखे नहीं चलते थे, इवन देन गर्मियों में टेम्परेचर उदयपुर का भी इतना नहीं था, आज हम कितना फेस कर रहे हैं। बहुत थोड़े दिनों पहले मैं हिमालय जाके आया हूँ और वहाँ श्रीनगर गढ़वाल में मुझे एसी चलाने पड़े थे गेस्ट हाउस में। आप सोच सकते हैं कि हिमालय में जाकर के आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ इतनी गर्मी होगी, दिन में 3 बजे जब हम निकले कार से तो वहाँ लू की लपटें

0: चल रही थी। हमने कहा आपकी लू चलती जो, हाँ साहब हमारे यहाँ लू चलती। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों कि वहां भी और ये सारे सब स्वरूप पूरे पृथ्वी तल के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो पोल्यूटेड जो वातावरण बना है उससे हरित ग्रह प्रभाव दिखाई दे रहा है, और उसको समय रहते यदि नहीं किया तो हमारे टेम्परेचर में और वृद्धि होगी, और यही एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, और इसको समझना बहुत जरूरी है।
1: प्रोफेसर व्यास, अगर हम इसी चीज को और आगे बढ़ाएं तो जो आपने भारत का जो भौगोलिक स्वरूप, अपन ने उत्तर दिशा की बात की जहाँ हिमालय पर्वत है, लेकिन उसी तरह जब हम भारत के दक्षिण पश्चिम पूर्व इसकी बात करें तो एक लंबी तटीय रेखा है हमारे, और इन लंबी तटीय रेखा पे काफ़ी जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से यहाँ पर बंदरगाह है, समुद्री पोत आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अगर कहें बड़े बड़े महानगर जो हैं लगभग लगभग मुंबई चेन्नई अगर हम बात करें वहीं बसे। तो जब हम देखते हैं और कुछ स्टडीज़ के अनुसार जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग या जो हीट इफेक्ट आप बता रहे हैं, जो हमारी पर्यावरण के ऊपर जो लेयर है वो जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसकी वजह से जो समुद्र तट जो हैं वो डूबते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ तटीय इलाके, और ख़ास तौर से जब हम पूर्व की ओर बात करें तो जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल से, उस पर भी देखा जा रहा है कि वो धीरे धीरे डूबता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ये क्या प्रभाव है इसके बारे में आप बताएं।
0: देखो आइस फील्ड का जब हम अध्ययन करते हैं तो दो तरह के आइस फील्ड है, एक तो यह है जो उच्च अक्षांश में है, दोनों ध्रुव है नॉर्थ और साउथ पोल, और तीसरा ध्रुव है हिमालय जिसको हम थर्ड पोल भी कहते हैं, और उसके साथ कुछ श्रेणियां जो आपके यूरोपीय क्षेत्र में भी है, ये है, ये सारे सब पर्वत शिखर है, उनकी ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, ध्रुवों के तो पिघल ही रहे लेकिन पर्वतों के जिसमें खास तौर से हिमालय, अब इन पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो उनके ग्लेशियर्स पिघलने से गंगा यमुना गंगोत्री यमुनोत्री ब्रह्मपुत्रा और सिंधु जैसी बारहमासी नदियां बहती थी उनके ग्लेशियर में, उनसे भी पानी उनको मिलने लग गया, तो समुद्र तल पे भी उसका प्रभाव जा रहा है और वो एक तरह से वृद्धि भी हो रही है, इवन देन समुद्र तली के उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर उस पर दिखाई देता है। आप ये देखिए गंगोत्री हर साल 15 से 30 मीटर कम से कम इसकी रफ्तार से पीछे खिसक रही है, यानी उसके ग्लेशियर का जो विस्तार था वो संकुचित होता जा रहा है, उसमें भी कमी आ रही है। आप पूरा उत्तरकाशी से आगे जाएं और उसके बाद आप देखें जहां गंगोत्री पहुंचते ही लगता था पीछे के पहाड़ों पे बर्फ जमी रहती थी, वो भाग अब दिखाई नहीं दे रहे, उनके ग्लेशियर भी पीछे की तरफ खिसक गए, 30 से प्रति वर्ष 30 मीटर की कमी आ रही, तो सोचिए कितना प्रभाव होगा। तो इस तरह से, और पहाड़ पर जमी हुई बर्फ जब तेजी से पिघलेगी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो पिघलेगी, तो शुरुआत में पहाड़ों में ग्लेशियर फटने की बात आ रही है जो आउटब्रस्ट हो रही है, ग्लेशियर जो लेक्स थी पूरी की पूरी ग्लेशियर थी लेक के रूप में वो ब्रस्ट हो गई, तो जिसे हम ग्लेशियर आउटब्रस्ट कहते हैं वो कहते हैं। तो उत्तराखंड की अचानक कितनी ही विनाशकारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, बहुत सी घटनाएं सुने हैं हम, लैंडस्लाइडिंग की सुन रहे हैं, आउटब्रस्ट होने से ग्लेशियर की जो टोटल वहां टूट करके ग्लेशियर्स बाहर उस पर आ रहे हैं, नीचे वाले क्षेत्रों पर आ रहे हैं, पर्वतीय पदों पर आ रहे हैं यानी उसकी तलहटी पर आ रहे हैं, लेकिन लंबे समय से ये पहाड़ जब खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में तो ये सदाबहार नदियों में जो पानी का संकट है वो भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब कब तक पानी बहेगा उस पर, यदि ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो उनमें भी पानी की कमी आने लगेगी, और बिना पानी के गंगा के इलाकों में खेती करना मुश्किल होगा, इवन देन जो वहाँ जीवन मानव जीवन उस पर चलता है, पीने का पानी है, खेती को पानी है, सिंचाई का पानी है, ये सारी सब कहाँ आएंगे, जल स्रोत ही खत्म हो जाएंगे। तो इस ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमें कुछ अपने मानव जीवन को अपनी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हमें डालना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होने वाला है।
1: लेकिन प्रोफेसर व्यास, जो समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है और तटों का डूबने का जो कार्य जो घटनाएं हो रही है, तो ये इसका कारण क्या दक्षिणी ध्रुव की पिघली हुई बर्फ माना जाए, या फिर जो समुद्र पर जो बढ़ रहा है, या फिर किसी और स्रोत की वजह से हो पा रहा है?
0: देखिए केवल एक ध्रुवीय क्षेत्र ही नहीं, टोटल हरित ग्रह प्रभाव का जो ग्रीन हाउस इंपैक्ट आ रहा है वो पूरे विश्व के पूरे ग्लोब के ऊपर, सोचिए आप, हम केवल ये इसमें केवल भारतीय या यूरोपीय स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा, हमें पूरे ग्लोब की बात करनी पड़ेगी, वो पूरा ग्लोबल वे में हमें सोच, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं कि विश्वव्यापी तापक्रम में वृद्धि हो रही है, संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या का भाग आप ये देखिए अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, राइट फ्रॉम फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क बाल्टीमोर ये

0: नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ यूएसए पूरा वो मेगालोपोलिस कहलाता है। जितने मैक्सिमम जो जितने सिटीज हैं उसके किनारे बसे हुए हैं। यूरोप में भी यही हालत है, भारत के प्रमुख चार नगर हैं उसमें भी यही हालत है, उसमें आपका चेन्नई भी आ गया, इसमें आपकी ये भी आ गया, आप बॉम्बे और कलकत्ता, ये सारे सिटीज है, इवन देन विशाखापट्टनम और इधर कोचीन, ये जो बड़े सिटीज हैं जो किनारे पर बसे व्यापारिक दृष्टिकोण से, लेकिन किनारे का कोई भी भाग रिक्त नहीं छोड़ा, एक इंच जमीन भी खाली नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? और मैग्रोव जो थे जिसके समुद्र के किनारे जितने पेड़ थे वो खत्म हो गए, जो आपकी जो लाइफलाइन थी एक तरह से पूरा उधर से रिवर्स आके मिलती थी, मुहाना बनाती थी, डेल्टाज बनते थे, एस्चुरीज बनती थी, वो भी समाप्त हो रही है। आप गंगा तट पर जाकर के देखिए, जहाँ गंगा सागर है वहां कितना मेला। मैंने तो अपनी प्रकृति प्रतिबिंब की कविताओं में भी लिखा है कि कहने को मैं माँ हूं लेकिन मेरे सीने पर प्रहार हो रहा है। और आपको यदि मेरे यदि आपने मुझे गंगा अमृत नाम दिया है तो जाकर के देखिए गंगा सागर में मेरी अमृत की क्या स्थिति, आने वाली पीढ़ियां क्या आपको माफ करेगी कि मेरी गंगा की स्थिति क्या कर दी, हमने कितना प्रदूषित जल उसमें निस्तारित किया। तो यह हर हर गंगे जैसी बड़ी योजनाएं चल रही है, फिर भी लोगों में यदि अवेयरनेस नहीं आती है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आगे आने वाले समय में होगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का असर कम से कम समुद्र के तापमान पर दिखाई दे रहा है।
1: प्रोफेसर व्यास, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े और भी मुद्दों पर बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं प्रोफेसर पीआर व्यास। और ब्रेक में जाने से पहले हमने इनसे जलवायु परिवर्तन को भारत और विश्व के दृष्टिकोण पर हमने इनसे बात की। प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम समुद्र तटों की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, सुंदर वन की बात कर रहे हैं, मैंग्रोव वनस्पति की भी हमने बात की, लेकिन भारत का अगर पश्चिमी हिस्से की बात करें जो थार मरुस्थल है और साथ ही साथ विश्व में जो अलग अलग मरुस्थल हैं उनका अगर हम देखें तो ये मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो जो राजस्थान की जो हमारी बनावट है एक पतंगनुमा आकृति का है, जिसका एक भाग पूरा थार मरुस्थल में है और एक भाग जो एक अरावली पर्वत श्रृंखला है जो सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जा रही है, वो एक लेयर का, एक बाउंड्री वॉल का काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये मरुस्थल का विस्तार के संदर्भ में हमारी जो अरावली पर जो दबाव आ रहा है, या फिर यूँ कहें अरावली जो संकट में है और अरावली का जो एक ढांचा है जो एक लेयर का काम कर रहा है, वो कितना प्रभावित हो रहा है?
1: अभी हम प्रारंभ में बात कर रहे थे कि सुंदरवन का डेल्टा और इनके ऊपर भी प्रभाव रहा है, वो क्योंकि वहाँ मैग्रोव थे, पूरी समुद्र किनारे कितना ही भाग था उस पर भी असर हुआ। तो अब हम अरावली के ऊपर इसकी बात करेंगे कि थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी भाग में है और अरावली पर डेजर्टिफिकेशन का क्या प्रभाव है। आज अरावली की पर्वत श्रेणियाँ पश्चिमी भाग की ओर भी देखें तो वनस्पति के विनाश होने से या माइनिंग एरियाज के विस्तार होने से अरावली पर जो प्राकृतिक दीवार थी, एक ग्रीन बैरियर था, वो ग्रीन बैरियर उसके ऊपर इफेक्ट आ गया है और ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरा दिखाई देने लग गया है। अनियमित मानसून हो गए, लगातार बढ़ते हुए तापक्रम के कारण शुष्क इलाकों में मिट्टी की नमी वो खत्म हो रही है और पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जिससे मिट्टी ढीली होकर के, यानी मिट्टी का वहाँ जो सॉइल इरोजिन है वो होकर के उसके साथ उड़ने लग गए। डेजर्टिफिकेशन का असर दो तरह से हुआ, चट्टानों में चटकने हो गई क्योंकि तेज तापमान है, तो जिसे हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसके कंकड़ पत्थर दिखाई देने लग गए। आपने देखा होगा एक छिलती हुई, एक पूरा छलनी हो गई है चट्टाने, वहाँ आपने देखा होगा देसुरु की नाल से आते तो दोनों साइड में बड़े बड़े चट्टानी के स्वरूप दिखाई देते थे, पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देती, वो चट्टाने कटी हुई दिखाई देती जैसे किसी ने ऐसे से काट दिया हो, तो वो एक उसमें खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे वहाँ सूख रहे हैं, चट्टाने समाप्त हो रही है। और उसी भाषा में यदि हम उसको कहें तो डिजिटिफिकेशन का रूप है, एक तरफ तो उड़ती हुई रेत है, चट्टानों के कण हैं और गर्मियों के दिनों में वहाँ धूल भरी आंधियाँ चल रही है, तो वो डस्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं बहुत पहले से ही कहीं ज़्यादा तीव्र और लंबे होते जा रहे हैं और रात्रि को भी वहाँ लू चल रही है। तो ऐसी स्थिति अगर मिट्टी में नमी नहीं बचेगी तो उपजाऊ जमीन भी नहीं रहेगी और धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलती जाएगी, तो आपकी जमीन समाप्त हो रही है जो थोड़ी बहुत थी, उसका सॉइल इरोजन भी हुआ और ये डेजर्ट जिससे चरागाह और खेती की जमीन में कमी आ रही है। अब आने वाले समय में और कुछ चुनौतियां बढ़ रही है जिसमें आप देखिए एल नीनो भी एक प्रभाव है।
0: प्रोफेसर व्यास, अगर हम बात करें कि हाल ही में जो समाचार पत्रों में सुर्खियों में भी बना हुआ है और इंटरनेट पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो विगत कुछ समय से एक एल नीनो प्रभाव हो रहा है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर और विश्व के कई दक्षिण एशिया के देशों से प्रभावित होंगे, और ख़ास तौर से जब हम भारत के संदर्भ में हम बात करें क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है, अधिकतर लोग यहाँ कृषि से जुड़े हुए हैं और जो हमारी कृषि है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर करती है। तो अगर ये एल नीनो जो प्रभाव है, हमारे श्रोताओं को समझाएं कि एल नीनो प्रभाव क्या है और किस तरह से ये हमारी आने वाले समय में ये भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि पर ये प्रभाव डाल सकते हैं।
1: एल नीनो का प्रभाव, और ये बहुत ही चर्चा का विषय है, और समझने के लिए भी हम इसको यूँ समझें कि विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर यहाँ से जापान, इंडोनेशिया से यहाँ से प्रारंभ होकर के दोनों अमेरिका के तटों के ऊपर पश्चिमी तट तक है, दोनों महाद्वीपों के और इधर एशिया के, पूरा एक दो रूप में देखें, अलग अलग अपन, हालांकि

0: विश्व मानचित्र में अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर एक, उस पर जो प्रभाव है इक्वेटर का, जो भूमध्य रेखा जहाँ भूमध्य सागर और इसके यहाँ जो मध्य भाग में गुजर रही है, तो पूरा ये क्रॉस करती हुई भूमध्य सागर और वापस इधर अरब सागर और इन सब पे है, लेकिन खास तौर से जो प्रशांत महासागर में जहाँ गुजरती है वहाँ जल गर्म हो जाता है। वो जल गर्म होकर के ऊपर का सतह का तो गर्म हो रहा है, नीचे के तापमान में थोड़ी और कमी रहती है, तो ऊपरी जो जल है वो गर्म होकर के पश्चिमी तटों तक जाता है और पेरू के तट तक चला जाता है, राइट। तो गर्म जो जल है उसका प्रवाह उन तटों तक रहता है, वही अलनिनो का प्रभाव है, उससे अटकेलियां करने लगता है, वो जो जल है एक अलग उछाल की तरह से दिखाई देने लगता है, उसमें स्पंदन दिखाई देने लगते हैं, लहरों में उछाल दिखाई देता है। तो ये जो शक्तियां हैं वो बड़े गहराई से उसका संबंध है। प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और असामान्य रूप से गर्म होने से आपको उसको भौगोलिक घटना है, उसी को हम अलनिनो कहते हैं। अब ये अलनिनो का प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों के तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके कारण ये बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं अलनिनो की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही है। अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, एक अनुमान है कि इसके ऊपर जहां कभी भी अलनिनो का प्रभाव रहा वर्षा भी तीव्रता होगी, तेज प्रहार होंगी, लेकिन जो मानसून पर प्रभाव है उसका भी अलनिनो पर निश्चित रूप से प्रभाव होगा, क्योंकि हमारा जो पूर्वी मानसून है उस पर भी प्रभाव होगा। प्रशांत महासागर से जुड़े इंडोनेशिया का भाग भी उससे है जुड़ा हुआ है और वही अलनिनो का प्रभाव बनकर के हिंद महासागर के तटों पर भी प्रभाव डालता है। अक्सर हम कहते हैं कि भारतीय बजट का आधार, हमारे खेती का आधार मानसून का जुआ है। यदि मानसून अच्छा रहा तो हमारा बजट सही रहा, हमारी खेती और हमारा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही रहा, तो ग्लोबल वार्मिंग ने इस जुए को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना दिया। और जुआ क्यों हो गया, ये प्रभाव क्लाइमेटिक कंडीशन से चेंज हुए। जो नियमित रूप से मानसून हमारा 17 जून को राजस्थान में प्रवेश करता था, अब आप देखिए आज भी एक सूचना थी कि 2 या 3 तारीख को यहाँ जो है आज या कल में केरल को तट को, लेकिन वो जो प्रारंभिक है वो वहाँ बनी हुई मानसून की जो प्रक्रिया वो कब तक यहाँ तक पहुँचेगी 15 से 20 दिन में, तब तक कितना उसका प्रभाव रहेगा, ये भी एक सोचने का विषय है। प्रशांत महासागर की गर्मी हमारे मानसून की हवाओं को भी कमजोर कर देती है, उसकी जो गर्मी है अलनिनो का प्रभाव वो उसको कमजोर करती है, जिससे भारत में सूखे की हालात भी बन जाती है, कभी कभी ये भी स्थिति आती है और फिर मानसून का पूरा पैटर्न बदल जाता है। आपने देखा होगा बाड़मेर क्षेत्र में पानी का जल का भराव हो गया था पिछली बार भी, तो ऐसे क्षेत्रों में वर्षा होती है जो एक असामान्य पैटर्न दिखाई देने लगता है। ठीक है, बरसात वहाँ होती है लेकिन कभी कहीं ज़्यादा और कहीं कम, कहीं बरसते और कहीं तरसते हैं, तो ये एक स्वरूप बदल रहा है। सूखा और बाढ़ का समय, बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा हो जाता है और जहाँ सूखा है वहाँ बाढ़ आ जाती है। ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है ये ही अलनिनो के इफेक्ट है, असामान्य रूप से तापमान में वृद्धि हो रही प्रशांत महासागर।
1: प्रोफेसर व्यास, अगर हम ये भारत के संदर्भ में खास तौर से बात करें तो जो अलनिनो का प्रभाव है, और यूँ कहा जाता है कि भारत का अधिकांश मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर रखता है जो कि अरब की खाड़ी से आता है, और कहीं अगर हम देखें बंगाल की, पूर्वी मानसून जो हमारा बंगाल की खाड़ी से आता है उसका उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है खासतौर से। तो इस अलनिनो के प्रभाव से क्या दोनों ही मानसून हमारा प्रभावित होंगे या जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो ज़्यादा प्रभावित होगा?
0: देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव हिंद महासागर अरब सागर का जो भाग है इससे है, और उधर का भाग जुड़ा हुआ है हिंद महासागर की यानी बंगाल की से, लेकिन ओवरऑल जो दोनों का मीटिंग पॉइंट है वो तो सेंट्रल पार्ट है, तो पूर्वी किनारे अधिक ग्रहण करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि मेघालय में अधिक वर्षा हो रही है। बंगाल की खाड़ी से आते ही जो पूरा पूर्वी भारत है उसमें बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, यूपी भी है, उड़ीसा भी है, लेकिन उन तटों में भी समरूपता नहीं है। कितनी ही बार आपके उड़ीसा क्षेत्र में भी पास में तटवर्ती क्षेत्र है लेकिन वहाँ भी सूखे की स्थिति आ जाती है,
1: छाया क्षेत्र बन जाता है,
0: और ऐसे कुछ क्षेत्र बन जाते हैं। इवन देन पश्चिमी घाट में भी हमारा जो रेनसेडो एरियाज है वहाँ भी ये देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिणी

0: में तटवर्ती क्षेत्र है लेकिन वहां भी सूखे की स्थिति आ जाती है,
1: छाया क्षेत्र बन जाता है
0: और ऐसे कुछ क्षेत्र बन जाते हैं। इवन नैन पश्चिमी घाट में भी हमारा जो रेनसेडो एरियाज है वहां भी ये देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है ये पूरे राजस्थान और इवन दिल्ली तक इसका जो है प्रभाव दिखाई देता है और पूरा शिमला तक, इधर पूर्वी मानसून भी और इधर पश्चिमी। तो दिल्ली और ग्वालियर और इधर भाग में कम से कम पूर्वी जो यूपी से प्रवेश कर रहे हैं लेकिन पश्चिमी यूपी तक जहाँ राजस्थान है वहाँ ये मीटिंग पॉइंट्स है दोनों मानसून के, तो वहाँ वर्षा का प्रभाव वहाँ दिखाई देता है। मानसून का एक स्वरूप, एक जो पैटर्न है, सेट पैटर्न तो ये है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं। इसके परिवर्तन अलनीनो के प्रभाव से हो रहे हैं क्योंकि समुद्र तली का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, उसकी समुद्र जल का प्रभाव बदल रहा है, तो तापमान में वृद्धि होने से ये इफेक्ट तो दिखाई देंगे।
1: अब प्रोफेसर व्यास, क्योंकि हम जब जलवायु परिवर्तन के रूप के और रूपों की बात कर रहे हैं, अलनीनो प्रभाव आपने अच्छा समझाया, लेकिन अभी उससे पहले हमने कार्यक्रम में बात की कि गर्मी और तापमान बढ़ने की वजह से भी हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, लेकिन एक जो अभी नई टर्म चल पड़ी है क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है, शहरों का विस्तार हुआ है और जो हमारे वन वनाच्छादित क्षेत्र थे आज कल वो कंक्रीट के जंगल बन गए, जिसको एक नया टर्म दिया गया है जिसे हम अर्बन हीट आइलैंड कह रहे हैं। और ये अर्बन हीट आइलैंड क्या है और ये हमारे पर्यावरण को और हमारे दैनिक जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है उसके बारे में आप बताएं।
0: बहुत सही आपने ये मुद्दा बताया और यह एक आमजन के लिए सोचने का विषय है कि हीट आइलैंड क्या है, क्यों ऐसे क्षेत्र शहर के अंदर कुछ कुछ भागों में वह ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को बढ़ा देते हैं। आप देखिए उदयपुर में जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ तापमान दिन का हाई रहता है, चाहे सुखेर हो चाहे मादरी इंडस्ट्रियल एरिया हो, लेकिन उसके अलावा यदि कंपेरिजन में देखें तो 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है यदि हम सहेलियों की बाड़ी और लेक साइड एरियाज की बात करें। इसी तरह दिल्ली में भी है, जहाँ कंजेशन ज़्यादा है, जहाँ ऑटोमोबाइल ज़्यादा है, जहाँ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, जहाँ परिवहन लाइनें आके मिल रही है, वहाँ हीटलैंड बन रही है। उसके कुछ प्रभाव सामान्य रूप से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं, कंक्रीट की तो इमारतें हैं, यहाँ रिफ्लेक्टिविटी किस रूप में है, परावर्तित किरणें एकदम जा रही है और वो इस तरह से अपने सोर्स को लौट रही, क्योंकि एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं रहे, पेड़ होते तो अवशोषित करते, जलाग्रह होते तो अवशोषित करते, वाटर बॉडीज होती, जो अवशोषण ही नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी तो वापस उतनी ही रिफ्लेक्शन तेज हो रहा है, तो उसकी वजह से डामर की सड़कें, हमारी कंक्रीट की इमारतें, इवन देन जितनी कारें खड़ी रहती है, अब ये आने वाले समय में इनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम कारों की जो छत है उसके आधार पर हमें थोड़ा सोचना होगा कि ऊपर की कार की जो टॉप रूफ है वो भी रिफ्लेक्टिविटी को प्रभावित कर रही है। इवन देन अभी 34th एक था पर्यावरण में बात करते थे हम, ध्वनि प्रदूषण की बात करते थे शहरों में, हम जल प्रदूषण की बात करते हैं, हम सोयल प्रदूषण की बात करते हैं, वेस्ट मटेरियल डालते हैं, लेकिन 4th एक और हो गया जो है लाइट, और लाइटिंग पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा शहरों में। रात्रि को हम जगमगाती रोशनियाँ देख रहे हैं, सुनसान हो जाती सड़कें लेकिन रोशनियाँ रात भर जगमगाती रहती है, और ऊपर से यदि आप स्काई से देखें तो शहरों को आराम से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ कितने मेट्रो सिटीज हैं, कितने सिटीज हैं, कितने टाउन्स हैं, उनकी रात भर लाइट जलती है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी भी है। यदि हमें समय रहते इसके ऊपर यदि कवर नहीं लगाए LED पर, इस पर हमें केवल ये था कि चौराहों पर और रास्तों के ऊपर आपको एक रास्ता रोशनी में दिखाई देना चाहिए था, हमने उनको जगमगाती रोशनियाँ कर दी, हमने अलग अलग कलर की रोशनियाँ कर दी, तो इससे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं और वहाँ की कीट पतंगों पर प्रभाव। तो प्रकाशीय अभी 2 दिन पहले पेपर में भी था, ये प्रकाशीय प्रदूषण है, इट्स ए लाइटिंग पोल्यूशन, इट शुड बी कंट्रोल्ड। ये भी आने वाले समय में हमें इस पर भी सोचना होगा। रंग बिरंगी लाइटें आप लगाइए त्यौहार पर, दीपावली पर, लेकिन सड़कों को सजाने के लिए इस तरह का नहीं करें ताकि कम से कम जीव जंतु और कीट पतंगे और इवन देन एक्सीडेंट भी उससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो यह है, आपने देखा होगा पूरा एयरपोर्ट से रिनसेर, हम जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली में, सब जगह पूरी बड़ी बड़ी लाइटें अपने हिसाब से म्यूनिसिपलिटी लगा रही। भाई क्यों लगा रहे हो, आपको तो केवल लाइट देनी थी राहगीरों के लिए, हमने उसको आकाश को जगमगा दिया। तो ये प्रकाशीय प्रदूषण है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, तुरंत पर इस पर प्लानिंग में लेना चाहिए, सोचना चाहिए। ये मेरा एक इश्यू इस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। तो डामर की सड़कों पर और गाड़ियों पर ये संख्या बढ़ रही है, इससे आपका हीट वेव भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। आज देखिए ग्रामीण इलाकों की तुलना में

0: से 5 डिग्री तक तापमान शहरों में ज्यादा है। हम यहाँ एसी का उपयोग भी कर रहे हैं, पंखे कर रहे हैं, वो खुले आंगन में सो रहे हैं, बाहर खुले आंगन में सोते हैं, चबूतरियों पे सोते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, सब कुछ नेचुरल है। दे आर मेंटेनिंग आवर इकोसिस्टम, पर हम लोग उन्हें ज़्यादा विकास किया, लेकिन हम वी आर लूजिंग समथिंग, हम लोग कुछ कुछ खो रहे हैं। और यदि यही प्रक्रिया चलती रही, हमने उस प्रकृति को नहीं समझा, तो हम प्रकृति हमें क्रॉस कर जाएगी, वो आगे आने वाले समय में हमें अधिक प्रॉब्लम होगी। इसलिए हीट आइलैंड के ऊपर हमें सोचना होगा। लॉजिक क्या है भाइयों और बहनों? लॉजिक इसके पीछे यह है कि रात के पंखे और एसी ये सब हवा तो देते हैं, लेकिन इनसे भी गर्म हवा आने लग जाती है। ऐसा इसलिए हुआ कि आपके चारों तरफ नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं रहा, इसकी वजह से हमें गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। और ये कंक्रीट के मकान और सड़कों से ये गर्मी सोख लेती है, और उसकी वजह से रिफ्लेक्टिविटी उस तरह से नहीं हो पाती, और शहर कंक्रीट के तपते हुए टापू बनते जा रहे हैं।
1: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर और भी बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस और इस संदर्भ में हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं प्रोफेसर पीआर व्यास। और ब्रेक में जाने से पहले हमने विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, उनके कारण, इन पर हमने बात की। प्रोफेसर, अगर हम बात करें इनके समाधानों की तरफ, क्योंकि हर विकसित होने के साथ साथ हम हर एक चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं, उनको काम में ले रहे हैं, लेकिन अगर उनके समाधान की तरफ बात की जाए तो समाधान जब भी हम देखते हैं तो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए या फिर जितने भी आपने कारक बताए जो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावी रहे हैं, अगर उनसे बचना चाहे तो क्या क्या उपयुक्त समाधान हो सकते हैं, खासतौर से शहरों और गाँव के संदर्भ में?
1: बिल्कुल समाधान है, लेकिन हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप। ह्यूमन हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा, हमारे जो व्यवहार है उसमें चेंज करना पड़ेगा, हमारी आदतों में चेंज करना पड़ेगा, हमारी नीतियों में चेंज करना पड़ेगा, और हमें सतत विकास की ओर बढ़ने के लिए इनके जो पंच तत्व प्रकृति ने दिए हैं, हमें शुद्ध वायु मिली प्रकृति ने दिया है, मानव प्रारंभ से लेकर आज तक हम विकास की दौर से गुजरे हैं और अलग अलग सोपानों में हम कम होते गए, विकास का कर्व ऊपर चढ़ता गया और नेचुरल का जो था विंड्स का और सब का इन सोर्सेज का कर्व डाउन होता गया। तो ये एक संतुलन की स्थिति से हम काफ़ी आगे बढ़ गए, संतुलन रहा नहीं और अब ये प्राकृतिक तत्व हमें किसी भी रूप में शुद्ध रूप में नहीं मिल रहे हैं। शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, शुद्ध भूमि नहीं है, तो और शुद्ध आपके पास में ध्वनि, तो ये और फिर प्रकाशीय और आज अभी मैंने बताया था, तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी मोर नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन और मोर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मानव का अधिक से अधिक प्राकृतिकरण हो और प्रकृति का भी मानवीकरण हो। प्रकृति में है, ऐसा नहीं है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है हमें, पर्वतों के मध्य घाटियां दी है, रास्ते उसमें निकालिए, हमें प्रकृति के मध्य में अटकेलियां करती हुई नदी मिलती है। आज ये भी एक आया था कि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में जो डैम्स बड़े थे उनको खत्म किया जा रहा है, क्यों? कि हमारे छोटे डैम एनीकट्स होने चाहिए, हमने जल भराव कर दिया लेकिन उसका भूसंतुलन पर भी प्रभाव हुआ और दूसरे क्षेत्र जो सूखे रह गए वो हो गए, तो इससे भी प्रभाव पड़ा। तो सस्ती ऊर्जा होनी चाहिए और वो ही दो ही सोर्स है हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी के दो सोर्स है और वो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, वो प्रकृति ने दी है, उसका उपयोग करें ऊर्जा के लिए और डीजल और पेट्रोल कम करें। ये बहुत ही आने वाले समय में इन पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अभी भी देखिए विश्व स्तर पर जो डिस्टर्बेंसेज हुए उसकी वजह से हमें सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि आने वाले समय में यदि ऐसा होता रहा, डीजल और पेट्रोल उपलब्ध नहीं हुए, तो हमारे पास सोलर एनर्जी और हमारे पास में विंड एनर्जी, इसका उपयोग हमें करना पड़ेगा और आने वाले समय में। दूसरा, पेड़ लगाना और बचाना।

0: बहुत बड़ी चुनौती है। और इस प्रकृति को बचाए रखने के लिए पेड़ धरती के एक तरह से फेफड़े हैं। जैसे शरीर चलता हो, लंग्स होते तो चलता है, इसी तरह से धरती के ऊपर पेड़ होना जरूरी। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज़्यादा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही कम होगी, वो उसको सोख लेगी, वो पॉल्यूशन होगा उसको, यदि पेड़ है तो पॉल्यूशन। इसलिए हर घर के बाहर, हर स्ट्रीट के बाहर छोटे उद्यान हो। आज तो 10-15 कॉलोनी के बीच में भी उद्यान नहीं है। तो उद्यान तो होना बहुत जरूरी, उद्यान के लिए स्पेस होना जरूरी। तो ये भी है, हमें जंगलों को काटने से बचाना चाहिए, बड़े पैमाने पर पौधारोपण होना चाहिए, बहुत ही बड़े। आप कितनी बार, इवन देन यहाँ के स्थानीय नेतृत्व करने वालों ने भी कभी कितनी बार बताया कि हमारे यहाँ वुडलैंड नहीं है, ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको बचाइए। भुवाणा की पहाड़ी पर प्लान किया गया था, माछला मंगरा पर प्लान किया गया था, उदयपुर की लोकल पोजिशन देखिए ना, झीलों के चारों तरफ जितने हैं वो ग्रीनलैंड है, पैचेज है, उसको अभी बचाना होगा। अभी थोड़े दिनों पहले हमने पूरा आपके जलबुर्ज के आगे तक एरिया का हमने जाकर के देखा था, नेचुरल सेटिंग है, पर उस पर मॉनिटोरिंग बहुत जरूरी है, उस पर देन पानी और संसाधनों का सही उपयोग हो। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा शुद्ध जल बचा रहे, इसलिए हमें हर बूंद को बचाना चाहिए, उसकी कीमत है। वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समय है। आप गाँव में देखिए, पहले पुराने जितने लोग थे ट्रेडिशनल, वो वाटर हार्वेस्टिंग कितनी थी, हर कुएं के पास में एक पॉन्ड था और उसी तरह से छोटे छोटे तालाब थे। आज वो तालाब आज खत्म हो रहे हैं, तो उनका एक हिस्सा हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। कचरा प्रबंधन एक और है, जो आप वेस्ट मटेरियल है उसका प्रबंधन होना चाहिए, और उसका प्रबंधन के साथ रिसाइकिलिंग होना चाहिए। रिसाइकिलिंग में जाना बहुत जरूरी है, जितना वेस्ट मटेरियल है वो वापस रिसाइकिल होकर के आए, चाहे कंपोजिट खाद बने, चाहे किसी भी तरह से उन मटेरियल को जो वापस रिसाइकिल हो सकते हैं उस पर भी प्लान करना होगा।
1: तो आप थे प्रोफेसर पीआर व्यास, और आज आपने विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे श्रोताओं के साथ जलवायु परिवर्तन और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूबरू, विश्व पर्यावरण दिवस पर जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन विषय पर पर्यावरणविद प्रोफेसर पीआर व्यास से बातचीत कर रहे थे गजेंद्र सिंह राठौड़।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: FM बैंड 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। आज आपके साथ है RJ सरिता। सुनते हैं फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में ये पहला गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
5: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
4: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
5: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।
6: आप हैं हमारे साथ, यानी FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र FM रेडियो लेक सिटी के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं 1942 अ लव स्टोरी से ये नगमा, आवाज़ कुमार सानू की।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं तक। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी शाम के 7 बजने वाले हैं। आपको लिए चलते हैं विविध भारती की मुंबई राष्ट्रीय प्रसारण सेवा और सुनवाते हैं कार्यक्रम जयमाला

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम जयमाला। बस थोड़ी ही देर में
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
2: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम गूगल पे फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
1: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर पार्सल ऑफिस गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
2: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है शहीद। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी खान मस्तान और साथी विराजा मेहदी अली खान की रचना है और गुलाम हैदर का संगीत।

यह आवाज़ थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम था अनोखी अदा। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

स्वर लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है दो चोर। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मुकेश की आवाज में हम आपको फिल्म मनचली का गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये फिल्म है ये गुलिस्ता हमारा।

0: जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: ये देख कैसा है?

0: Antaralka.
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
1: दिखा।
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
8: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: दीदी नौकरी लग गई।
10: अरे वाह बधाई हो तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
9: हाँ जी नया मोबाइल।
10: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
9: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
10: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
9: प्रदीप
10: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
9: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
10: अच्छा
11: आरबीआई कहता है
12: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अभिमान। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: किनारे है

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है दाग, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जयमाला कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत भारतीय सेना, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: लड़े भारतीय सेना।
1: भारतीय सेना इस गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। इंद्रधनुष में आप सुनेंगे गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद गजलें। तो पहले समाज फरमाइए बेगम अख्तर की आवाज में हामिद लखनवी का ये कलाम।

बेगम अख्तर की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी, और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा का ये कलाम। कलाकार हैं अशोक खोसला।

गुलदस्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें, और अब इंद्रधनुष कार्यक्रम खत्म होता है। ये था आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम।

श्रोताओं, हवा महल में आइए आज आपको सुनवाते हैं झलकी। जरा सी आंख लग गई। लेखक और निर्देशक गिरीन्द्र प्रसाद।

0: दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं, यहां तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूं। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं।
1: हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा, अरे भगवान कहाँ चली गई, देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जला कर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल, बा जाए ऐसी पत्नी से।
2: आहा, क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है क्या?
1: लो और सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी?
2: मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊं, दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती।
1: हाँ हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो, मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ।
2: पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई?
1: चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी?
2: अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी शान नहीं बिगड़ जाती।
1: लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता, क्यों?
2: आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी।
1: अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी, कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान,
2: क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं?
1: हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी?
2: हाँ हाँ, मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी।
0: देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो हैं, बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे नेले लग जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है, अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे।
3: ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब?
4: अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इतनी नींद से सोइए।
3: अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है।
4: कानपुर? कानपुर तो चार स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए।
3: पर कानपुर छूट कैसे सकता है, ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है।
4: ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब।
3: वाह साहब, आप मजाक करते हैं, यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दें और अभी हंस रहे हैं।
4: हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि साहब को कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं।
3: छोड़िए साहब, आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता,
4: खबरदार
3: तमीज ही नहीं है।
4: खबरदार, जो तमीज की बात कही, यदि खुद तमीज नहीं है तो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा?
3: देखो मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा।
4: तुम्हारी क्या मजाक, तुम मुझे सबक दिखाओगे?
3: झापड़ मारोगे?

0: आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे या आप भी उतरेंगे और आगे जाने का इरादा है क्या?
1: हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं।
2: फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेंक दूंगा।
0: छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए। इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी
1: चाहिए। वाह साहब, आप भी खूब बोलते हैं। मेरी क्या गलती है, जरा सी आंखें ही तो लग गई।
3: जी हाँ, देख लिया आपने कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही लिया आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से 4 स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें, और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब। ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए।
4: बड़ा बाबू नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार, तबीयत तो आपकी ठीक है ना?
5: क्या
4: तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू?
5: आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप सेल ले लीजिए।
4: बड़ा बाबू मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ, मेरे बिल का क्या हुआ?
5: आपका बिल मैंने बड़ा साहब को भेज दिया।
4: पर मेरा बिल बड़ा साहब के पास क्यों भेज दिया? वहाँ से तो पास होकर परसों ही आ गया था, आज तो चेक देने की बात है ना?
5: बड़ा साहब ही देंगे, मेरे पास चेक कहाँ है भाई?
4: कमाल का दफ्तर है, दिन में भी लोग खर्राटे मारते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं बड़ा साहब से ही शिकायत करता हूँ। बाहर दफ्तर
6: क्या कहा बड़ा बाबू ने, चेक मेरे पास है? नहीं तो मेरे पास तो कोई कागज वागज नहीं है, कल ही मैंने आपका चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था।
4: पर सर वे तो कह रहे हैं आप ही के पास चेक है।
6: क्या कहा, मैंने कहा ना आपसे मेरे पास नहीं है?
4: पर सर वे तो सो रहे हैं दफ्तर में।
6: व्हाट, क्या कहा, दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए मैं खुद देखता हूँ, आइए। बड़ा बाबू चंद्र प्रकाश जी का चेक इनको दे दीजिए।
5: हाँ तो दिया साहब, आपसे कि यहाँ कोई चेक वेक नहीं है।
6: आप तो होश में है बड़ा बाबू, मैंने कल ही चेक साइन करके आपके पास भेज दिया था।
5: सर आप?
6: हाँ हाँ बड़ा बाबू मैं, आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, आज से आप घर जाकर चैन से सोइए, मैं अभी आपको सस्पेंड करता हूँ।
5: सॉरी सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
6: नो, आई विल डिसमिस यू। आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन दफ्तर में सोने से बाज नहीं आते, दिस इज वेरी बैड बड़ा बाबू।
5: सर मैं सोया नहीं था सर।
6: व्हाट, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
5: नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई।
7: ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू, आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या। छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब उनसे, ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं, अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी कमाल ही है कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहें और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए, ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं।
8: जी सुनते हैं? ओहो सुनिए ना, सुनिए ना। अरे अभी अभी तो सोए थे, कहाँ चले गए? ओह बाथरूम की बत्ती चल रही है, आप बाथरूम में कब से बैठे हैं जी? अरे रे वो देखिए दरवाजा खुला है। हाँ

0: लगता है चोर भागा जा रहा है। देखो चोर चोर पकड़ो, पकड़ो।
1: जय बजरंग बली के, जय बजरंगी बली के। कहाँ मालकिन, किधर चोर है? अरे आप चुप रही मालकिन, चुप रही। अभी उस बदमाश को हम पकड़ के लाते हैं।
0: पकड़ो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। अरे चोर पकड़ लिया।
1: अब क्या बताओ बच्चों, मेरे ही घर में चोरी करने के लिए सुझा था।
2: अरे
1: मालूम नहीं, मेरा नाम बजरंगबली, बजरंगबली, बजरंगबली। तेरी गर्दन तोड़ दूँ। हाँ
2: छोड़ दो।
1: अरे गर्दन छोड़ दूँ
2: भाई।
1: अरे तो तुझे प्यार करूँ, तू है कौन? कौन है तू? और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या मेरा मालिक है क्या?
0: अरे अरे सुनते हैं जी। ओहो सुनिए तो, बाथरूम से निकले तो बाहर, देखिए चोरी हो रही है घर में। आप सोए हुए हैं तो मालिक क्या करें, कब तक क्या कीजिएगा? अजी उठिए उठिए उठिए, महावीर पकड़ो पकड़ो।
1: ये लीजिए मालिक।
0: हाँ बड़ा आया है चोरी करने
1: चोर के लिए। पकड़ा गया। मालकिन कहता क्या था? हमारी सुनी ना, वो कहता था मुझे छोड़ दो,
0: अभी
1: मैं चोर नहीं हूँ। लगता है कि तू मेरा मालिक है क्या?
2: अरे चोर नहीं हूँ, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
0: बड़ा आया है गाली देने वाला, बड़ा गाली देने वाला। ला महावीर जब झाड़ू दे तो
1: अभी
0: इसकी स्वागत।
1: अभी
2: मालिक हूँ, अरे चोर नहीं हूँ।
1: मालकिन मैं बत्ती जला के देखते हैं।
0: जला जला। हाँ जी ये तो आप ही हैं।
1: मालिक है,
0: आप तो हमारे मालिक हैं जी। राम क्या हुआ महावीर, तुझे अपने मालिक को मार दिया? नहीं आई, तेरा हाथ नहीं गल गया? अरे महावीर राम, हे भगवान, तू अभी निकल जा मेरे घर से, अभी चला जा।
1: मालकिन मालकिन, आप ही ने जो कहा था कि घर में चोर आया है, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन।
2: रमा
0: चोट आई
2: पर क्यों बिगड़ती हो? हाँ रमा गलती तो मेरी ही थी,
0: चलिए चलिए
2: नींद में ही बाहर निकल गया।
1: बजरंग बली
0: ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
1: पानी पी लीजिए मालिक, बजरंग बली।
0: हे भगवान आप भी धन्य हैं, मैं तो सोच रही थी कि बाथरूम में आपकी आँख
3: जी। हाँ तो देखा आपने कैसे कैसे नमूने हैं मेरे पास, सोने वालों की कमी नहीं है।
4: जरा सी आंख लग गई, गिरिंद्र प्रसाद की लिखी और निर्देशित झलकी अभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

ये था फिल्म अशोका का गाना, आवाजी अभिजीत, चित्रा के एस और साथियों की। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीतकार थे अनु मलिक।

फिल्म रिफ्यूजी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं युगल्स पर सोनू निगम और अलका याग्निक के, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें थी, फिल्म का नाम था रिफ्यूजी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
4: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम

0: गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
1: इसके लिए रेलवे स्टेशन ऊपर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
0: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए,
3: वो भी ऐप से। वाह,
4: फसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद, फरीब साबरी और उनके हमनवा, फिल्म का नाम है हिना, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। यह है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस

0: फ्रीज कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
5: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों

0: के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे से

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाने सुनिए। स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में डाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

उसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

0: तेजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने

हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है, उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है। तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

कहीं दिल जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नख़मे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज़ हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की परी।

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: छाया गीत का ये सुरीला सफर आज बस यहीं तक। दीजिए राजुल को इजाजत। नमस्कार।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट

बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानून रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।